मांगने वाले खाली ना लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी

राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की।

0: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आ

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: मैं चुप होकर भी हर बात हूँ, मैं दिन होकर भी अंधेरी रात हूँ। तू चिंता मत कर मेरी गोरा, मैं दूर होकर भी तेरे साथ हूँ, मैं दूर होकर भी तेरे साथ हूँ।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: हीरो आने लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
4: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
5: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
2: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
6: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
7: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में, तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
2: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
9: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
10: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिन्दुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
2: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टलवेन में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Union Cabinet approves four multi-tracking railway projects covering eight districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clear

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

हां जी, जिंदगी एक सफर है सुहाना। गुड वाली मॉर्निंग है जी, सत श्री अकाल, राधे राधे। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में, और समय की बात करूं तो 8:25 हो चुके हैं और इस सफर को और भी बहाते हैं, यानी कि बनाने वाले हैं सुहाना, क्योंकि आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद रेडियो से 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, चाय की चुस्कियों के साथ और चेहरे पर एक हल्के से मुस्कान हो तो आज का दिन भी बड़ा ही बिंदास हो जाता है। कभी होगी यानी कि अपने लोकल की बात करेंगे, देश दुनिया की बात करेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है, आज के हिस्ट्री स्पेशल डेज के बारे में कि आखिरकार आज का स्पेशल डेज क्या है। और बहुत से यानी कि बच्चे भी रेडी हो गए हैं और ऑफिस जाने के लिए भी। सुबह सुबह का जो एक मौसम होता है ना, सुबह सुबह का जो नज़ारा होता है एक अलग ही वाइब देता है। बच्चों को सुबह सुबह रेडी करना, टिफिन पैक करना, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, मतलब हर चीज़ इतना हैटिक हो जाता है कि बहुत जल्दबाजी हम करते हैं। लेकिन यही तो होती है एक सुकून वाला दिन, इससे से दिन की शुरुआत होती है तो अच्छा लगता है। फिलहाल हम आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे श्रोताओं, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस बने रही आर्जरीना के साथ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए जी, एक बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय करते हैं।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में आज रीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 20 अगस्त और आज का दिन यानी कि बहुत ही खास बहुत ही स्पेशल है आज का दिन। और साथ ही साथ अगर आज के वेदर की बात करूँ श्रोताओं तो फिलहाल तो मैं आपके साथ आपकी आज रीना। और आज का जो हमारा वेदर है अभी टेम्परेचर की बात करूँ तो 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि तापमान यानी कि दोपहर तक यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने वाली है। करीब 1 बजे के समथिंग में बारिश भी बताई जा रही है, हल्की फुल्की बारिश आने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन फ़िलहाल आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं या फिर आप और काम करने के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बस अपने साथ ना ये 2-3 चीज़ें ज़रूर अपने साथ रखें। फर्स्ट यानी कि मेडिसिन आपके साथ होना चाहिए, छाता आपके साथ होना चाहिए, रेनकोट आपके साथ होना चाहिए। जब भी आप बाहर जाएं तो इन चीज़ों को अपने साथ लेकर जाएं ताकि कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होती है तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। आपके पास जब चीज़ें होंगी तो आपको इतनी भी दिक्कत नहीं होगी। और सबसे ज़रूरी बात यानी कि पानी की बोतल, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो, हर टाइम पानी की बोतल अपने साथ रखना होता है। क्योंकि देखिए अगर बाहर की बोतल आप खरीद कर पानी पी रहे हैं तो आपको नहीं पता कि कैसा पानी है कैसा नहीं है, बॉटल अनयूज है या फ्रेश बॉटल है, हमें कुछ नहीं पता चलता है। इसीलिए पानी की बॉटल तो कोशिश करा करिए कि आप अपने घर से ही लेकर जाएं, क्योंकि हम फ़ोन तो लेकर चले जाते हैं लेकिन पानी की बॉटल कुछ ज़रूर चीज़ें भूल जाते हैं। और दूसरी बात ये अपने घर से सुबह का यानी कि ब्रेकफास्ट करके जाए, बाहर की ऑयली चीज़ें ना खाए, अवॉइड करें जितना हो सके, क्योंकि ऑयली खाना जो होता है कुछ टाइम के लिए आपको चटपटा टेस्टी अच्छा लगता है लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लाता है वो हमें भी नहीं पता चलता है। वो काफ़ी टाइम जाके काफ़ी टाइम बाद के बाद हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में ये चेंजेस हो रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और अगर आप उठ गए हैं तो वेल डन, ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सो रहे हैं वो उठ जाइए क्योंकि इस टाइम कुंभकर्ण सोते हैं। आप अच्छे हैं इसलिए उठ जाइए और सुबह थोड़ा वॉक कीजिए, घूमिए। अच्छा ठीक है, आप सभी से आज का मेरा क्वेश्चन है कि आज सुबह सुबह अपने लिए आपने टाइम निकाला, क्या योगा किया आपने? अगर किया है तो बिल्कुल मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है श्रोताओं। और देखते हैं हमारे पास कुछ मैसेज भी आए हैं वो भी शामिल कर लेते हैं। बेंगलुरु से राजेश जी कनेक्ट हो गए हैं। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। आज गाने बहुत ही अच्छे प्ले कर रही हो आप, पुराने गाने राजेश खन्ना के बहुत ही अच्छे गाने होते हैं जी। बिल्कुल सही कहा आपने, उनके गाने बहुत अच्छे हैं। हर हर महादेव। रीना जी क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से। और इनका कहना है कि आनंद भाई जी के पिताजी का कुछ पता चला? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अभी पता चला है सर। जैसे कोई अपडेट आती है एकदम पता चल जाएगी, अभी तक तो कोई पता नहीं है। गुड मॉर्निंग रीना मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। बिंदास मॉर्निंग में कनेक्ट हो गए हैं। मोहसिन अंसारी जी बनारस से कनेक्ट हुए हैं और इनका कहना है कि योगा तो मेरा काम है और उसमें मेरा योगा भी हो ही जाता है और काम भी हो जाता है। इनका कहना है कि इनका काम ही इनका योगा है और योगा हो ही जाता है। लेकिन सर थोड़ी देर के लिए आई नो कि हर किसी के पास काम होता है। सुबह सुबह मम्मी को देख लीजिए, वो सुबह सुबह भाग दौड़ के सारा काम करती है, लंच ब्रेकफास्ट हर चीज़ रेडी करती है, घर की सफाई तक, तो उनका भी हो ही जाता है। लेकिन खुद के लिए एक मतलब ऐसा हो कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, कुछ ऐसा समय अपने लिए सुबह सुबह मुश्किल से आपने ज़्यादा नहीं आधा घंटा ही निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि आपको पूरा दिन फ्रेश फील हो।
भ्रामरी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ अनुलोम कपालभाति, ये तो ज़रूर करिए आप, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद बात करेंगे यानी कि हिस्ट्री के पन्ने आज क्या कहते हैं।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: 10 9 8 7 6 5 4 3

मितवा, लेकिन ये नहीं पता भैया कि कब मौसम चेंज हो जाए, यानी कि ये हमारे साथ ना लुक्का छुपी खेलने लग जाते हैं। कभी धूप तो कभी बादल तो कभी हवाएं चलती हैं, और कभी कभी हवाएं भी ऐसे चुप बैठ जाती है भैया कि इंसानों को बोलना पड़ता है, अरे पवन देव भगवान थोड़ा तो रहम करो हमारे ऊपर। श्रोताओं, आज जो रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है बिंदास मॉर्निंग शो में, और समय की बात करूं तो 8:52 हो चुके हैं, और आई होप कि आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो, है ना। और साथ ही साथ सुबह सुबह मम्मी की जो डांट सुननी पड़ जाती है, अरे उठ जा भैया कितनी देर और सोएगा, सुबह हो गई है, सूर्य भगवान दर्शन दे चुके हैं। अच्छा ये बताओ आप कि जो मम्मी की डांट है, मम्मी की डांट फटकार है, यानी कि डांट बिना सुने कौन नहीं उठता है। एक्चुअली जब मैं घर होती थी ना, तो मम्मी के बिना डांट सुने मैं उठती नहीं थी। तो आप में से कौन ऐसे हैं जो सुबह सुबह मम्मी की बिना डांट सुने आंख नहीं खोलती है भैया? अगर आप उनमें से हैं तो बिल्कुल महसूस करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है कि सुबह सुबह जब तक मम्मी की डांट सुनने को ना मिल जाए आंखें नहीं खुलती है। लेकिन फिलहाल हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, श्रोताओं हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, और आप मैसेज करके बता सकते हैं कि मम्मी की डांट सुने बिना आप उठते हैं या नहीं उठते, या खुद आप अच्छे बच्चे की तरह आप खुद उठ जाते हैं।

0: आज की तारीख यानी कि 20 अगस्त, और आज का इतिहास क्या कहता है। हर दिन अपने आप में बहुत ज्यादा खास होता है। तो आज ही के दिन यानी कि 1828 में यानी कि राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्मा सभा की शुरुआत की, और इसका मकसद था समाज में फैली गलत परंपराओं को दूर करना और लोगों को बेहतर सोच की ओर ले जाना। वहीं बात करूं 1921 में केरल के मालवाड़ा इलाके में मोपला विरोध का शुरुआत हुआ था। यह उस समय अंग्रेजी शासन और स्थायी हालात के खिलाफ एक बड़ा ही आंदोलन हुआ था। और साथ ही साथ 1988 की बात करूं तो भारत और नेपाल में एक ऐसा तेज भूकंप आया था जिससे मतलब बहुत ज्यादा परेशानी आई थी, बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, और साथ ही साथ सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी इस भूकंप में, इतना तेज भूकंप आया था। और वहीं अगर मैं बात करूं 1995 की, तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के पास यानी कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की यानी कि आज के ही दिन यानी कि खतरनाक वाला टक्कर हुआ था जिसमें 225 लोगों की जान चली गई। और आज ही के दिन यानी कि 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ठीक है जी, चलिए फिर अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं आज का स्पेशल डे क्या है। आज का स्पेशल डे भी बहुत खास है जिसके लिए हमें मानसून शुरू हो गया है और इसमें खास अपना ध्यान रखना होता है। श्रोताओं और कुछ मैसेज है उनको भी शामिल करते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो जिन्हें सच्चा दोस्त मिलता है, नजर ना लगे कभी हमारी प्यारी सी दोस्त को। ये कनेक्ट होते हैं मोहसिन अंसारी जी बनारस से। गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसे हो हरियाणा वालों? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। गुलाम जिलानी जी पासा से कनेक्ट हो गए हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है, वेरी गुड मॉर्निंग जी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं उसके बाद।
1: I don't know and I don't care. I hate him.
2: But I love you.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग, गुड वाली मॉर्निंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो यानी कि 9:07 हो चुके हैं, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है और आज की तारीख यानी कि 20 अगस्त, और आज बृहस्पतिवार है। विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना की जाती है श्रोताओं, और साथ ही साथ यानी कि हम बात करने वाले हैं आज का स्पेशल डे क्या है। यानी कि बरसात का मौसम है और इस मौसम में मच्छरों की ना जैसे लॉटरी निकल आती है। पानी जमा हुआ नहीं कि मच्छरों ने अपना घर बना लिया, लेकिन ये छोटे से मच्छर को हल्के में मत लेना, क्योंकि इनके काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए हर साल यानी कि 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। ये मच्छर होते छोटे हैं पर बड़े शैतान होते हैं, कहते हैं ना छोटा पैकेट पर बड़ा धमाल मचाते हैं। इनका मकसद होता है लोगों को यानी कि मच्छरों से होने वाले बीमारियों और उससे बचने का आसान तरीके के बारे में जागरूकता फैलाना। इसलिए आज यानी कि विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है ताकि हम जितना हो सके सतर्क रहे, फुल स्लीव के कपड़े पहने और मच्छरों से बचे। घर में मच्छरदानी लगाकर ही सोए। रात को अगर आप सोते हैं तो बालकनी और कूलर का पानी साफ करें, डेली चेंज करें। क्योंकि श्रोताओं, मच्छर छोटा है लेकिन बीमारी बड़ी दे सकता है, तो मच्छर को मौका मत दीजिए। सफाई रखिए, पानी जमा मत होने दीजिए और खुद भी सुरक्षित रहिए और परिवार को भी सुरक्षित रखिए। क्योंकि बरसात का मजा लीजिए लेकिन मच्छरों का नहीं, मच्छरों से आपने बच कर रहना है। असल में क्या होता है कि बहुतों ऐसे बोलते हैं कि भाई मुझे मच्छरदानी में तो नींद बिल्कुल नहीं आती है, मैं सो ही नहीं पाती हूँ, मुझे घुटन होती है, सफोकेशन होती है, मतलब मैं सो ही नहीं पाऊंगी। तो ऐसे में आपको बचकर रहना है, थोड़ा सा बचकर रहेंगे तो बीमारी से बच जाएंगे। क्योंकि बरसात के मौसम होते ही मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के जो ये सिम्टम्स है बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो इस टाइम जितना हो सके आप बचकर रहिए, गंदगी में जाने से बचिए। सबसे बड़ी बात है कूलर बहुत यूज होता है घरों में, उसकी साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। गमले के शौकीन होते हैं हर किसी को, भैया पेड़ पौधे से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो उनको भी साफ सफाई रखे, साफ रखिए ताकि मच्छर घर में ना आए। इस दिन का मकसद यही होता है कि मच्छरों के प्रति जागरूक होना, ठीक है जी। और वैसे ही आपको जब सिम्टम्स सजा मैं बता दूं कि गले में खुजली, हल्का सर दर्द, मिचली आना जैसे कि उल्टी आना और बार बार चक्कर आपको फील हो रहा है, लो फील हो रहा है बॉडी के अंदर, तो बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज मत कीजिए। सीधा अपने नजदीकी अस्पताल जाइए, चेक कराइए। और सही कहते हैं ना, सही समय पर अगर आप इलाज कराते हैं तो छोटी बीमारी को वहीं पर वो खत्म हो जाती है, उसको बड़ा रूप लेने का मौका ही मत दीजिए। चलिए एक बहुत ही शानदार गाना एंजॉय करते हैं, ये मच्छर और ये बिच्छू, ये गाना बहुत ही शानदार वाला है। सो इस गाने को सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

क्या बात है जी, जब कुड़ी बोलती है तो चंगी लगती है जी। हेलो जी, हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है जी, बिंदास मॉर्निंग शो में। समय की बात करूँ श्रोताओं तो 9:20 हो चुके हैं और अब आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है। और आप सोच रहे होंगे कि हमें राहत यानी कि राहत कैसे मिलने वाली है। अरे अरे, आप सेफ ड्राइविंग करिए, मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि आप ऑन द वे हैं, सफर में हैं, तो बिल्कुल भी इधर उधर आपने ध्यान नहीं देना है। सीधे गाड़ी चलाना है और सेफली गाड़ी चलाना है। हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर पहन कर रखिए क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमें सुरक्षित घर और जहां भी आप जा रहे हैं वहां पहुंचाता है और आपको सेफ रखता है। इसीलिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है श्रोता। और साथ ही साथ अगर आप अपने घर में LPG सिलेंडर यूज करते हैं, हर घर में होता है, कॉमन बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको बड़ी परेशानी रहती थी ना कि भाई इसको बुक कौन करवाएगा और इसको फिर लेने कौन जाएगा। सबसे बड़ी झंझट ये होती है कि भाई जब गली में जब गाड़ी नहीं आ पाती ना, तो यही दिमाग में आता है कि जब घर पर कोई ना हो तो बड़ी परेशानी होती है कि सिलेंडर हम लेकर कैसे आएंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है यानी कि जो LPG का है वो झंझट ही खत्म कर देते हैं। अब ये सरकार की तरफ से ये एक बड़ा ऐलान हो गया है कि हर घर पाइपलाइन पहुंचाया जाए, चाहे गली मोहल्ले गांव विदेश हर जगह, यानी कि पाइपलाइन ही पहुंचाने की अब कोशिश की जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें पाइपलाइन की जरूरत नहीं है, तो सबसे बड़ी बात आपने ये काम करनी है, जो भी सिलेंडर आप यूज करते हैं उसकी EKYC करवाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख है 20 अगस्त और 23 अगस्त यानी कि लास्ट डेट है EKYC कराने। तो अभी तक आपने नहीं कराया है तो प्लीज करवा लीजिए। अगर आप पाइपलाइन की जो कर लगवाना चाहते हैं आप अपने घर में, फिर तो आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से पाइपलाइन लगवाइए और ना ही आपको सिलेंडर बुक करने की झंझट, ना ही लेने की झंझट पड़ेगी और ना ही सब्सिडी की। और जिनको भैया नहीं लगवाना चाहते वो जरूर EKYC करवाइए, सब्सिडी का आपको लाभ मिल सकता है। और साथ ही साथ आप सिलेंडर बुक करेंगे उसको भी, उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप EKYC नहीं करवाएंगे तो आपको परेशानी ही परेशानी झेलनी पड़ेगी जी। चलिए फिलहाल ये गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोता आप सभी के बीच। और कहते हैं ना, एक बहुत ही आसान वाला यानी कि तनाव केवल समझ

0: संजय दिल्लो
1: रानी गुलाम ने नहीं राजा ने मिला करे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
6: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है जी। बिंदास मॉर्निंग शो में आज रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 9:30 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 20 अगस्त बहुत खास है हमारे लिए, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आपके बिना हम अधूरे ही अधूरे हैं। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ अभी अभी आपको पता ही चल जाएगा जी, क्योंकि आज अगर आपको याद हो तो आप रेडियो सुनते हैं लेकिन आज एक बहुत ही खास दिवस है। अगर आपको पता है, अरे तो बिल्कुल मैसेज करके बताओ यार, जल्दी बताओ। मैं गाना आपको सुनाती हूँ, उससे ही पता चल जाएगा आज का डे, आज की कार आज का डे स्पेशल क्यों है। चलिए फिलहाल गाना सुनिए।

का। आज की तारीख बहुत ही स्पेशल है श्रोताओ, बहुत ही खास है। आज 20 अगस्त है और आज का दिन है उन खास लोगों के नाम जिनके बिना रेडियो की आवाज अधूरी है। हमारे प्यारे श्रोता, कहते हैं रेडियो की असली ताकत उसकी आवाज में नहीं, उस आवाज को सुनने वाले कानों में होती है। आज घर में, आप घर में हो या खेत में हो या दुकान पर हो या सफर में हो, जब आप रेडियो सुनते हैं तो लगता है जैसे हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट हैं हम। तो आज का डे यानी कि आज है रेडियो श्रोता दिवस यानी कि लिसनर्स डे, आज आप सभी का डे है। और हम पर आपने हर उस श्रोता को दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं जो इतना प्यार देते हैं, प्यार से रेडियो सुनते हैं और अपनी फरमाइश भेजते हैं, अपनी मैसेज भेजते हैं, फोन करते हैं और हमारी बातें, हमारी राय हर रोज सुनते हैं और हर रोज फॉलो भी करते हैं। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। जितना भी आप सभी को दिल से धन्यवाद किया जाए उतना ही हमारे लिए कम है। मतलब आप सभी के बिना तो हम बिल्कुल अधूरे हैं, हमारी आवाज अधूरी है जब तक आप ना हो हमारे साथ। तो आप सभी को दिल से, तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हजार वर्ड भी आप सभी के लिए कम है, क्योंकि सच कहते हैं आप श्रोता नहीं, हमारे रेडियो के परिवार का हिस्सा है। और जब परिवार एक साथ रहता है तो अलग ही रौनक, अलग ही मजा आता है। तो चाय की एक चुस्की हमारे साथ और हमारे नाम, और मुस्कुराइए और रेडियो सुनते रहिए। आपका अपना पसंदीदा रेडियो, आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 की हम सभी की तरफ से आप सभी श्रोताओं को दिल से धन्यवाद और रेडियो श्रोता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुनते रहिए हमें बोलने का जो मौका देते हैं यहाँ पर, आप सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना हमारा रेडियो अधूरा है। तो चलिए भैया, मैसेज भी आ गए हैं वो भी देखते हैं और आज क्वेश्चन भी आप सभी से मैं पूछने वाली हूँ। बस इस मैसेज के बाद पहले मैसेज शामिल कर लेते हैं। निकंद फातिमा जी कनेक्ट हो गई हैं। रीना दी कैसी हो आप, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। निकंद फातिमा जी कनेक्ट हुई हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रिहाना जी कनेक्ट हो गई हैं। मंसूरी कलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद शारिक अली जी, गुड मॉर्निंग रीना जी, आप कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं जी, बिंदास मॉर्निंग शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज यानी कि 20 अगस्त है, 20 अगस्त को रेडियो श्रोता दिवस मनाया जाता है जी। बिल्कुल, रेडियो श्रोता दिवस पर आपको और पूरे FM परिवार और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक। अगले मैसेज की बात करूं तो हमारे पास मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे, स्टे ब्लेस, एंजॉय योर डे विद हैप्पीनेस, सक्सेस लाइफ। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजेस पलवलील जी, और कहते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। बिल्कुल जी, सही कहा आपने, थोड़ा समय लगता है लेकिन हर चीज ठीक हो जाती है। और ये ललिता जी कनेक्ट हुई है भैया, इन्होंने सीधा बोला है लिसनर्स डे है आज, ओके। रीना जी नमस्ते, आप कैसे हो, बहुत अच्छे हैं जी, आज रेडियो डे है। और ये
हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सीएल गुप्ता से, सलीम अंसारी जी, इनके दोस्त है काशी मलवी जी, और आज 20 अगस्त है, बिल्कुल जी रेडियो श्रोता दिवस है आज। बाकी सारी दुनिया। रीना जी, जय श्री राम। गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, गुड वाली मॉर्निंग है जी, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही है आप, जानकारियां भी बहुत अच्छी लेकर आती है, थैंक यू सो मच जी। और ये भी कुछ लाइनें लिखते हैं, चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो यह तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता है, बिल्कुल जी। Now chori wanting dance but chora want romance so chora bolis DJ said Jay no taking chance। अगले मैसेज की बात करूं तो मैम जी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी। सलमान अख्तर जी कनेक्ट हो गए हैं बिजनौर से। तो श्रोताओं आज का हमारा फिलहाल अभी के लिए आप सभी का क्वेश्चन ये है मेरी तरफ से कि आपने पहली बार फर्स्ट टाइम रेडियो कब सुना था, कौन सा रेडियो आपने सुना था, ये आपने आज मैसेज करके बताना है, क्योंकि आप रेडियो श्रोता है और आप सभी के बिना रेडियो बिल्कुल अधूरा है, सच में जब तक आप सब ना हो तो हम सब भी अधूरे हैं। तो आपने बताना है हमें मैसेज करके कि फर्स्ट टाइम आपने रेडियो कब सुना था और रेडियो आपके लिए है क्या। हमारे लिए तो रेडियो ही हमारा फर्स्ट प्यार है, पहला प्यार है, हमारी सांसें, धड़कन वड़कन सब कुछ हमारे लिए रेडियो ही है। तो आपने पहली बार रेडियो कब सुना था और आपके लिए रेडियो क्या है, चलिए जी फिलहाल मैसेज जल्दी करके बताइए। नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करना है श्रोताओं, और एक बहुत ही शानदार वाला गाना, क्योंकि ये जब इंसान को मिल जाता है ना तो इंसान को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। क्या सुनिए पहले गाना।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद। अगर

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में श्रोताओं, समय की बात करूं तो 9:49 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 20 अगस्त, इसी बीच मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं कड़क म्यूजिक। लेकिन कड़क म्यूजिक से पहले प्यारे प्यारे जो मैसेज आए हैं ना उनको शामिल करते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी मैसेज आई है भैया, एक बार देखते हैं कि इनका क्या मैसेज आया है। रेडियो लिसनर्स डे पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ललिता जी का कहना है कि जब मैं छोटी थी, मतलब इनको तारीख याद नहीं है, लेकिन जब ये छोटी थी तब से ये रेडियो सुनती हैं। रेडियो के लिए इनका प्यार हमेशा बरकरार रहता है और रेडियो ही सब कुछ है। सही बात है, रेडियो एक ऐसा माध्यम है श्रोताओं, चाहे आप कहीं पर रहे, घर पर हो या बाहर हो या किचन में हो या फिर कपड़े धो रहे हो, एनीवे आप कोई भी काम करते हो, रेडियो कभी आपको ये नहीं बोलता है कि मेरे लिए आपको समय ही निकालना है, बल्कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है आप कहीं भी सुन सकते हो रेडियो। चलिए फिलहाल और अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि इनका क्या मैसेज।

मैम जी, आज रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी जी, हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं। सलमान अख्तर और साहिब दोस्त बिजनौर से ये कनेक्ट होते हैं।

सभी रेडियो सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरव टेलर जी ने मैसेज किया है, भैया बड़ा ही लंबा चौड़ा क्या मैसेज किया आपने, वो मैसेज मैं जरूर शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कड़क म्यूजिक पूछ लेती हूँ। अरे भैया इतना बड़ा मैसेज आपने भेजा, इतना बड़ा तो मैं लिंक में कभी नहीं बोलती हूँ, ओ माय गॉड। तो चलिए श्रोताओं, आपने सुनना है, एक म्यूजिक मैं प्ले कर रही हूँ आप सभी के बीच, आपने सुनकर यानी कि गाने का नाम बताना है। चलिए जी, बस इतना ही सुनने को मिलेगा, आपने मैसेज करना है, नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है कि जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है गाने का क्या नाम है और कौन सी मूवी से है ये गाना। चलिए जी, बस इतना ही मिलेगा, बस सुनिए और अगला गाना सुनिए और लौट कर आते हैं, आपकी जो लंबी चौड़ी मैसेज आई है उनको भी तो शामिल करना है।

क्या बात है जी। हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है जी। बिंदास मॉर्निंग शो में समय की बात करूँ तो 9:56 हो चुके हैं और यहाँ पर विनर भी बन चुके हैं, यानी कि बेंगलुरु से कनेक्ट होते हैं राकेश जी। और इनका मैसेज सबसे पहले आया है चुनरी चुनरी बीवी नंबर 1 मूवी से है, तो आप राजेश जी बेंगलुरु से कनेक्ट हुए हैं, इतने दूर से आप हमारा रेडियो सुनते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने दूर से रेडियो कनेक्ट करते हैं और हमें सुनते हैं, समय निकालते हैं, तो आप बनते हैं हमारे शो के विनर। आंसर राइट आ गया भैया, चुनरी चुनरी। चलिए बाकी और भी मैसेज है वो भी शामिल करते हैं। श्रोता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आरजे जी, आरजे रीना जी। रीना जी, रेडियो की दुनिया में आवाज सिर्फ आवाज नहीं होती, वह श्रोताओं के दिलों तक पहुंचाने वाला एक खूबसूरत एहसास होती है। आपकी मधुर आवाज, आपकी मुस्कान और आपका अपनापन, रेडियो सुनने वालों हर श्रोताओं के चेहरे पर मुस्कान खुशी ले आती है। थैंक यू सो मच जी। और इनका कहना है आप कार्यक्रम प्रस्तुति नहीं करती बल्कि श्रोताओं से एक खूबसूरत रिश्ता भी बनाती है। और आगे लिखते हैं, श्रोता दिवस के इस विशेष अवसर पर आपको दिल से धन्यवाद उन सभी योगदार यादगार पलों के लिए, उन मुस्कुराहटों के लिए और उस अपनापन भरी आवाज के लिए जो रेडियो के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचाती है। एफएम परिवार यानी कि एफएम मुरादाबाद 89.6 की पहचान को और भी खास बनाने में आपकी आवाज और आपकी जो मेहनत है वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत योगदान होता है। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपकी आवाज यूं ही हर श्रोताओं के दिलों को छूती रहे और आपको सफलता हर सफर दिन दुगनी और चार चुगनी ऊंचा होता रहे। ओके जी, श्रोता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं रीना जी। आपकी आवाज श्रोताओं के दिल तक, दिल की आवाज। थैंक यू सो मच जी। बट आपने नाम नहीं बताया सर, ये तो गलत बात है। आपका नाम मुझे ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर क्या नाम है आपका। सुनिधि चौहान जी कनेक्ट होती हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है, सच में बहुत ही शानदार वाली लाइन लिखी है और यही तो हमारे श्रोताओं की पहचान होती है, क्योंकि हम आपके बिना सच में सुनने हैं अधूरे हैं जब तक आप हमारे साथ कनेक्ट नहीं करना ऐसे से तम। चुनरी चुनरी बीबी नंबर 1 ललिता जी का मैसेज आया है राइट। गुप्ता से सलीम अंसारी जी कनेक्ट हो गए हैं, गाना है चुनरी चुनरी।

चुनरी चुनरी, लेकिन आपने नाम नहीं बताया है, इनके लास्ट यानी कि नंबर के 4 डिजिट हैं। ओ लक्ष्मी जी कनेक्ट होती हैं। अरे कृपया नाम भी बता दीजिए करिए, ऊपर ढूंढना पड़ता है हमें आपका नाम भैया, सिर्फ नाम ही लिखना होता है, नाम अपना जरूर लिखा करिए। किसी से विनम्र विनती है, प्रिय मित्र आर जे रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और राइट आंसर है आजा आजा छुले मेरी चुनरी सनम, नवनेश कुमार जी मुरादाबाद से। निकट फातिमा जी राइट आंसर के साथ कनेक्ट हो गई। मोहसिन अंसारी जी सिर्फ गाने का नाम बताते, ये तो गलत बात है जी, यानी कि दोनों नाम बताना था, लेकिन फिर भी आपने राइट बताया है। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग रीना जी, दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। चुनरी चुनरी ओके। हां जी, तो गौरव टेलर जी का मैसेज है, यानी कि इनका कहना है सभी रेडियो सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई, और इनका कहना है रीना रीना जी सबसे पहले मैंने रेडियो जो हमारे शहर में यानी कि बिल्कुल नजदीकी में है आकाशवाणी रामपुर, सबसे पहले मैंने वहीं से सुनना शुरू किया था और मुझे रेडियो बचपन से ही सुनना बहुत पसंद है, और जब मैं आकाशवाणी रामपुर सुनता था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। पहले रेडियो पर यानी कि पत्र भेजे जाते थे, उनमें उनसे यानी कि फरमाइश पूरी होती थी तो बहुत अच्छा लगता था, यानी कि अपनी फरमाइश सुनकर। और वहां पर यानी कि एक आरजे थे सुधांशु त्रिवेदी, जो कि बहुत ही अच्छे आरजे थे। फिर उसके बाद मैंने काफी चैनल रेडियो के सुने, मगर हमारे जो मन में एक ख्वाहिश पूरी थी यानी कि वो है कि हमारे शहर का एफएम मुरादाबाद रेडियो का अलग ही मजा है, और जब ये हमारे शहर में आया तो सुनने में भी अच्छा लगा और आरजे से मिलने का भी मौका मिल जाता है, ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है। क्या बात है जी, आरजे से मिलने का मौका मिल जाता है, ये तो सौभाग्य की बात है। और आपके शहर में जो एफएम मुरादाबाद रेडियो है आप सभी को सुबह से लेकर शाम तक एंटरटेनमेंट करता रहता है, और ये धन्यवाद पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच जी। और ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट हुए हैं, यानी कि बीबी नंबर वन चुनरी चुनरी गाने की बोल है। चुनरी चुनरी बीबी नंबर वन, और नाम नहीं बताया जी, ये तो गलत बात है, नंबर है यानी कि 0815।

0: जी कनेक्ट होती है भैया मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि साल यानी कि 1978 से विविध भारती एंड ऑल इंडिया रेडियो और एफएम यानी कि, अरे भैया कॉल ना करे, व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा है। यानी कि अपने शहर का जो रेडियो है 1 अगस्त 2025 से लगातार ये सुबह 7 बजे से लेकर सुनती रहती है, और इनका कहना है कि घर का काम भी हो जाता है साथ साथ और रेडियो भी सुन लेते हैं, अच्छा बहुत ही मजा आता है, और साथ ही साथ न्यू सॉन्ग ओल्ड सॉन्ग हर तरह के गाने बजते हैं और जानकारियां भी बहुत अच्छी मिलती है, तो अच्छा लगता है सुनकर। और ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट हुई है भैया चुनरी चुनरी बीबी नंबर वन। हेलो गुड मॉर्निंग, ये हमारे साथ सुहानी कनेक्ट होती हैं शिवपुर मुरादाबाद से, राइट आंसर है चुनरी चुनरी। ओके जी सिवानी जी सुहानी जी। इरशाद हुसैन जी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं। अलीशा जी मुरादाबाद से कनेक्ट हो गई है चुनरी चुनरी यानी कि राइट आंसर के साथ, ये भी कनेक्ट होती हैं।
1: जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले ओले।
0: गुड मॉर्निंग रीना मैम, नाजिया जी कनेक्ट होती हैं और इनके साथ है शना। रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और राइट आंसर के साथ ये कनेक्ट होती है चुनरी चुनरी बीवी नंबर वन। 10:05 हो चुके हैं। अच्छा तो अविनाश चतनागर जी कनेक्ट हुए थे, क्या बात है सर, आपने बड़ी लंबी चौड़ी मैसेज किया था, थैंक यू सो मच तहे दिल से कि आपने नाम बताया अपनी। और ये सच में वाकई में बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, ये बात में बड़े प्यारे प्यारी करते हैं, और गाना तो भाई साहब आपने इनको रेडियो लिसनर डे पे सुना ही होगा, ये गाना भी बहुत अच्छे गाते हैं, तो सर थैंक यू सो मच तहे दिल से, आप सभी का तहे दिल से थैंक यू सो मच श्रोताओं कि आपने इतना प्यारा मैसेज भेजा है, और भी मैसेज है भैया वो भी शामिल करना है, समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही है मुझे, लेकिन क्या करें आप सभी के मैसेज शामिल करे बिना तो हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। अमरोहा से नेहा कनेक्ट होती हैं। आनंद भैया के पापा जी मिल गए? नहीं जी अभी नहीं मिले हैं। मुस्कान जी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती है।

0: चलिए श्रोताओं, इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। हम आपको मिलने वाले हैं यानी कि शाम के समय में, यानी कि इवनिंग मस्ती शो में, शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। कल थोड़ा लेट हो गए थे लेकिन आज बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे, प्रॉमिस करते हैं आपसे। और ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी जानकारियां लेकर आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे। जो कि काम की जानकारियां होती हैं तो जरूर कनेक्ट होइए शाम को 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। खाना बनाते बनाते, ड्राइविंग करते करते, काम करते करते आप कनेक्ट हो सकते हैं श्रोताओ। अभी के लिए बाय-बाय, टाटा, टेक केयर। समय की बात करूं तो 10:00 यहाँ पर समय हो चुका भैया, 10:07। बाय-बाय, टाटा, टेक केयर।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: करो।
1: राधे राधे ब्रजवासियों, जहाँ कड़कड़ में कान्हा की लीलाएं हैं, जहाँ यमुना की लहरों में भक्ति की मिठास है, जहाँ गलियों में आज भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, वही है हमारी प्यारी मथुरा नगरी।
2: बिल्कुल, मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं, आस्था, संस्कृति और विरासत की ऐसी धरती है जहाँ इतिहास और भविष्य एक साथ कदम बढ़ाते हैं। और आज इसी धरती से हम सुनेंगे विकास की वो कहानी जो सड़कों, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, महिला बाल कल्याण और जन सुविधाओं के जरिए लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और आज का खास एपिसोड है
1: मथुरा में गूंजता विकास। तो आइए बात करते हैं उस विकास की जो सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि आम लोगों के अनुभवों में दिखाई देता है।
0: मथुरा में विकास का दायरा लगातार व्यापक हो रहा है। सड़क और आधारभूत ढांचे से लेकर पर्यटन जन सुविधाओं तक कई स्तरों पर काम आगे बढ़ रहे हैं।
1: मथुरा और ब्रज क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने, मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से लेकर ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग से जुड़े कार्यों तक विकास की तस्वीर लगातार बदल रही है।
0: और मथुरा वृंदावन जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है स्थानीय लोगों का साथ साथ देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं।
1: यानी सोच सिर्फ आज की जरूरत पूरी करने की नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए मजबूत आधार तैयार करने की है।
0: अब बात उस युवा शक्ति की जो नौकरी खोजने के साथ साथ रोजगार देने वाला बनने का सपना देखती है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
0: यानी सरकार की सोच साफ है, युवा सिर्फ अवसर का इंतजार ना करे बल्कि अवसर पैदा करने की क्षमता भी हासिल करे।
1: और यही तो है दूरदर्शी सोच, युवा के हाथ में हुनर, हुनर से उद्यम और उद्यम से रोजगार। आइए सुनते हैं अब मुकेश की कहानी जो एक लाभार्थी है।
2: मेरा नाम मुकेश, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद मैं अपना एक रोजगार करना चाहता था। इसी बीच मुझे एक योजना के बारे में पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत मुझे 5 लाख तक का 100% ब्याज मुक्त और गारंटी रहित ऋण मिला, जिसकी मदद से मैंने अपना रोजगार शुरू किया और आज मेरा रोजगार बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं और ऐसी योजनाओं से मैं बहुत ही लाभान्वित हुआ।
0: मुकेश की कहानी इस बात की मिसाल है कि विकास की असली पहचान तब होती है जब योजनाओं का लाभ सीधे परिवार तक पहुंचे।
1: और जब किसी योजना की मदद से किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार और समाज तक पहुंचता है।
0: विकास का सबसे बड़ा अर्थ है समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक अवसर और सुविधाएं पहुंचाना।
1: और इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान के माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
0: यानी केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि परिवार को ऐसी सुविधाएं और अवस्थाएं से जोड़ना जिससे वह आगे बढ़ सके।
1: यही दूरदर्शिता है, गरीबी को सिर्फ एक आंकड़ा मानकर नहीं बल्कि परिवार की जरूरतों को समझकर समाधान तक पहुंचने की कोशिश। आइए सुनते हैं रोशनी की कहानी जो एक लाभार्थी है।
3: मेरा नाम रोशनी है, मैं मथुरा के कोसी में रहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राज्य सरकार को कि राज्य सरकार ने हमारी आर्थिक सहायता की। मैं और मेरा परिवार बहुत निर्धन परिवार है जिसके अंतर्गत हमें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था, लेकिन राज्य सरकार की जीरो पॉवर्टी योजना के माध्यम से मैं जिला विकास विभाग के संपर्क में आई और आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर हमें आर्थिक सहायता मिली जिससे हम अपना छोटा सा रोजगार शुरू कर पाए। धन्यवाद।
0: रोशनी की कहानी भी बताती है कि योजनाओं की सफलता का असली पैमाना है लाभार्थी के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव।
1: जब सरकारी प्रयास जमीन पर किसी परिवार के लिए नई उम्मीद बनते हैं तभी विकास की तस्वीर और साफ हो जाती है। आइए सुनते हैं अब हम मथुरा की जिला विकास अधिकारी गरिमा खरे को।
4: ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धनतम व्यक्ति हैं उनको एक उस पर विकास की धारा में लेकर के आने का, तो उसके दृष्टि से जो विकसित भारत विजन 47 है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जीरो पॉवर्टी अभियान चलाया गया है। ये अभियान इस तरह से है कि इस पे प्रत्येक गांव में निर्धनतम जो परिवारों का चयन किया गया और वो चयन भी एक टीम, ऐसी टीम के द्वारा किया गया है जिसमें उन गांवों में जो लोग जैसे आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इस तरह के लोगों को जोड़ा गया था जो वहां पर बराबर गांव में रहती हैं और वो बेहतर तरीके से जानती हैं कि कौन सा परिवार गरीब है, तो उनका चयन किया गया है। और इस तरह से यहाँ पर 9686 परिवारों का यहाँ पर जो है वो चिन्हांकन हुआ है। उसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी स्कीम के जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर उन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और उस हर परिवार में किसी भी पैरामीटर से, कहीं खाद्यान्न से अगर वो आच्छादित नहीं है कहीं बच्चे स्कूली शिक्षा से अभाव में है या कहीं आवास में नहीं है, तो हर गवर्नमेंट विभाग की स्कीम ने अपने पैरामीटर्स के आधार पर उनके चयन करते हुए और फिर उनको लाभान्वित कराए जाने का कार्य चल रहा है। इसमें समाज कल्याण के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के जो पात्र लाभार्थी उन परिवारों से हैं उनको उसमें लिया जा रहा है, विधवा पेंशन के अगर लाभार्थी हैं तो छूटे हुए हैं अगर तो उनको लिया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक सेचुरेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि अब इस तरह के जो बेसिक नीड्स हैं उनमें कोई भी परिवार वंचित ना रह जाए। और एक इसमें एक और भी हुआ है कि कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ MOU कराया गया है जो स्वयं अपना योगदान इन सेलेक्टेड गांवों में जा करके उन परिवारों से मिल करके उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनके जागरूकता के लिए काम करेंगे।
0: गरिमा खरे जी की बातों से साफ है कि विकास को जमीन तक पहुंचाने में जिला प्रशासन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
1: योजनाओं का सही क्रियान्वयन, पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना और विकास कार्यों की लगातार निगरानी, यही वो कड़ी है जो सरकार की नीतियों को आम जनता के जीवन से जोड़ती है।
0: आज जब विकास की बात होती है
1: तो सिर्फ एक सड़क या एक भवन की बात नहीं होती।
0: बिल्कुल, आज की सोच है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार, निवेश के साथ उद्यमिता, विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा और विरासत के साथ पर्यटन।
1: यही है फोरसाइट दूर की सोच।
0: आज जो सड़क बन रही है वह कल की कनेक्टिविटी है, और आज जो युवा उद्यमी बन रहा है वह कल के रोजगार का सूत्र है। आज जिस बच्चे के पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है वही कल प्रदेश की ताकत बनेगा।
1: और मथुरा जैसी सांस्कृतिक नगरी में तो यह सोच और भी खास हो जाती है, विरासत भी बचे और विकास भी बढ़े।
0: उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, सामाजिक कल्याण और जन सुविधाओं को साथ लेकर चलने की सोच दिखाई देती है।
1: और तारीफ उस सोच की भी जिसमें विकास को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय गांव, गरीब, युवा, महिला और बच्चे, हर वर्ग तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
0: एक तरफ एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और निवेश जैसी बड़ी परियोजनाएं,
1: तो दूसरी तरफ जीरो पॉवर्टी उद्यमिता, कौशल विकास और आंगनबाड़ी जैसी जमीनी पहल,
0: यानी बड़े विजन और जमीनी जरूरत दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश।
1: और यही उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच की खासियत है, आज की जरूरत के साथ आने वाले वर्षों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना। तो आज मथुरा से हमने सुनी विकास की कई आवाजें, लाभार्थियों की, प्रशासन की और उन युवाओं की जो अपने सपनों को उद्यम में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
0: आज के एपिसोड का नाम था
1: मथुरा में
0: गूंजता विकास।
1: मैं हूँ आपका आरजे जय
0: और मैं हूँ आपकी आरजे तेजस्वी भारद्वाज।
1: दोनों मिलते हैं अगले एपिसोड में विकास की एक और कहानी के साथ।
0: जय हिंद।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी नई।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो डर।
0: कम ऑन रिया,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ,
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए। कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: इंटीरियर
1: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
2: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और आप सभी का फेवरेट शो शुरू हो चुका है मॉर्निंग मसाला। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है आज गुरुवार का, थर्सडे की मॉर्निंग है एंड तारीख है आज 20 अगस्त, और आज की डेट बहुत स्पेशल है। आज क्या कुछ स्पेशल है सब आपको

खुशी यहाँ पर बताने वाली है। दोस्तों, रेडियो सिर्फ एक आवाज़ नहीं, एक खूबसूरत एहसास है जो बिना मिले भी दिलों को जोड़ देता है। और उस एहसास की सबसे खूबसूरत वजह है आप हमारे प्यारे से लिसनर। जी हाँ दोस्तों, जब आप सब हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, दिल से जुड़ते हैं, क्योंकि दिल से दिल का रिश्ता होता है। हम यहाँ से बातें करते हैं, आप वहाँ से मुस्कुराते हैं, हम यहाँ से कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपका फटाफट से वहाँ से आंसर आता है। ये जो रिश्ता है ना, बहुत ही प्यारा है ना। हम एक दूसरे को देखते हैं, बस दिलों से दिल का रिश्ता, बहुत ही खूबसूरत सा है ये। तो मैं कहना चाहती हूँ आपसे, किस रिश्ते को और स्ट्रांग बनाने के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते मुलाकातों के मोहताज नहीं होते, कुछ रिश्ते मुलाकातों के मोहताज नहीं होते, कुछ लोग दूर होकर भी दिल के बहुत पास होते हैं। रेडियो की इस खूबसूरत दुनिया में हमारे हर लिसनर हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। तो एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे लिसनर्स को हैप्पी लिसनर डे। आप ऐसे ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमने रेडियो की बात की है और हमारे प्यारे लिसनर्स की बात की है, तो एक गाना तो खूबसूरत सा बनता है ना आज की सुबह। मैं बस लौट कर आती हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप भी मुझे अपने संदेश पहुँचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और बाहर का मौसम की अगर बात की ना वेदर की, तो अभी जो बाहर का करंटली मौसम है, बाहर बादल हो रहे हैं एंड बारिश हो सकती है शायद, क्योंकि मौसम तो लग रहा है कि बारिश वाला। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अभी फिलहाल गाना सुनो, मैं लौट कर आने वाली हूँ।

0: This pee.
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आपकी सुबह को खुशनुमा बनाने का काम खुशी का है और खुशी अपनी जिम्मेदारियों के साथ हाजिर हो चुकी है। वक्त हुआ है 10:40 और अभी आपने बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक सुना गुरु रंधावा और साथ में धवनी भानुशाली की बहुत ही प्यारी आवाज। और हमारे पास यहाँ पर बैक टू बैक खूबसूरत आप सभी के संदेश आ रहे हैं, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है कुलदीप गुप्ता जी का ढोली बाराबंकी से, गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। और आज की सुबह इन्होंने एक थॉट हमारे साथ शेयर किया है, बहुत ही खूबसूरत सा है। कि जरूरी नहीं कि हर समय होठों पर ईश्वर का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर समय होठों पर ईश्वर का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। सुप्रभात, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल थॉट शेयर करने के लिए आज की मॉर्निंग। एग्जैक्टली राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब इंसान इंसान की मदद करता है तो ये भी एक भक्ति ही है, निस्वार्थ, कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। और मुझे लगता है कि दोस्तों अगर हमसे कोई अगर हेल्प ले रहा है या फिर हमें लगता है कि कोई सामने वाला पर्सन को हमारी नीड है, हमें हाँ उनकी कोई हेल्प हमें करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि इंसान अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा। और सबसे बड़ी इंसानियत वही होती है जो इंसान जब कोई प्रॉब्लम में होता है और जब उसके साथ कोई इंसान देता है ना, तो उसके दिल से इतनी जो ब्लेसिंग्स जो दुआएं निकलती है ना, वो बहुत काम आती हैं। तो हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्यों एवरीवन। एंड हमारे पास यहाँ पर अगला मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, नाजिया तुर्क जी का मैसेज आया है, साथ में सना भी हैं और ये कहती हैं कि एक ट्रैक मैम आज की सुबह में सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल सुनवाएंगे आपको, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गौरव टेलर जी का नवीन नगर मुरादाबाद से, खुशी जी कैसी हैं आप, मैं बहुत अच्छी हूँ, आपको भी जय श्री राम। एंड इनको हमारा शो बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और सर ने भी एक थॉट शेयर किया है आज की मॉर्निंग कि खुशी मन की अच्छी होती है, खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं। धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। क्या बात है सर, सुपर, बहुत ही अच्छा थॉट है आज की सुबह आपने शेयर किया। तो मैं भी आपसे ये कहना चाहती हूँ जो लिसनर मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है, कि आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे मैसेज पहुँचा सकते हैं। आज की सुबह कोई थॉट है, कोई ऐसी बात जो लगता है आपको कि हाँ मुझे शेयर करनी चाहिए ताकि तमाम श्रोताओं तक आपकी बात पहुँचे, कुछ ऐसा मैसेज जो लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी बदली है, सामने वाले की भी, कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चेंज आएगा। और आज के टाइम में मुझे लगता है कि देखिए हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसके ज़रिए जब हम अच्छी चीज़ें दुनिया तक पहुंचाते हैं तो पता नहीं किस ना किसी इंसान की हेल्प हो जाए, और अच्छा भी है ना जब हम किसी के काम आते हैं। और अगला मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर, ये हमें संदेश पहुंचाते हैं सहारनपुर से जून रोज़ी पलवली जी, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं लुधियाना पंजाब से मोहम्मद ईशान जी, थैंक यू आपने अपना मैसेज पहुँचाया है आज की सुबह। तो चलिए दोस्तों बस मैं वापस आती हूँ कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक के उस पर, आप कहीं मचाइए और बताइएगा कि रेडियो पर आपको ऐसा कौन सा ट्रैक है, कौन सा ऐसा गीत है जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, कोई ऐसा गाना जिसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कान आ जाती है प्यारी सी, आज वो गाना आप सुनना चाहते हैं रेडियो पर, तो खुशी यहाँ पर प्ले करने के लिए तैयार है। बताइए अपनी चॉइस, नंबर मैं आपको अगेन बताती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप सभी की मुस्कुराहट
बहुत प्यारी है और जब आप सब मुस्कुराते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस ऐसे ही खिलखिलाते रहिए हमेशा और सुनिए एक खूबसूरत से गाना। मैं बस वापस आती हूँ अभी।

0: शादी में आई हूँ और
1: कपड़े के
0: ओ यू एनी एक्सप्लेनेशन
1: मुझे बड़े
0: बस आई गॉट तुम्हारे एंजॉय योरसेल्फ

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। अगर

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। और सच कहूँ तो ये सिर्फ एक गाने की लाइन नहीं, ये उन खूबसूरत एहसासों को बयां करती है जो हमें अपने लिसनर से जोड़कर रखती है। हाँ जी, आपसे जुड़कर मिलता है ना वो प्यारा सा एहसास, आपसे बातें करना, आपकी फरमाइशों को सुनना और आपके मैसेज को पढ़ना, कभी आपकी खुशी का हिस्सा बनना, कभी आपकी उदासी में आपका साथी बन जाना। और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि रेडियो पर हम शायद एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन आवाज़ के ज़रिए दिल ज़रूर मिल जाते हैं। दोस्तों, आज रेडियो श्रोता दिवस पर मेरे लिए इससे खूबसूरत बात और क्या होगी कि मैं अपने उन्हीं प्यारे श्रोताओं से कहूंगी जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आपसे मिलना शायद हर दिन मुमकिन नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ सुनना और आपसे बातें करना हर बार दिल को बहुत ही अच्छा लगता है। और बैक टू बैक आपके जो मैसेज आ रहे हैं ना, हाय मैं वारी जावा, बहुत प्यारे हैं। तो जल्दी से शामिल कर लेते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट लिसनर हैं उन्होंने क्या पहुंचाया है आज की मॉर्निंग। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है कश्मीर से मेराजुद्दीन जी का, और ये कहते हैं, मैम गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं, हम आपको बहुत मिस करते हैं। सर मैं ठीक हूँ और हम तो रेगुलर आते हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं, आपका शो मॉर्निंग मसाला हमें बेहद पसंद आता है, शुक्रिया आपका। और कहते हैं आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त को रेडियो श्रोता दिवस मनाया जाता है। हमारी तरफ से आपको और पूरे एफएम परिवार को और सुनने वाले जितने भी रेडियो दोस्त सुन रहे हैं सभी को श्रोता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक ट्रैक हमें सुनवा दीजिएगा मैम, अभी तो मोहब्बत का आगाज है। ओके सर, सुनवाएंगे आपको। अगला मैसेज हमारे पास आया है, हर हर महादेव खुशी मैम, कैसे हैं आप। सर बहुत ही अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा है, आपकी ब्लेसिंग्स हैं। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। निखत फातिमा जी अपना मैसेज पहुँचाती हैं, रेडियो श्रोता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां पहुँचाती हैं सभी दोस्तों को, सेम हियर। एंड नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है रामपुर से शबनम जी का, और ये कहती हैं कि बिना सूरज ढले रात नहीं होती, बिना सूरज ढले रात नहीं होती, बिना सावन के तो बरसात नहीं होती, हमारा हाल तो ऐसा है कि आपको याद किए बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और आपने जो ये डेकोरेट करके भेजा है ना मैसेज, बहुत ही प्यारा है मैम, थैंक यू। जो फ्लावर्स आपने भेजे ना उसकी खुशबू पूरे स्टूडियो में महक रही है हमारी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, लदावली जिला मुरादाबाद से अपना संदेश पहुँचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अविनाश रत्नागर जी, कहते हैं कि एक आवाज जो दिल तक पहुँचती है, कहते हैं आवाज तो बहुत लोग सुनते हैं, ये आवाज तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुना नहीं महसूस किया जाता है। आरजी खुशी जी आपकी आवाज में भी ऐसा ही है। ओह रियली, थैंक यू सर। कहते हैं कि जब आप माइक संभालती हैं तो लगता है जैसे रेडियो के उस पार बैठे श्रोता अकेले नहीं हैं, कोई अपना उससे बातें कर रहा है, उसकी सुन रहा है और उसके चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। श्रोता दिवस पर आपको सभी, आपको सिर्फ शुभकामनाएं नहीं बल्कि उन तमाम श्रोताओं की ओर से दिल से धन्यवाद जिनके दिन को आप
की आवाज ने कभी ना कभी थोड़ा और खूबसूरत बनाया है। आपकी आवाज में शब्द कम और अपनापन ज्यादा है, आपकी बातों में कार्यक्रम कम और रिश्ते ज्यादा है। ओके, रिश्ता ज्यादा है। यूं ही नहीं, आपकी आवाज रेडियो की तरंगों पर सफर करती है और हर श्रोता के दिल में जाकर कहती रहे। आप सुनते रहिए, हम यूं ही आपसे जुड़े रहेंगे। आरजे खुशी को श्रोता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी आवाज यूं ही खूबसूरत यात्रा हमेशा यूं ही जारी रहे। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा सा मैसेज भेजा है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एंड आवाज़ की अगर बात की है ना आपने, तो आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। हम तो कुछ भी नहीं है और जो गाते हैं ना आप, हाय क्या कहूँ मैं, इतना प्यारा गाते हैं। और जब मैं सर को सुनना शुरू करती हूँ ना, आई रिमेम्बर, तो काफ़ी टाइम हो गया है सर से मुलाकात नहीं हुई है। एंड जब इनसे मुलाकात होती है तो लगता नहीं है किसी हम मतलब दूसरी पर्सन से मिल रहे हैं, हमेशा ऐसा ही लगता है कि अपने फैमिली मेम्बर से मिल रहे हैं। इनका वो बातों में नटखंडपन, वो अदाएं, वो मुस्कुराकर गुनगुनाना बहुत ही खूबसूरत लगता है। सर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप दो लाइनें आज फिर से कुछ गुनगुनाकर हमें पहुँचाइएगा। हम तमाम श्रोताओं तक आपकी आवाज़ को सुनाना चाहते हैं आज, तो प्लीज़ दो लाइनें तो आज के दिन होनी चाहिए ना। क्यों, अब मुस्कुरा तो रहे हैं, अब गाकर भी जल्दी से हमें अपना वॉइस नोट पहुँचा दीजिएगा। क्योंकि श्रोताओं, हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, सच में ये बहुत प्यारा गाते हैं। जब आप सुनेंगे ना तो आप भी सुनते ही रह जाएंगे, इनकी आवाज दिल में उतर जाती है। और अगला मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है। हेलो खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हैप्पी लिसनर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एंड इन्होंने अपना नाम लिखा है सुहानी, शिवपुरी मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाती हैं। थैंक यू शिवानी एंड सुहानी, शिवानी एंड सुहानी दोनों का नाम मैच कर रहे हैं। हाँ, वैसे हमारे पास शिवानी का भी मैसेज आता है और सुहानी का भी आता है, दोनों बहनें लग रही हैं। चलो मैं अभी वापस आती हूँ, ठीक है? आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपने संदेश हमें पहुँचाइए। इतनी कंजूसी बिल्कुल भी मत दिखाइए, आज के दिन तो नहीं दिखानी चाहिए ना, क्योंकि आज तो आपका दिन है। हाँ, वैसे हर दिन आपका होता है लेकिन आज स्पेशल है रेडियो के नाम, तो जल्दी से पहुंचाइए अपने दिल की बातें। अच्छा, जो हमारे नए लिसनर जुड़े हैं वो सोच रहे हैं कि मैम हमें तो नंबर ही नहीं पता है, तो हम कैसे मैसेज पहुंचाएं? तो आप चिंता मत कीजिए ना, डोंट फेरी, मैं खुशी आपके साथ हूँ ना। तो नंबर मैं आपको बता देती हूँ, है ना, बहुत इजी नंबर है हमारा, 98-378-96-896। ये हमारे स्टूडियो का मोबाइल नंबर है जिस पर आपको अपने संदेश पहुंचाने हैं। जब तक आप प्यारे प्यारे संदेश पहुंचाते हैं, तब तक हम आपको एक खूबसूरत गाना सुनवाते हैं। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना साथ बनाए रखिए, साथ निभाते रहिए।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 11:16। तो दोस्तों, आज बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो गया है कि बस दिल कह रहा है खिड़की के पास बैठो, गर्मा गर्म चाय का कप हाथ में हो और सामने काले काले बादल, हवाएं भी चल रही हैं और बादलों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जनाब बस बरसने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मौसम की ठंडी ठंडी फिजा मन को और भी मतलब खुशनुमा बना रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस सुहाने मौसम का आनंद लेना चाहते हैं तो उसके लिए बाहर, अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी भी जरूर रखिए, छाता या रेनकोट साथ रखिए, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी बादल हैं और अगले ही पल बारिश शुरू हो जाए। और बाइक या फिर कार से निकल रहे हैं तो स्पीड थोड़ी कम रखिए, क्योंकि बारिश के बाद सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं और जलभराव वाली जगह पर खासकर सावधानी बरतिए। और अगर तेज बिजली चमक रही हो या फिर बादल की जोरदार गरज हो तो पेड़, बिजली के खंभों और खुले मैदान से थोड़ा मतलब बिजली के खंभों से थोड़ा सा दूरियां बनाकर रखें। देखिए, मौसम का आनंद लीजिए, ठीक है, एंड आप चाय पकौड़े का लुफ्त भी उठाइए। लेकिन हाँ, इस मौसम में थोड़ी सावधानी भी बहुत जरूरी है, ठीक है, तो सावधानी बरतिएगा। बाकी सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और यहाँ पर हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे मैसेज जो आ रहे हैं उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा वॉइस नोट आया है तो मैं उसको जल्दी से प्ले कर लेती हूँ। आज की सुबह क्या पहुँचाती है हमारी लिसनर, उनकी आवाज़ सुनवा देते हैं आपको भी और हम भी सुन लेते हैं। एंड किधर गया आपका मैसेज मैम, मुझे नज़र नहीं आ रहा है, चलो देख लेते हैं, आई कैन ट्राई। क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत सारे बैक टू बैक कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं तो थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर। हाँ, बट मिल गया है, चलो सुन लेते हैं मैम ने क्या पहुँचाया आज की सुबह।
1: गुड मॉर्निंग बे, कैसे हो आप? मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा, आपको और सभी लिसनरों को मेरी तरफ से लिसनर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कुछ लाइनें लेकर आई हूँ। हवाओं में तहरती वो आवाज़ आप तक जाती है, हवाओं में तहरती वो आवाज़ आप तक जाती है, सच्चे श्रोताओं से ही रेडियो की जिंदगी मुस्कुराती है। आवाज़ का ये जादू दिलों को पास लाता है, आवाज़ का ये जादू दिलों को पास लाता है, अंधेरों में भी रेडियो उम्मीद जगाता है, अंधेरों में भी रेडियो उम्मीद जगाता है। दी, मुझे एक सॉन्ग सुनवा देना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, और साथ में मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी बेस्टी लाइबा और मेरी सिस्टर दरक्सा, नजमा अप्पी और रामपुर से ही सबनम भी, प्लीज दी सॉन्ग जरूर सुनवा देना।
0: श्योर डियर, आपको ट्रैक जरूर सुनवाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। और अगला मैसेज हमारे पास कहाँ से आए हैं वो जल्दी से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है अमित वर्मा जी का और कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। और सर कहते हैं कि यूं तो गाने बहुत हैं जो दिलों को सुकून देते हैं, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर उन सैकड़ों में से कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। एक ऐसा ही गाना है देवानंद साहब जी का, दिन ढल जाए रात ना जाए, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है मैम। हाँ बिल्कुल, मैं प्ले करूंगी सर, ऐसे कैसे हो सकता है अमित जी, आप कोई गाने की रिक्वेस्ट करें और वो हम पूरी ना करें। हाँ, क्योंकि सिर्फ गाने गाने नहीं होते हैं, उनसे हमारी यादें, हमारी इमोशंस कनेक्ट होते हैं, हमारी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे लम्हे जो फिर से हमें याद आ जाते हैं। तो हम ये ट्रैक आपको सुनवाएंगे। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, मैम जी आज रेडियो श्रोता दिवस है तो उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और तमाम सुनने वाले दोस्तों को भी। एंड ये मैसेज हमें सलमान अख्तर जी पहुंचाते हैं बिजनौर यूपी से, थैंक यू, आपको हमारा शो पसंद आ रहा है, शुक्रिया आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, मेरा नाम सोनू है, सोनू कुमार जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं बुद्धि बिहार से सेक्टर 10 से एंड गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं सर अभी तो कोई अपडेट नहीं है एंड पूरी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि पापा जी जल्दी से मिल जाएं, और अगर कोई अपडेट मिलती है तो श्योर आपको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी मैं अभी ऑफिस में हूँ इसलिए सॉरी, बट कोई बात नहीं सर, सॉरी मत कहिएगा, मुझे पता है कि काम होता है और जब हम वर्क प्लेस पर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जितनी ढेर सारी तारीफ करने के लिए, ये आपका बड़प्पन है, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम सर। देखिए ये तारीफ नहीं, ये रियलिटी है अविनाश सर, क्योंकि आप की आवाज में वो मैजिक है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये भी अपनी फैमिली के साथ हमें सुन रहे हैं इस वक्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं कुछ प्यारे से गीत, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत, आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचा दीजिएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो खुशी अभी लौट कर आएगी तो आपको बताएगी, आप निश्चिंत रहिए, बस जुड़े हमारे साथ, और कुछ अगर बात कोई थॉट कोई भी कुछ भी जो आपको लगता है कि हाँ मुझे खुशी जी तक शेयर करना चाहिए तो अपना अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ।

0: विजिट करो।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक, और इस ट्रैक को गाया था अरिजीत सिंह जी ने, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। और बताइएगा दोस्तों कि बाहर का मौसम सच में सुहाना है ना। आज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, बारिश होने वाली है या नहीं? मौसम है ना बहुत ही खूबसूरत सा, बाहर बादल भी हैं।

और दोस्तों हम बता देते हैं कि आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के बताते हैं आपको, आज 20 अगस्त है और आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। दोस्तों आज अक्षय ऊर्जा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और आज पुण्यतिथि है। भारतीय इतिहास लेखन में अमूल्य योगदान देने वाले और शिक्षा जगत को नई दिशा देने वाले रामशरण शर्मा जी की आज पुण्यतिथि है, हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं। और आज मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। मच्छर आपको पता है ना दोस्तों कहाँ पनपते हैं, जहाँ पर साफ सफाई नहीं होती, स्वच्छता नहीं होती, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो दोस्तों अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, साफ सफाई का ख्याल रखिए, पानी बिल्कुल भी जमा ना होने दें और बीमारियों से दूर रहें। बीमारी से तो जब आप दूर रहेंगे, जब आप अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे। और जैसे अभी कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम छत पर जो हम सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते हैं, और वो हम अपनी टेरेस पर रख देते हैं, छत पर रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पानी जमा हो जाता है। और जब पानी जमा हो जाता है तो वहाँ मच्छर पनपते हैं, और जब मच्छर पनपते हैं तो बीमारियाँ भी आती ही हैं। तो इसीलिए अगर आपकी छत पर भी कुछ ऐसा सामान है जिसका आप यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो आप वहाँ पर भी साफ सफाई रखिएगा एंड अपने आसपास भी साफ सफाई रखिए। और जब भी आप घर से बाहर से घर आ रहे हैं तो घर आते ही तुरंत हैंड वॉश आपको करना चाहिए। और अभी मैं लौट कर आऊँगी तो और भी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ एंड बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आप तक मुझे पहुँचानी हैं। और यहाँ पर आपकी जो मैसेज आए हैं उनको भी मैं जल्दी से पहुँचा देती हूँ आप तक, आप सभी के प्यारे संदेश। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, खुशी जी नमस्ते, मुरादाबाद में बारिश पड़ रही है, आप ठीक हैं? हाँ जी मैं तो ठीक हूँ। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं मुरादाबाद सीएल गुप्ता से सलीम अंसारी जी, और साथ में इनकी फैमिली भी है, इनकी मिसेज हैं चमन जी एंड इनकी डॉटर हैं इनाया सनाया, और इनके दोस्त भी हैं कासिम अलवी जी। खुशी जी हमें एक गाना सुनवा दीजिएगा, बारिश का बहाना है जरा देर लगेगी। ओके, देखिए हम कोई बहाना नहीं लगाते हैं, हम तो फटाफट से ऑफिस आ जाते हैं क्योंकि अगर हम बहाना लगाएंगे तो फिर आप सबसे कैसे बातचीत कर पाएंगे। हाँ, और अच्छा लगता है जब हम आपसे मुलाकात करते हैं, आप सभी से बातचीत करते हैं, ये रिश्ता बहुत ही प्यारा है। पता है दोस्तों मेरे साथ क्या होता है, मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी टेंशन हो, लेकिन जब मैं माइक के सामने आती हूँ ना तो मेरी सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इस माइक में और आप में बहुत जादू है। मुझे भी नहीं पता है कि कैसे होता है ये सब, लेकिन बस हो जाता है, कुछ तो है मैजिकल, कुछ मैजिक है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में, जिंदगी में देखिए कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, किसी की लाइफ में छोटी है, किसी की लाइफ में बड़ी है, हर कोई ना कोई किसी ना किसी मुश्किल से गुजर ही रहा है। लेकिन उस मुश्किल समय में भी जब हम धैर्य बनाकर रखते हैं, जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं। और जो ऊपर वाले हैं ना परमात्मा, वो हमेशा अच्छा ही करते हैं, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। टाइम लगता है लेकिन सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो उस मुश्किल घड़ी में अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा, पॉजिटिव सोचिए। और हमारे पास यहाँ पर एक और मैसेज आया है और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं हरिओम महेश्वरी जी लाइन पर मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? जी खुशी जी तो ठीक हैं सर, उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे।
नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है अमित वर्मा जी का और ये कहते हैं खुशी जी गाने को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि कुछ गानों से हमारे दिली रिश्ते होते हैं और इस गाने से भी मेरा एक दिली रिश्ता है। तो सर अब खुशी जो है ना वो मतलब कोशिश करती है कि अपने श्रोताओं की दिल की बातों को जान पाए। थैंक यू आपने मैसेज किया हमें। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद बातचीत करते हैं। अभी लौट कर आएंगे हम आपके पास और हमारे पास अभी बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं तो मैं उनको भी शामिल करने वाली हूँ। बस आप ऐसे ही बने रहिएगा। तो एक बहुत ही प्यारा सा गाना और इस गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ पर आई है पूजा जी की विकास नगर से। ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं और कहते हैं कि रेडियो श्रोता दिवस की मैम सभी दोस्तों को सुनने वाले सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेम हियर डियर। तो चलिए सुनते हैं कुछ खूबसूरत गाना।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: विजिट करो।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: ऐ मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
3: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए थोड़ी सी देर तो हमने कर दी है, बट माफी चाहेंगे, देर करना नहीं चाहते हैं। कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम देर नहीं करना चाहते पर देर हो जाती है ना। लेकिन अब बिना किसी देरी के हम टेक्स्ट मैसेज शामिल कर लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मंजूला से। ये मैसेज पहुंचवाती है प्रियंका जी, आज की सुबह गुड मॉर्निंग विश करती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहती हैं मैम कि हम एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है, बहुत ही अच्छा लगता है एफएम को सुनना, और जब एफएम पे हमारा कॉल लग जाता है और कॉल लगने के बाद जब हम अपना गाना सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है मैम, बहुत खुशी मिलती है, एंड पूरा परिवार एकदम से खिलखिला उठता है जब हमारा कॉल एफएम मुरादाबाद में लगता है। लेकिन बहुत प्रयास करना होता है। हाँ जी, देखिए प्रयास तो करना होता है, जब कोशिश करते हैं तभी तो हमें सफलता मिलती है ना। लेकिन ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है ना एवरीवन, हम घंटों फोन लगाते हैं, जब हमारा कॉल लग जाता है फिर हम कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कॉल लगाने वाले, मतलब कॉल ऐसी रैंडमली हम ट्राई करते हैं कि चलिए लगाते हैं, लग जाएगा कॉल, और मतलब पूरे यकीन के साथ ही लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कॉल रिसीव हो जाता है, और जब कॉल रिसीव हो जाता है तो बात हम करते हैं तो हमारे लिसनर बोलते हैं हेलो मैम, हमने तो सोचा नहीं था कि हमारा कॉल लग जाएगा। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आज कौन सा ट्रैक आप सुनेंगे तो श्रोता बोलते हैं ओहो मैम, हम तो भूल ही गए जो गाना हम सुनने वाले थे। तो वो एक्साइटमेंट, वो खुशी होती है जो सारी चीज़ों को भुला देती है ना। लेकिन ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, और रेडियो की जो ताकत है वो आप सब हैं। वंस अगेन हैप्पी लिसनर डे एवरीवन। और हमारे पास अगला मैसेज यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं रितु जी न्यू मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। जो आप एफएम मुरादाबाद में ट्रैक प्ले कर रहे हैं अपने शो में, बहुत ही अच्छे हैं, थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गीता कश्यप जी का, बबली कश्यप जी का, और लक्ष्मी कश्यप जी हैं, आपको हमारी तरफ से सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आज की सुबह आप सब हमारे साथ कनेक्ट हुए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, एंड आपके बारे में हम जितना बोले ना आप सबके बारे में कम है, क्योंकि हम बहुत लकी हैं कि इतने प्यारे प्यारे श्रोता हमें मिले हैं, इतना प्यार आपको, मतलब एफएम मुरादाबाद को आप सबका मिलता है, हम सभी प्रेजेंटर को आप इतना प्यार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए। एंड मैंने आपसे कहा कि अगर वेदर देखिए कभी भी मानसून चल रहा है और मौसम का कुछ नहीं पता है, कभी भी बदल सकता है, तो इस मौसम में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर कोई काम है आपको अर्जेंटली, तो आप छाता और रेनकोट साथ रखिएगा, और अपने मोबाइल को भी संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें हमारे मोबाइल में ही होती हैं। एंड वाटरप्रूफ आप कवर ले लीजिएगा जिसमें आप फ़ोन को अपने सेफ करके रख सकते हैं, ताकि बारिश अगर हो, कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि हमारे पास छाता भी नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं होती जिससे हम अपने फ़ोन को कवर कर पाएँ, तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि वाटरप्रूफ आप एक बैग होता है उसमें आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, ताकि आपका मोबाइल सेफ रहे। और सुनते रहिएगा एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आई होप आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग, जब आप मुस्कुराएंगे तभी तो आपका दिन और भी ज्यादा खूबसूरत होगा।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। अगर

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम तो आपने शायद सुना होगा, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। नाम है कालाजार। लेकिन आज की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहती हूँ। टीकन देवी जी, आप तो गांव-गांव में जाती हैं, क्या आपने कभी ऐसा कोई मामला देखा है?
1: अरे आरजे खुशी, देखा ही नहीं, बहुत करीब से देखा है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, नाम था सरोज। पहले तो उसे बस हल्का बुखार आता था, लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ। उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, पेट फूलने लगा। हमने कहा सरोज चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसके घर वाले बोले अरे ये तो किसी की नजर लग गई है या कोई
2: शाये हैं।
1: महीने तक इलाज नहीं हुआ। जब अस्पताल पहुंची तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ,
2: जान तो बच गई,
1: लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये PKDL है, कालाजार की बीमारी। आज भी वो घर से कम निकलती हैं। लोग देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजे बहन, अगर समय पर इलाज हो जाता तो ये सब नहीं होता।
0: ये तो बहुत दर्दनाक है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। तो आज हम समझेंगे कालाजार क्या है, कैसा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। टीकन देवी जी, सबसे पहले ये बताइए ये कालाजार होता क्या है?
1: देखिए आरजे खुशी, कालाजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसे हम आम भाषा में भले ही कालाजार कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम विसरल लीसमेनियासिस है। यह बीमारी एक बहुत ही छोटे से कीड़े के काटने से फैलती है, जिसे रेत मक्खी या सैड फ्लाइड कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात यह है कि यह ज्यादातर रात के समय काटती है, जब लोग सो रहे होते हैं। जब यह रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लीवर, पीलिया यानी तिल्ली, और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में यह बीमारी साधारण लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन टीकन देवी जी, इसके लक्षण कैसे पहचाने, लोगों को कैसे पता चले कि ये कालाजार हो सकता है?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे खुशी। देखिए, इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वह पहले जैसा काम नहीं कर पाता। धीरे धीरे पेट भी फूलने लग जाता है, क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो जाती है, जिससे चेहरा पीला पड़ जाता है और व्यक्ति बहुत कमजोर दिखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
0: मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में ये अंदर से बहुत खतरनाक बीमारी होती है।
1: बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो करीब 95% मामलों में यह जानलेवा साबित हो जाती है। इसीलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: यह बीमारी किन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है?
1: भारत में यह बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं।
0: इतने सारे लोग जोखिम में हैं? ये तो सच में चिंता की बात है।
1: हाँ आरजे खुशी, और खास बात यह है कि यह बीमारी ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहाँ साफ सफाई की कमी होती है और जहाँ पशु घर के बहुत पास रखे जाते हैं, वहाँ यह रेत मक्खी आसानी से पनपती है और ऐसे वातावरण में इस बीमारी का खतरा और बढ़ जाता है।
0: अगर किसी को लगे कि उसे ये लक्षण है तो उसे क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। आजकल वहाँ पर बहुत सी आसान और तेज जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। एक ऐसा टेस्ट होता है जो लगभग 10 मिनट में यह बता देता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं, और सबसे जरूरी बात कि इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में की तरह मुफ्त किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसों की वजह से इलाज से वंचित ना रहे।
0: मुफ्त इलाज, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है।
1: बिल्कुल, और अब तो इलाज के लिए बहुत प्रभावी दवाइयाँ भी उपलब्ध है, जैसे कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो जल्द असर करती है और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि मरीज को पूरा इलाज लेना चाहिए, बीच में दवा छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट सकती है।
0: टीकन देवी जी, आपने अभी बताया कि लोग समय पर अस्पताल जाएं, लेकिन एक बात बताइए, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत समय लगेगा या बहुत पैसे लगेंगे, तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है?
1: नहीं नहीं आरजे खुशी, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही है। पहले के समय में जरूर जांच में समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी है कि गांव के पास ही सब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्द काला आजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसमे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा खून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं।
0: सिर्फ 10 मिनट में? ये तो बहुत ही आसान हो गया है।
1: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डरने या देरी करने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में इलाज करनी पड़ेगी, लेकिन अब ये सुविधाएं गांव के पास ही उपलब्ध है।
0: लेकिन टीकन देवी जी, क्या ये टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद होता है?
1: देखिए, ये टेस्ट बहुत हद तक सही परिणाम देता है और शुरुआती पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं, और अगर किसी केस में डॉक्टर को और पुष्टि की जरूरत लगे तो वे आगे की जांच भी करवा

0: तो बिना सोचे जे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाए और टेस्ट कराए। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है।
1: और क्या आशा दीदी भी इसमें मदद करती हैं?
0: हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं। वे लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वे आपके सबसे करीब की स्वास्थ्य साथी है।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों एक ही गांव के पास उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बस जरूरत है कि लोग समय पर कदम उठाएं।
1: सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या कर रही है?
0: सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है, एक बड़ा कार्यक्रम चला रहा है जिनका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम, और यह NCVBDC के तहत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्षण यह है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में से एक से भी कम हो जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2023 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो कि बहुत ही उपलब्धि है।
1: ये तो सच में गर्व की बात है।
0: हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाए, अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है, करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है, जिसमें रेत मक्खियां खत्म हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके।
1: तो आम लोग खुद क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए?
0: बहुत आसान उपाय है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर रखना चाहिए ताकि मक्खियां इंसानों के पास ना आए। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर सोने से बचे। इन छोटे छोटे उपायों से हम काला आजार जैसी बीमारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: टीकन देवी जी, एक बात बताइए, गांव में लोग इस बीमारी को लेकर किस तरह की गलतफहमियां रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा डर उसके बारे में सुनी सुनाई बातों से जताते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे खुशी, और यही सबसे बड़ी समस्या भी है। हमारे गांव में आज भी बहुत लोग काला आजार को भूत प्रेत साया या किसी की बुरी नजर का असर मान लेते हैं। जब किसी को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है और पेट फूल जाता है, तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूक या ओझ गुनी के पास चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अरे भाई, ये कोई जादू टोना नहीं, ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है।
1: हाँ, और शायद इसी वजह से लोग देर कर देते हैं इलाज कराने में।
0: बिल्कुल, और एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि यह बीमारी छूने से फैलती है, इसीलिए मरीज से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग मरीज को तो अलग कमरे में रखने लगते हैं या उसे बात तक नहीं करते, लेकिन सच्चाई यही है कि काला आजार छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता, ये सिर्फ रेत मक्खी के काटने से फैलता है। इसीलिए मरीज से डरे या उसे अलग कमरे की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे सहारा देने की जरूरत है।
1: और क्या क्या गलत धारणाएं होती हैं लोगों में?
0: कई लोग यह भी मान लेते हैं कि अगर बुखार अपने आप कम हो या तो बीमारी ठीक हो गई, जबकि अंदर से बीमारी बनी रहती है और बाद में और गंभीर हो जाती है। कुछ लोग दवा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है दवा

0: बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे बीमारी दोबारा लौट सकती है या और जटिल हो सकती है। और एक बात, और कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों को ही काला आजार होता है, जबकि सच्चाई यह है कि अगर माहौल सही नहीं है और मक्खियाँ पनप रही है तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है।
1: तो इसका समाधान क्या है? लोग इन गलत फहमियों से कैसे बाहर आए?
0: समाधान बहुत साफ है आरजे खुशी। सही जानकारी और जागरूकता। सबसे पहले तो जैसे ही किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो या पेट फूलने लगे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाइए। किसी भी तरह का झाड़ फूंक या देरी से बचे। दूसरी बात, अगर डॉक्टर इलाज शुरू करे तो पूरा कोर्स पूरा करे, चाहे बीच में कितनी भी आराम क्यों ना मिल जाए। और तीसरी बात, घर और आसपास की सफाई रखे, दीवारों की दरारें भरे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करे। और सबसे जरूरी, मरीज का साथ दे, उसे अलग या कमजोर महसूस ना होने दे।
1: बहुत ही जरूरी बातें आपने बताई। लेकिन टीकन देवी जी, आपने शुरुआत में एक दुखदायी कहानी सुनाई थी, क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां जागरूकता ने किसी की जिंदगी बदल दी है?
0: हाँ बिल्कुल है, और ये कहानी सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास के गांव में मेरी एक सहेली है रीना। कुछ साल पहले उसके इलाके में काला आजार के कई मामले सामने आए थे, जिससे गांव पूरा डरा हुआ था। लेकिन रीना ने डरने के बाद समझदारी दिखाई। उसने पहले से ही अपने घर की दीवारों को ठीक कराया, दरारें भरवाई और घर के आसपास साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना शुरू किया और आशा दीदी की हर बात को ध्यान से सुना और अपनाया। एक दिन उसे भी हल्का बुखार आया। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन इस बार उसने देर नहीं की, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र गई, टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो हंसते हुए मुझसे बोली, यार टीकन, इस बार मैं डरने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। आज वही रीना अपने पूरे गांव में लोगों को समझाती है कि डरना नहीं बल्कि समय पर कदम उठाना है।
1: सच में ये तो असली बदलाव है जब एक व्यक्ति जागरूक होता है और पूरे गांव को जागरूक बना देता है।
0: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी ताकत है, जागरूकता। याद रखिए, काला आजार खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर हम समय पर पहचान ले और इलाज करा ले तो इसे पूरी तरह हराया जा सकता है।
1: और यही सबसे बड़ा संदेश है आज के कार्यक्रम, समय पर जांच और सही इलाज आपकी जिंदगी बचाता है।
0: और साथ ही सही जानकारी अपनाइए, गलत फहमियों से दूर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए।
1: तो दोस्तों, आज से ही एक कदम बढ़ाइए, अपने और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक बनिए।
0: जागरूक बने,
1: सुरक्षित रहें और काला आजार को मिलकर हराएं। तो इसी के साथ आज का शो समाप्त होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज ये शपथ कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार श्रोताओं।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त RJ रीना। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही एक चिंता हर घर में बढ़ जाती है, मच्छर, बुखार, कमजोरी और सबसे बड़ा डर मलेरिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बीमारी जो सालों से हमारे आसपास है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ है हमारे अपने गांव-गांव के स्वास्थ्य की अलख जगाने वाले सेहतिया सिंह।
1: धन्यवाद RJ रीना, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों, आज की शुरुआत मैं एक सच्ची कहानी से करना चाहती हूँ। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहाँ रहने वाला 8 साल का बच्चा सोनू।
1: हाँ RJ रीना, मैं भी उस बच्चे को जानता हूँ।
0: गर्मी का मौसम था, गांव में पानी जमा था, मच्छर बहुत थे। सोनू को हल्का बुखार आया। परिवार ने सोचा साधारण बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा।
1: लेकिन वो साधारण बुखार नहीं था, वो मलेरिया था।
0: 3 दिन बीते, बुखार बढ़ता गया, शरीर कमजोर होता गया। जब अस्पताल ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
1: अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाता तो आज सोनू जिंदा होता।
0: दोस्तों, मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, यह लापरवाही है, जानकारी की कमी की कीमत है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे मलेरिया के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, क्योंकि आज 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस भी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के
0: सदस्य। आखिर होता क्या है?
1: देखिए, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो प्लाज़ोडियम नाम के एक परजीवी से होती है। ये परजीवी हमारे शरीर में तब आता है जब एक संक्रमित मादा एन्फोलिज मच्छर हमें काटती है। जब ये मच्छर काटता है तो ये परजीवी हमारे खून में चला जाता है और फिर सीधे हमारे लीवर और खून की कोशिकाओं पर हमला करता है।
0: मतलब यह शरीर के अंदर फैलता रहता है?
1: हाँ, और यही वजह है कि इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी, और अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये दिमाग तक भी पहुंच सकता है, जिसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, जो जानलेवा हो सकता है।
0: भैया, आपने कहा कि अब हमारे पास तकनीक है, तो क्या सच में मलेरिया खत्म किया जा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब मलेरिया के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है जो 25 देशों में दी जा रही है और हर साल लगभग 1 करोड़ बच्चों को सुरक्षा दे रही है। इसके अलावा नई दवाइयाँ आई हैं, लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन आए हैं और यहाँ तक कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीक विकसित की जा रही है। अब जो मच्छरदानी इस्तेमाल हो रही है उसमें नई तकनीक है और 2024 में जो नई मच्छरदानियाँ बांटी गयी उनमें से 84% अगली पीढ़ी की थी जो ज्यादा असरदार है।
0: तो क्या दुनिया में मलेरिया कम हुआ है?
1: हाँ, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। 2000 के बाद से अब तक 2.3 अरब मलेरिया के मामले और 1.4 करोड़ मौतें रोकी जा चुकी हैं। 47 देश ऐसे हो चुके हैं जहाँ मलेरिया पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई देशों में मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में तो 90% तक कमी आई है।
0: लेकिन फिर भी मलेरिया अभी खत्म क्यों नहीं हुआ?
1: यही सबसे बड़ी चिंता है। 2024 में अभी भी 28.2 करोड़ मलेरिया के मामले सामने आए हैं और 6.1 लाख लोगों की मौत हुई है। इसका मतलब है कि हमने प्रगति तो की है लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
0: सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
1: चुनौतियाँ कई हैं। पहली चुनौती है दवाइयों के प्रति प्रतिरोध। कुछ जगहों पर मलेरिया की दवाइयाँ पहले जितनी असरदार नहीं रही हैं। दूसरी चुनौती मच्छरों का कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध। और तीसरी समस्या है जांच में दिक्कत। कुछ मामलों में टेस्ट सही परिणाम नहीं दे पाते। और एक नई समस्या है, नए तरह के मच्छर जो शहरों में भी फैल रहे हैं।
0: क्या मलेरिया सभी जगह समान रूप से होते हैं?
1: नहीं, ये ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाकों में ज्यादा होते हैं, जहाँ साफ पानी की है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, वहाँ ये बीमारी ज्यादा फैलती है। इसलिए इसे खत्म करना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि समानता का भी सवाल है।
0: और क्या सिर्फ वैज्ञानिक समस्याएं हैं या और भी दिक्कतें हैं?
1: नहीं, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। 2024 में मलेरिया के लिए लगभग $3.9 अरब का फंड मिला, जबकि जरूरत $9.3 अरब की थी। मतलब आधे से भी कम पैसा मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर युद्ध, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी मलेरिया को बढ़ा रही हैं।
0: भैया, आपने पहले फंड की कमी की बात की थी, इसे आसान भाषा में समझाइए।
1: देखिए, मलेरिया से लड़ने के लिए दवाइयाँ चाहिए, मच्छरदानियाँ चाहिए, जांच मशीनें चाहिए, स्वास्थ्य कर्मी चाहिए, इन सब के लिए पैसा चाहिए। लेकिन अभी जितना पैसा मिल रहा है वह जरूरत से आधा भी नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं जगहों पर जरूरी सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं।
0: भैया, आपने पहले जलवायु परिवर्तन की बात की थी, इसका मलेरिया से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। आजकल मौसम तेजी से बदल रहा है, बारिश का समय बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इन सब कारणों से मच्छरों के पनपने की जगह और समय दोनों बढ़ गए हैं। पहले जो इलाके सुरक्षित माने जाते थे वहाँ भी अब मलेरिया के केस आने लगे हैं। मतलब यह सिर्फ एक बीमारी नहीं रही, यह पर्यावरण से जुड़ी समस्या बन चुकी है।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत कहाँ खड़ा है?
1: भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। 2015 से 2023 तक के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% की कमी आई है। 2024 में भारत में लगभग 2.5 लाख मामले और 86 मौत दर्ज की गई। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं, खासकर दूर दराज इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कम पहुंचती हैं वहां।
0: भारत में सबसे बड़ी समस्या कहां है?
1: सबसे ज्यादा चुनौती दूर दराज इलाकों में है, जैसे जंगल वाले क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
0: भारत का लक्ष्य क्या है?
1: भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक देश में एक भी स्थानीय मलेरिया का मामला ना हो और 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
0: सरकार इस पर कैसे काम कर रही है?
1: सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। गांव में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। PHC और सब सेंटर से मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध हैं। इसके अलावा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT की मदद से तुरंत पता लगाया जा सकता है कि मलेरिया है या नहीं, और जो दवाइयां दी जाती हैं उन्हें ACT यानी Artemisinin Based Combination थेरेपी कहते हैं, जो बहुत प्रभावी है।
0: सेहतिया भैया, आपने बताया कि भारत मलेरिया को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन जरा विस्तार से बताइए कि देश में इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे रीना, क्योंकि सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि मजबूत व्यवस्था और लगातार प्रयास से ही मलेरिया जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता है, जिसे पहले राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता था, और अब इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के तहत और मजबूत किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया के मामलों को कम करना और समय पर पहचान करना और सही इलाज देना।
0: तो क्या इसके लिए कोई खास योजना भी बनाई गई है?
1: हाँ बिल्कुल, भारत ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन तैयार की है, जिसमें साफ तौर पर लक्ष्य तय किए गए हैं। पहले मलेरिया के मामलों को तेजी से कम करना, फिर स्थानीय स्तर पर संक्रमण को रोकना और अंत में पूरे देश से मलेरिया को खत्म करना। इसी के तहत भारत ने राष्ट्रीय रणनीतिक योजना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भी बनाई है, जिसमें हर जिले को उसकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां मलेरिया ज्यादा है, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा संसाधन भेजे जाते हैं, और जहां कम है वहां निगरानी मजबूत की जाती है ताकि बीमारी दोबारा न फैले।
0: ये तो योजना हो गई, लेकिन जमीन पर क्या होता है?
1: जमीन पर काम होता है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। गांव में नियमित रूप से इंडोर रेसिडुअल स्प्रे IRS किया जाता है, यानी घरों की दीवारों पर दवा का छिड़काव, जिससे मच्छर मर जाते हैं। लोगों को लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टी

0: साइडल नेट LLIN यानी मच्छरदानी दी जाती है जो कई सालों तक मच्छरों से बचाव करती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार वाले मरीजों की पहचान करते हैं और तुरंत जांच करवाते हैं। कई बार तो वही पहली व्यक्ति होती है जो किसी मलेरिया के केस को पकड़ती है।
1: मतलब लोग खुद जाए तभी जांच होता है?
0: नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। अब सिस्टम खुद लोगों तक पहुंचता है, इसे एक्टिव सर्विलेंस कहते हैं। अगर किसी इलाके में मलेरिया का केस मिलता है तो स्वास्थ्य टीम वहां जाकर आसपास के लोगों की भी जांच करती है ताकि बीमारी फैलने से पहले ही रोकी जा सके।
1: लेकिन भैया, क्या सिर्फ सरकार से ही यह संभव है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार जितना भी प्रयास कर ले, अगर समुदाय साथ नहीं देगा तो मलेरिया कभी खत्म नहीं होगा। अगर लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर पानी जमा नहीं होने देंगे, अगर बुखार होने पर जांच नहीं करवाएंगे तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।
1: तो इसमें आम लोगों की क्या भूमिका है?
0: सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की ही है। अगर हम अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, समय पे जांच करवाएंगे और पूरा इलाज करेंगे तो मलेरिया को रोका जा सकता है।
1: भैया, गांव में कई तरह की बातें भी फैलती हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया सिर्फ गंदे पानी से होता है या खुद ही ठीक हो जाता है।
0: यही सबसे खतरनाक बात है। मलेरिया सिर्फ गंदगी से नहीं बल्कि संक्रमित मच्छर के काटने से होता है, और अगर इसका इलाज समय पर ना हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए बुखार को हल्के में ना लें।
1: लेकिन लोग अक्सर इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं।
0: यही सबसे बड़ी गलती है। जब दवा पूरी नहीं ली जाती तो बीमारी अंदर ही अंदर बनी रहती है और फिर दोबारा उभरती है, और यही कारण है कि दवाओं के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसलिए अभी डॉक्टर ने 3 या 7 दिन की दवा दी है तो उसे पूरा करना बहुत जरूरी है।
1: तो आखिर समाधान क्या है?
0: समाधान बहुत स्पष्ट है। समय पर जांच, सही इलाज, मच्छरों से बचाव और सही जानकारी, और सबसे जरूरी मिलकर काम करना।
1: तो सबसे बड़ा बदलाव कहाँ चाहिए?
0: सबसे बड़ा बदलाव सोच में चाहिए। हमें ये समझना होगा कि बुखार छोटा नहीं होता और इलाज अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये सोच हर घर तक पहुंच जाएगी तब मलेरिया अपने आप खत्म हो जाएगा।
1: सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जहां सही समय पर इलाज से किसी की जान बची हो?
0: हाँ, और यही उम्मीद है। झारखंड के एक गांव में एक महिला थी, सरिता। उसे तेज बुखार हुआ लेकिन इस बार उसने इंतजार नहीं किया। वह तुरंत आशा दीदी के पास गई, जांच हुई, मलेरिया निकला, उसे समय पर दवा मिली, उसने पूरा कोर्स किया और आज वह पूरी तरह स्वस्थ है और खुद गांव में लोगों को जागरूक करती है।
1: मतलब फर्क सिर्फ एक फैसले का है?
0: हाँ, एक फैसला समय पे जांच कराने का और पूरा इलाज करने का।
1: क्या आपको लगता है कि भारत मलेरिया को खत्म कर पाएगा?
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास योजना भी है, संसाधन भी है और अनुभव भी है। बस जरूरत है लगातार प्रयास, सही दिशा और लोगों की भागीदारी की। अगर सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और आम जनता तीनों साथ आ जाएं, तो 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का सपना जरूर पूरा होगा।
1: सेहतिया भैया, आज आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, याद रखिए, मलेरिया कोई छोटी बीमारी नहीं, लेकिन इसे हराया जा सकता है।
0: आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर कहें अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा।
1: दोस्तों, अब हमारे पास ज्ञान है, दवा है, समाधान है, अब बहाना नहीं चलेगा।
0: अब हम कर सकते हैं
1: और अब हमें करना ही होगा। मलेरिया खत्म होगा जब हम सब साथ होंगे। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार के जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है,
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और दोनों स्वस्थ रहें,
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत से लाभ कई, और अब हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे ही बहुत सी जानकारियां लेकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ FM मुरादाबाद 89.6 MHz।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: राधे राधे ब्रजवासियों, जहाँ कड़कड़ में कान्हा की लीलाएं हैं, जहाँ यमुना की लहरों में भक्ति की मिठास है, जहाँ गलियों में आज भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, वही है हमारी प्यारी मथुरा नगरी।
3: बिल्कुल, मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं, आस्था, संस्कृति और विरासत की ऐसी धरती है जहाँ इतिहास और भविष्य एक साथ कदम बढ़ाते हैं। और आज इसी धरती से हम सुनेंगे विकास की वो कहानी जो सड़कों, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, महिला बाल कल्याण और जन सुविधाओं के जरिए लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और आज का खास एपिसोड है
1: मथुरा में गूंजता विकास। तो आइए बात करते हैं उस विकास की जो सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि आम लोगों के अनुभवों में दिखाई देता है।
0: मथुरा में विकास का दायरा लगातार व्यापक हो रहा है। सड़क और आधारभूत ढांचे से लेकर पर्यटन जन सुविधाओं तक कई स्तरों पर काम आगे बढ़ रहे हैं।
1: मथुरा और ब्रज क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने, मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से लेकर ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग से जुड़े कार्यों तक विकास की तस्वीर लगातार बदल रही है।
0: और मथुरा वृंदावन जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है स्थानीय लोगों का साथ साथ देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं।
1: यानी सोच सिर्फ आज की जरूरत पूरी करने की नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए मजबूत आधार तैयार करने की है।
0: अब बात उस युवा शक्ति की जो नौकरी खोजने के साथ साथ रोजगार देने वाला बनने का सपना देखती है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
0: यानी सरकार की सोच साफ है, युवा सिर्फ अवसर का इंतजार ना करे बल्कि अवसर पैदा करने की क्षमता भी हासिल करे।
1: और यही तो है दूरदर्शी सोच। युवा के हाथ में हुनर, हुनर से उद्यम और उद्यम से रोजगार। आइए सुनते हैं अब मुकेश की कहानी जो एक लाभार्थी है।
2: मेरा नाम मुकेश, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद मैं अपना एक रोजगार करना चाहता था। इसी बीच मुझे एक योजना के बारे में पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत मुझे 5 लाख तक का 100% ब्याज मुक्त और गारंटी रहित ऋण मिला, जिसकी मदद से मैंने अपना रोजगार शुरू किया और आज मेरा रोजगार बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं और ऐसी योजनाओं से मैं बहुत ही लाभान्वित हुआ।
0: मुकेश की कहानी इस बात की मिसाल है कि विकास की असली पहचान तब होती है जब योजनाओं का लाभ सीधे परिवार तक पहुंचे।
1: और जब किसी योजना की मदद से किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार और समाज तक पहुंचता है।
0: विकास का सबसे बड़ा अर्थ है समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक अवसर और सुविधाएं पहुंचाना।
1: और इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में जीरो पावर्टी अभियान के माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
0: यानी केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि परिवार को ऐसी सुविधाएं और अवसर से जोड़ना जिससे वह आगे बढ़ सके।
1: यही दूरदर्शिता है। गरीबी को सिर्फ एक आंकड़ा मानकर नहीं बल्कि परिवार की जरूरतों को समझकर समाधान तक पहुंचने की कोशिश। आइए सुनते हैं रोशनी की कहानी जो एक लाभार्थी है।
3: मेरा नाम रोशनी है, मैं मथुरा के कोसी में रहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राज्य सरकार को कि राज्य सरकार ने हमारी आर्थिक सहायता की। मैं और मेरा परिवार बहुत निर्धन परिवार है जिसके अंतर्गत हमें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था, लेकिन राज्य सरकार की जीरो पॉवर्टी योजना के माध्यम से मैं जिला विकास विभाग के संपर्क में आई और आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर हमें आर्थिक सहायता मिली जिससे हम अपना छोटा सा रोजगार शुरू कर पाए। धन्यवाद।
0: रोशनी की कहानी भी बताती है कि योजनाओं की सफलता का असली पैमाना है लाभार्थी के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव।
1: जब सरकारी प्रयास जमीन पर किसी परिवार के लिए नई उम्मीद बनते हैं तभी विकास की तस्वीर और साफ हो जाती है। आइए सुनते हैं अब हम मथुरा के जिला विकास अधिकारी गरिमा खरे को।
4: ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धनतम व्यक्ति हैं उनको एक उस पर विकास की धारा में लेकर के आने का, तो उसके दृष्टि से जो विकसित भारत विजन 47 है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जीरो पावर्टी अभियान चलाया गया है। ये अभियान इस तरह से है कि इस पे प्रत्येक गांव में निर्धनतम जो परिवारों का चयन किया गया है, वो चयन भी एक टीम ऐसी टीम के द्वारा किया गया है जिसमें उन गांवों में जो लोग जैसे आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इस तरह के लोगों को जोड़ा गया था जो वहां पर बराबर गांव में रहती हैं और वो बेहतर तरीके से जानती हैं कि कौन सा परिवार गरीब है, तो उनका चयन किया गया है। और इस तरह से यहाँ पर 9686 परिवारों का यहाँ पर जो है वो चिन्हांकन हुआ है। उसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी स्कीम के जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर उन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और उस हर परिवार में किसी भी पैरामीटर से, कहीं खाद्यान्न से अगर वो आच्छादित नहीं है कहीं बच्चे स्कूली शिक्षा से अभाव में है या कहीं आवास में नहीं है, तो हर गवर्नमेंट विभाग की स्कीम ने अपने पैरामीटर्स के आधार पर उनके चयन करते हुए और फिर उनको लाभान्वित कराए जाने का कार्य चल रहा है। इसमें समाज कल्याण के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के जो पात्र लाभार्थी उन परिवारों से हैं उनको उसमें लिया जा रहा है, विधवा पेंशन के अगर लाभार्थी हैं तो छूटे हुए हैं अगर तो उनको लिया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक सेचुरेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि अब इस तरह के जो बेसिक नीड्स हैं उनमें कोई भी परिवार वंचित न रह जाए। और एक इसमें एक और भी हुआ है कि कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ MOU कराया गया है जो स्वयं अपना योगदान इन सेलेक्टेड गांवों में जा करके उन परिवारों से मिल करके उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनके जागरूकता के लिए काम करेंगे।
0: गरिमा खरे जी की बातों से साफ है कि विकास को जमीन तक पहुंचाने में जिला प्रशासन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
1: योजनाओं का सही क्रियान्वयन, पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना और विकास कार्यों की लगातार निगरानी, यही वो कड़ी है जो सरकार की नीतियों को आम जनता के जीवन से जोड़ती है।
0: आज जब विकास की बात होती है
1: तो सिर्फ एक सड़क या एक भवन की बात नहीं होती।
0: बिल्कुल, आज की सोच है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार, निवेश के साथ उद्यमिता, विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा और विरासत के साथ पर्यटन।
1: यही है फोरसाइट दूर की सोच।
0: आज जो सड़क बन रही है वह कल की कनेक्टिविटी है, और आज जो युवा उद्यमी बन रहा है वह कल के रोजगार का स्रोत है। आज जिस बच्चे के पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है वही कल प्रदेश की ताकत बनेगा।
1: और मथुरा जैसी सांस्कृतिक नगरी में तो यह सोच और भी खास हो जाती है, विरासत भी बचे और विकास भी बढ़े।
0: उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, सामाजिक कल्याण और जन सुविधाओं को साथ लेकर चलने की सोच दिखाई देती है।
1: और तारीफ उस सोच की भी जिसमें विकास को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय गांव, गरीब, युवा, महिला और बच्चे, हर वर्ग तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
0: एक तरफ एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और निवेश जैसी बड़ी परियोजनाएं,
1: तो दूसरी तरफ जीरो पॉवर्टी उद्यमिता, कौशल विकास और आंगनबाड़ी जैसी जमीनी पहल,
0: यानी बड़े विजन और जमीनी जरूरत दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश।
1: और यही उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच की खासियत है, आज की जरूरत के साथ आने वाले वर्षों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना। तो आज मथुरा से हमने सुनी विकास की कई आवाजें, लाभार्थियों की, प्रशासन की और उन युवाओं की जो अपने सपनों को उद्यम में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
0: आज के एपिसोड का नाम था
1: मथुरा में
0: गूंजता विकास।
1: मैं हूँ आपका आरजे जय
0: और मैं हूँ आपकी आरजे तेजस्वी भारद्वाज।
1: दोनों मिलते हैं अगले एपिसोड में विकास की एक और कहानी के साथ।
0: जय हिंद।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी नई।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एक बार फिर से मैं आनंद हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसको आप सुनते हैं हमेशा मुरादाबाद 89.6 पर। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हां श्रोताओं, अगर आप अपनी सोच बदलोगे तो हमारा समाज और हमारा देश कैसे तरक्की करेगा ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं अकेला हाजिर नहीं हूं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी प्यारी सी दोस्त प्राची। प्राची बहुत बहुत अगेन स्वागत है स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में आपका स्पेशली स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, तो आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद
0: जी। प्राची कैसा लग रहा है, पहले तू बताओ हमारे प्रोग्राम का नाम कैसा लगा तुम्हें?
1: नाम तो बहुत अच्छा, और ऐसा लगता है कि ये हमारे श्रोताओं को सोच बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा।
0: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने सारे जितने भी हमारे लिसनर हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है सोच बदलो। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में ना लोगों को सोच बदलने की बहुत जरूरत है। प्राची
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो दोस्तों, मैं और प्राची इस प्रोग्राम में काफी सारी बातचीत करेंगे और आज का हमारा स्पेशल मुद्दा है वो ये है कि बता दें या फिर प्राची थोड़ा सा ब्रेक लें? अभी क्या लगता है आपको, ब्रेक लेना चाहिए या श्रोताओं को बताना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि हमें हमारी श्रोताओं को बता देना चाहिए।
0: अच्छा, ताकि वो कहीं और जाए ना, है ना? बहुत बढ़िया। तो प्राची आज हम बात करने वाले हैं अपने श्रोताओं से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। कई बार होता है ना, तुमने देखा होगा बहुत सारी एप्स एंड वेबसाइट्स आ जाती हैं जहां पर हमें दिखाई देता है कि भैया आप इतने पैसे लगाओ आपको उसके डबल मिल जाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गई हैं आजकल मार्केट में, समझ ही नहीं आता ओरिजिनल कौन सी है, लोकल कौन सी है।
1: हाँ, ये तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है और मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करने की बहुत बहुत जरूरत है।
0: एब्सोल्युटली, स्पेशली इस डिजिटल टाइम में, ना?
1: हाँ, बिल्कुल, जब तो, हर किसी का रुख डिजिटली की तरफ बढ़ा है।
0: करेक्ट। तो श्रोताओं आपके ही में चाहिए, प्राची और आनंद के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आपके लिए अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद वापस आएंगे मैं और प्राची, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शहर के सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। आनंद और प्राची के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम
1: सोच बदलो श्रो।
0: बिल्कुल, और सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: तो आज का हमारा मुद्दा है श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन और सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: तो आज का हमारा मुद्दा है श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। अच्छा प्राची, कई बार तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत सारे लिंक्स आते होंगे फ्रेंड्स के थ्रू, या कुछ एड्स आ जाती होंगी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि आप जो है ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें आप इतने पैसे लगाओगे तो आपको इतने मिल जाएंगे, या फिर अगर आप पे इतने रुपए जमा करते हो तो इसका इतना मिल जाएगा आपको। इस तरीके के बहुत सारे एप्स आते हैं, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे हमें दिखाया जाता है। ऐसा कभी तुम्हारे सामने कोई सीन हो आया हो कभी?
1: हाँ हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत आते हैं और मुझे लगता है कि सभी के फोन पे आते हैं और हमें इससे सावधान रहने की बहुत जरूरत है।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कैसे काम करता है। सोशल मीडिया एड्स व्हाट्सएप से संपर्क करते हैं, उसके बाद हाई रिटर्न का आपको लालच देंगे। जैसे अगर आप 10,000 जमा करोगे तो आपको 1,00,000 रुपया देंगे। उसके बाद ये फेक एप्स और कुछ वेबसाइट जो है बनाते हैं जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुरुआत में आपको ये फेक पोर्टफोलियो दिखाते हैं अपना, मतलब एक प्रोफाइल बनाते हैं फेक जिसपे आपको बड़ा जेन्युइन लगेगा सारी चीजें। एंड उसके बाद ये एक बड़ा अमाउंट जैसे ही मतलब आप उनके पास डालोगे, सपोज आपने 10,000 डाला, उन्होंने बोला हम आपको 1,00,000 देंगे इसके बदले में, आप 10,000 जमा करोगे, विड्रॉल का ऑप्शन ही बंद हो जाएगा वहां से। तो इस तरह की जो चीजें ये लोग डिजाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड।
1: बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी हमारी श्रोताओं को। और ये इतना जेन्युइन अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि बहुत अपने बहुत लोगों के फीडबैक भी रखते हैं, तो जैसे देखकर जो हम होते हैं हमारे मन में ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है।
0: एग्जैक्टली श्रोताओं, इसी पर और बहुत सारी बातचीत मैं और प्राची करते रहेंगे, लेकिन आइए जरा एक खास इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाते हैं इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं सोच बदलो, सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा, और आज हम सोच बदलो प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे हर चीज पे, अगर हम लगेगा कि यार डिजिटली करना है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी आपकी थॉट प्रोसेस आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आप सोच बदलो, आपकी चीजें बदल जाएंगी, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कनेक्टेड है चीजें। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सोच बदलने का क्या सीन है, तो मैं ये भी आपके लिए यहां पर क्लियर कर देता हूं। क्या होता है ना, हमारी सोच ये हो गई है आज के समय में प्राची, कि हमें हर चीज बैठे बैठाए करनी है, हर चीज हमें अपने फोन से करनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: हमें शॉपिंग करनी है अपने फोन से करनी है, हमें सब्जियां मंगानी है अपने फोन से मंगानी है, हमें ना हर चीज बैठे बिठाए चाहिए प्राची। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच ही तो है जो हम ऑनलाइन पूरी तरीके से हम जो है निर्भर हो गए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज। आज फिर मैं वापस लौट कर आया हूं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो लोगों की सालों की बचत और जीवन भर की कमाई कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। इस अपराध का नाम है निवेश घोटाला। मतलब पैसे लगाओ और 10 मिनट में दोगुने करके वापस पाओ। हाँ जी, आखिर निवेश घोटाला क्या है? श्रोताओं, निवेश घोटाला वह धोखाधड़ी है जिसमें ठग बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कहते हैं कोई जोखिम नहीं है, गारंटी रिटर्न का वादा करते हैं। वह लोगों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, नकली वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश के लिए उकसाते हैं। चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे, इस ग्रुप में लिखा है हर दिन 5% मुनाफा बिना किसी जोखिम के। इतना मुनाफा? कहीं धोखा तो नहीं? नहीं यार, देखो स्क्रीनशॉट भी है, सब लोग मुनाफा कमा रहे हैं। पहले 10,000 लगाए हैं, अरे वाह, ऐप में तो मुनाफा दिखाई दे रहा है, अब तो 50,000 रुपए लगा देता हूँ। मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। निकासी से पहले वेरिफिकेशन फीस जमा करनी होगी। कुछ देर बाद ऐप गायब हो जाता है और समझ जाता है कि वह निवेश घोटाले का शिकार हो चुका है। निवेश घोटाले इतने खतरनाक क्यों हैं? श्रोताओं, निवेश घोटाले इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि ये लालच का फायदा उठाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं, कई मामलों में रिटायरमेंट का पैसा चला जाता है, कर्ज लेकर निवेश किया जाता है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। निवेश घोटाले से रिलेटेड चलिए मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग। गारंटेड मुनाफा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शायद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिना जोखिम के निवेश, हाँ जी, आप कहीं पर अगर निवेश कर रहे हैं तो पहले वहाँ पर देखिए कि कितना जोखिम है कितना नहीं। आज आखिरी मौका है, जब आपके साथ या फिर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि अभी निवेश करो, आज आखिरी मौका है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अनजान व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, किसी भी वजह से, किसी भी कारण, किसी भी ऐसे ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐप या कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या सच में वो ऐप वेरीफाइड है या फिर नहीं है, इन बातों का ध्यान भी रखना होता है। याद रखिए, असली निवेश में जोखिम होता है, ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा जोखिम। निवेश करने से पहले क्या करें? निवेश से पहले ये बातें जरूर जांचें कि कंपनी या प्लेटफॉर्म सरकारी रजिस्टर्ड में दर्ज है या फिर नहीं है। किसी अधिकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इंटरनेट पर रिव्यू और जानकारी खोजें। अनजान लोगों बातों में ना आए। कभी भी बैंक लॉगिन, ओटीपी, यूपीआई पिन साझा बिल्कुल ना करें। बुजुर्गों और नए निवेशकों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, निवेश घोटालों के शिकार अक्सर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, पहली बार निवेश करने वाले लोग होते हैं। इसलिए परिवार में निवेश से पहले चर्चा करें। जल्दी मुनाफे के लालच से बिल्कुल बचें। शक हो तो नहीं कहना सीखें। ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आपके साथ निवेश घोटाला हो गया है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। याद रखिए, जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षित निवेश के 5 सुनहरे नियम। गारंटेड मुनाफा सबसे बड़ा धोखा, अनजान प्लेटफॉर्म बड़ा खतरा, जल्दबाजी मतलब नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा। जाते थे श्रोताओं, मैं आपसे इतना चाहूंगा कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और एक गलत फैसले से चला भी जाता है। लालच नहीं, जानकारी के साथ निवेश करें। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाँ जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की जानकारियां भी देता है।
1: तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आरजे राज के द्वारा जो आपको दी गई है, आई एम श्योर ये आपके काम की होगी और आपको जरूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्यों प्राची?
2: हाँ बिल्कुल,
1: और मुझे लगता है कि यही सारी चीजें हैं जो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करनी है। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो हम इन चीजों के शिकार होने से

0: भी कई हद तक बच सकते हैं। सही कहा ना?
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारा जो ये कार्यक्रम प्रसारित करने का जो उद्देश्य है वो भी तभी पूरा होगा।
0: एब्सोल्युटली। तो श्रोताओं, हमारा भी उद्देश्य है एक म्यूजिक प्ले करने का। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद और प्राची के साथ। एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद हम पुनः लौट कर आएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और इससे पहले कुछ और खास और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। आपके हिम्मत जाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद और प्राची को।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: ये पर

0: बहुत ही खूबसूरत गीत श्रोताओं भी आपने एंजॉय किया। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आनंद और
1: प्राची के साथ।
0: क्या बात है प्राची, आज का हमारा प्रोग्राम लगभग अब समाप्ति की ओर है। आज हमने ढेर सारी बातचीत करी अपने श्रोताओं से। आज हम बात कर रहे थे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारे श्रोताओं ने काफी एंजॉय भी किया होगा और उनको काफी जानकारियां भी मिली होंगी इस प्रोग्राम के जरिए।
1: बिल्कुल किया है कि आपने बताया भी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने श्रोताओं को बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में दी।
0: एब्सोल्युटली, और हमारा मकसद ये है कि हमारे जो सामुदायिक है, हमारा जो कम्युनिटी है मुरादाबाद के, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हमें सुन रहे हैं, उनको सही और अच्छी जानकारी मिले। देखिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सही जानकारियों का होना भी बहुत जरूरी है
1: और हमारा जागरूक रहना भी जरूरी है।
0: सही कहा आपने। वो प्राची, कुछ टिप्स हैं मुझे लगता है कि जो हमें अपने श्रोताओं को बता देनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, अगर ये दिखे तो उनको रुक जाना चाहिए। तो प्राची, वो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखते ही अगर ये सिम्टम्स नजर आए तो हमें रुक जाना चाहिए तुरंत? प्लीज बताओ जरा हमारे श्रोताओं को।
1: हाँ बिल्कुल, तो हमारी श्रोताओं, आपके लिए ये जानकारी है कि अगर आपको ये रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं तो आपको तुरंत रुक जाने की जरूरत है। अगर वो गारंटेड प्रूफ प्रॉफिट या रिस्क फ्री रिटर्न की बात करते हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया अच्छे से आप उसकी जांच करें।
0: बिल्कुल,
1: जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर, अगर वो कंपनी की साइड से आपको बहुत जल्दी इन्वेस्ट करने का प्रेशर आ रहा है, एक कॉल्स आ रही है एक के बाद एक और आपको लग रहा है ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनी होती है वो इतना बार बार आपको
0: प्रेशराइज
1: नहीं करती है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और अगर वो व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम ग्रुप, खासकर मैं बताना चाहूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे तो उनका इतना बड़ा नेटवर्क है
0: और मोस्टली जो पीपल्स हैं, जो न्यू जनरेशन हैं, वो सारे लोग टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आई थिंक
1: इतने ज्यादा फेक प्रोफाइल है, आपको उनसे सजग रहने की जरूरत है। और हाँ, अगर वो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा भेजने को कह रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। कृपया ऐसे अगर आपको सिम्टम्स साइंस नजर आते हैं तो आप सावधान रहें। और जाते जाते मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगी जरूरी, आप ये जरूर चार्ज कर लिए कि वो जो कंपनी है वो सीबी से रजिस्टर्ड है या नहीं,
0: मतलब वेरिफिकेशन उसका है या नहीं, करेक्ट तरीके से वेरीफाई है या नहीं।
1: जी
0: बिल्कुल प्राची, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई एम रियली श्योर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए, उनको जरूर ये इन्फॉर्मेशन काम में आएंगी और मुझे लगता है कि आनी भी चाहिए। इनफैक्ट हम लोगों को भी चीज ध्यान में रखनी है यार, बिकॉज हम लोग भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, नो डाउट। भले हम अपना टाइम हमारा फिक्स है बट हम यूज तो करते हैं यार।
1: हाँ, और कभी कभी तो हम लोग भी धोखा खा जाते हैं।
0: एब्सोल्युटली, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो उसके शिकार हो गए, आप ना हो, बट अगर आपको लगता है कि अगर आपके साथ कोई स्कैम हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत 1930 पे कॉल करना है, 1930 पे आप कॉल करें, ये साइबर हेल्पलाइन का नंबर है या ये टोल फ्री नंबर है, आई रिपीट नंबर 1930, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करें अगर आपने किसी को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी और आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो प्लीज अपने नजदीकी ब्रांच में जाके डेफिनेटली उनको इन्फॉर्मेशन दें कि आपने किसको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सो बस श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखिए और बाकी अपना भी ख्याल रखिए। अभी हमारा जाने का समय हो रहा है तो मैं और प्राची आपसे लेते हैं इस प्रोग्राम से इजाजत अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है
1: सोच बदलो।
0: जी हाँ, सोच बदलेगी तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। फिलहाल आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: बाय बाय, टेक केयर।

0: जिद करो।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से। और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में, मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
0: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
1: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई है, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
0: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन भी पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं, और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजस रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
0: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को।
1: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
0: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
1: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो अभी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
0: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
0: जब भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
1: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहां पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1 हजार की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुए हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
0: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
1: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है, और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
0: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
1: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया, हमारे पास मैपिंग है। हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है, और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं, इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी ANM बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं, उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे, और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं, और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
0: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
1: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है। ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
0: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
1: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट NGO का धन्यवाद देना चाहूंगा, और मेरा आखिरी संदेश ये है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ANM बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
2: मुंडे कुड़िया पंगड़ा।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: तेरा इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रही है मेरी मोहब्बत की सरगर्मियां, तेरे मेरे फासलों के बीच छुपी हुई है बहुत सी नजदीकियां।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: सेक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमे ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमे ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट। बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
3: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
2: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति, मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
4: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन

0: दशकों हमारी मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577, जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: और देखिए मैं के नहीं आती हूँ महिला मंच शो में, मेरे साथ आरजे खुशी भी आती है। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। तो इस महिला मंच शो में हम बात करने वाले हैं, यानी कि हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ना भी कहना जरूरी होता है। अक्सर हम यही करते हैं ना कि हम दूसरे को खुशियों के लिए हमेशा जब भी वो कुछ काम बोलता है हम हाँ कर देते हैं, लेकिन देखिए हाँ करना भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी ना आपको जब लगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, वहाँ पे मुझे ना बोलना है, तो वहाँ पे ना बोलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो ज्यादा अच्छे आप बनोगे ना तो उतने अच्छे तरीके से चक्की में पीसे भी जाते हैं, तो इसीलिए ज्यादा अच्छा भी बनना जरूरी नहीं है। उनके साथ अच्छे रहिए जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो आप जब भी बोलते हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं, उनके लिए तो भैया देखिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, उनके साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। और कभी कभी हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को दुखी कर बैठते हैं। किसी ने मदद मांगी, हमने हाँ कह दी। किसी ने अपना काम हमारे ऊपर डाल दिया, हमने कहा कोई बात नहीं कर लेंगे। मन नहीं था फिर भी किसी की बात मान ली, थक गए थे फिर भी किसी के लिए समय निकाल लिया, और जब अपने लिए कुछ करने की बारी आई तो हम खुद से ही कह देते हैं अभी नहीं बाद में। लेकिन श्रोताओं, आज के इस महिला मंच शो में आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारी प्यारी बहनें हैं, सो देखिए काम करना जरूरी है हर किसी के लिए, जब भी कोई काम बोले आप करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना खुद के लिए टाइम निकालिए और कभी कभी ना बोलना भी सीखिए। क्योंकि अक्सर लड़कियां महिलाएं होती हैं वो ना नहीं बोलती है, हमेशा काम के लिए तैनात रहती है, जिसने बोला काम करो तो कर देती है, लेकिन कभी कभी आपको अपने लिए डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है।
1: साथियों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और क्या हर बार हाँ कहना हमें अच्छा इंसान बनाता है, या फिर कभी कभी अपने लिए ना कहना भी जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, हर हाँ रिश्ता नहीं बचाती और हर ना रिश्ता नहीं तोड़ती। कभी कभी एक छोटा सा ना आपको खुद से दोबारा जोड़ देता है। तो आज बात करेंगे दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को पीछे छोड़ देने की, बात करेंगे अपनी सीमाओं की, अपने मान की, और अपने लिए ना कहना सीखने की। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला मंच, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे खुशी। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, हर किसी को खुश करने से पहले एक बार खुद से भी पूछेंगे, क्या खुशी, क्या तू खुश है? एंड एक बार आपका जो भी नाम है आप खुद से पूछिएगा कि क्या आप खुद से खुश हैं? आखिर ना कहना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, ना सिर्फ दो अक्षर का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे बोलना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है सामने वाला बुरा ना मान जाए, उसे लगेगा कि हम स्वार्थी हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो शायद रिश्ता खराब हो जाएगा। और डर में हम अपनी इच्छा के खिलाफ बार बार हाँ कहते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दूसरों की हर उम्मीद पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप भी थक सकते हैं, आपका भी मन नहीं हो सकता है, आपके पास भी समय कम हो सकता है, और ये सब बिल्कुल सामान्य है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एवरीवन, आप आखिरी बार कब सिर्फ इसलिए हाँ बोले थे क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला बुरा ना मान जाए? और अगर आप उस समय ना कह देते तो क्या होता? मुझे अपने संदेश जरूर भेजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896।
0: तो देखिए श्रोताओं, अब हम बात करेंगे अच्छा इंसान बनने की गलत परिभाषा। हमारे मन में बचपन से ही एक बात बैठा दी जाती है, अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात, अच्छी बेटी वही है जो सबके काम आए, अच्छी पत्नी वही है जो सबको खुश रखे, अच्छा दोस्त वही है जो हर समय उपलब्ध रहे। लेकिन क्या ये सच है? अगर आप हर किसी के लिए मौजूद है लेकिन खुद के लिए कभी कोई मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में संतुलन लाने की जरूरत है। अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहे। अच्छा इंसान होना और खुद को भूल जाना दो अलग बात। और घर वाले तो अक्सर हमें सिखाते हैं कि हमेशा एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के लिए खड़े रहो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप उनके साथ खड़े रहो, उनको साथ दो जो आपके साथ जैसे आप किसी के लिए एक बात पर खड़े हो जाते हो, बोलते हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं काम करूंगी, तो जो बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, सामने वाला भी आपको वैसा रिप्लाई दे और आपके साथ वैसा ही रहे, तो बिल्कुल आप भी उनके साथ वैसा ही रहे, वैसा ही व्यवहार करें जैसा सामने वाला करता है। और कभी कभी हर विमनिया को ना भी कर देना चाहिए। शाम होते ही सुबह से लेकर शाम तक किचन में लगी रहती है, भाई कुछ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन कभी अपने पसंद के कुछ नहीं बनाती है। तो कभी कभी ना करके ये बोला करिए कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, बाहर एंजॉय करके आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी जिंदगी जीने का मौका मिले, बाहर घूमने का मौका मिले। और बाहर घूमने का ये सबसे आसान तरीका है कि शाम के खाने के लिए ना कर दो, आज खाना नहीं, आज बाहर खा के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं। तो देखिए आपको भी टाइम मिलेगा और आप भी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगी और बाहर के नजारे हैं, जो बाहर की देश दुनिया है, आप उसको भी एंजॉय कर पाएंगी। क्योंकि चार दीवारी में रहना और भाई थोड़ी सी घुटन भी हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, तो उससे थोड़ा बाहर निकलिए, ताजगी हवा लीजिए और अपने जीवन को एंजॉय करिए। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पे श्रोता एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ। एक बहुत ही शानदार गाना आप सभी के लिए है, तो इस गाने को एंजॉय करिए।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं महिला मंच शो। मेरे साथ आरजे खुशी भी है। सो अब मैं बात करने वाली हूँ, ना स्वार्थ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अपने लिए ना कहना स्वार्थ, लेकिन नहीं। अगर कोई आपसे कहता है आज मेरे साथ बाहर चलो और आपका मन नहीं है, तो आप प्यार से कह सकते हैं आज मेरा मन थोड़ा आराम करने का है। हर किसी और दिल मिलते हैं, इसमें स्वार्थ कहाँ है। अगर कोई आपसे ऐसा काम करने को कहता है जिसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप कह सकते हैं अभी मेरे पास समय नहीं है कि बाद में करूँगी या फिर कर दूंगा। क्योंकि देखिए, जब आपका मन ना हो ना कोई काम करने के लिए और आप उसको जबरदस्ती करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो काम आप बेटर कर ही नहीं पाएंगे। आप बोल सकते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी देर में आपका जो काम है वो कर दूंगी, शायद आप और बेटर उस टाइम कर पाए। और जब मन नहीं होता किसी काम को करने के लिए, तो आपका वो सारा काम गलत ही होता जाता है। आप उसको खुद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो कहीं और रहता है। बॉडी थकान हो चुकी होती है, तो वो आपसे आराम मांगती है, तो उसको आराम दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप उस काम को कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं खुशी से जानना चाहूंगी, कहाँ हो भैया तुम, बातें सुन रही है भैया, लड़के चुप चुप के। अरे बोलो भाई, तुम भी कुछ।
1: हाँ, मैं आपकी बातें सुन रही थी, बहुत ही अच्छे से आप सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करती हूँ, पहले आपको सुन लेती हूँ। और दोस्तों, मैं भी आपसे कुछ एक छोटा सा संवाद शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको ना कहने के बाद अपराध बोध होता है? मतलब आपने किसी को मना तो कर दिया, लेकिन बाद में मन में बार बार चलता रहता है शायद मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी। ये मेरे साथ होती ना,
0: मेरे साथ भी होता है।
1: मुझे लगता है कि यार मैंने क्यों ना बोल दिया, मुझे हाँ बोलना
0: और चाहिए। और वो मुझे लगता है कि वो पूरा दिन हमारे दिमाग में घूमता रहता है।
1: हाँ।
0: सामने भी जब जाते हैं ना उसके पास, तो मैंने कहा यार क्या सोच रहा होगा ये, क्या सोच रही होगी।
1: सेम सिचुएशन होती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, आज का हमारा महिला मंच बहुत खास है आपके लिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है मीरा की। मीरा एक बहुत ही होनहार लड़की थी। घर में सबकी मदद करना, दोस्तों के काम आना, ऑफिस में दोस्तों का काम कर देना, मीरा के लिए सब सामान्य था। उसकी एक आदत थी, वह किसी को ना ही नहीं कह पाती थी। ऑफिस में कोई कहता मीरा मेरा ये काम कर दो, वह कहती हाँ। दोस्त फोन पर कहते मीरा मेरे साथ बाजार चलोगी, मीरा बोलती हाँ चलूंगी। घर में कोई कहता आज ये काम तुम कर देना, मीरा कहती हाँ मैं कर दूंगी। धीरे धीरे मीरा थकने लगी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। एक दिन वह बहुत थकी हुई घर लौट कर आई। उस दिन उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? मीरा ने कहा कुछ नहीं माँ। माँ ने मुस्कुरा कर कहा कुछ नहीं नहीं बहुत कुछ है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा माँ मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ। माँ कुछ देर चुप रही, उन्होंने बहुत प्यार से कहा बेटा दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश में तुम खुद के लिए बुरी बन गई हो। मीरा चौंक गई। माँ ने कहा तुमने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन कभी खुद से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन ऑफिस में एक साथी ने फिर अपना काम मीरा को देते हुए कहा मीरा ये भी काम कर देना मीरा प्लीज। मीरा कुछ सेकंड चुप। पहली बार उसने मुस्कुरा कर कहा माफ कीजिएगा आज मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। बस इतना ही कहा सामने वाला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुनिया खत्म नहीं हुई, बड़ा रिश्ता नहीं टूटा, ऑफिस बंद नहीं हुआ। मीरा को बस पहली बार महसूस हुआ अरे मैं मना कर सकती हूँ। उस दिन के बाद मीरा ने हर बात पर ना कहना शुरू नहीं किया। जहाँ सच में जरूरत है वहाँ मदद करो, लेकिन जहाँ आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा हो वहाँ अपनी सीमा तय करो। और दोस्तों, मीरा की जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव तब आया जब उसने दूसरों को खुश करने से पहले खुद को भी इम्पोर्टेंस दी, खुद को भी महत्व देना शुरू किया। तो दोस्तों, अभी मिलते हैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए, लौट कर आते हैं हम आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है महिला मंच, जहां पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। अक्सर क्या होता है ना, हमारी जो मेल्स होती है ना, जैसे रीना ने भी आपको बताया दोस्तों कि वो कभी लड़कियां भी ना बोलती ही नहीं है, हमेशा हर काम के लिए हाँ ठीक है मैं कर दूंगी। और मीरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो आगे क्या हुआ है सब आपको बताऊंगी अभी एक प्यारे से गाने के इस बार।

0: क्या बात है श्रोताओ, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। अपने तो अपने होते हैं, सच में अपने तो अपने ही होते हैं। फिलहाल इस महिला मंच में हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जो बात है वो शुरू यानी कि जारी रखते हैं। रिश्तों में ना क्यों जरूरी है, अब एक बहुत जरूरी बात। कई लोग सोचते हैं कि ना कहेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन जो रिश्ता आपके एक सम्मानजनक ना होकर स्वीकार ना कर सकता, उस रिश्ते में कभी ना कभी संतुलन की जरूरत है। सच्चे रिश्ते में आप अपनी बात कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आज मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मैं इस तरह बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए और सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करे। यही स्वस्थ रिश्ता होता है, क्योंकि जो आपकी बात समझे, जो आपका अहमियत करे, मुझे लगता है कि वो रिश्ता सबसे बेस्ट होता है। और रिश्ता वो नहीं कि जो आपने हाँ कहा वो टूट गया और उसने अगले ने सोचा कि यार इसका तो यही काम है, ये ना कर देती, इसे बोलना ही बेकार है, आज के बाद मैं इसे कुछ काम बोलूंगा ही नहीं, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। मुझे ये लगता है वहाँ पर आपको ना करना बहुत जरूरी। जो इंसान आपको समझता है, जिस रिश्ते में आपको समझा जाता है, सम्मान दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, वो आपको समझेगा, वहाँ पर आपकी बातें अच्छे से सुनी भी जाएगी, तो वो रिश्ता हमारे लिए बेस्ट होता है। ना कि ना कहा और टूट गया, वो रिश्ता नहीं होता है। सो महिलाओं के लिए यानी कि खास बात क्या है, जो आजकल की हमारी प्यारी विमेन है उनके लिए खास बात क्या है, और आज की ये बात खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो घर में सबकी जरूरत समझती हैं, सबके खाने का ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, पति का ध्यान रखती हैं, सास ससुर का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कहती हैं मेरे लिए क्या। याद रखिए, आप घर की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आपकी अपनी पसंद है, आपका अपना समय है, आपके अपने सपने हैं, घर वालों की देखभाल कीजिए, लेकिन खुद की देखभाल भी उतनी जरूरी है। अक्सर महिलाएं इस चीज को अवॉइड करती है, उनको अगर थोड़ी तबीयत भी खराब होती है ना तो बस एक ही बात कहती है, यार ठीक है दवाई लेके ठीक हो जाएगा, क्या ही जरूरत है, वो दवाई लेके तो दो एक दिन के लिए ठीक भी हो जाता, फिर से उनके साथ यही होता है। तो मुझे लगता है कि खुद के लिए कदम बढ़ाइए, आप अगर आप स्वस्थ रहेंगी ना तभी आप परिवार वालों को भी खुश रख पाएंगी, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो परिवार वालों को आप खुश नहीं रख पाएंगी। और जब आपकी लग रहा है कि आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बोल दो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी देर बात कर लेंगे, क्योंकि हर समय हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं है। आप जितना अच्छा बन के दिखाएंगे आपसे उतना ही काम कराया जाएगा और आप उतने ही बेवकूफ बनते जाएंगे, इसीलिए थोड़ा दिमाग से काम करिए। देखिए हर किसी के साथ काम करिए लेकिन थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी। तो देखिए यहाँ पर अब मैं बच्चों के बारे में भी बात करने वाली हूँ। बच्चों को भी ना कहना सिखाइए, क्योंकि अक्सर माँ बाप यही सिखाते हैं हमें कि हर किसी के साथ रहो, हर किसी की बात मानो, जो भी तुम्हें कोई कहे मतलब जो तुमसे बड़ा है उनकी बातों का सम्मान करें, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कभी कभी ना कहना भी सिखाना पड़ेगा। अगर आप उनको ना कहना नहीं सिखाते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम बच्चों को अक्सर कहते हैं बड़ों की बात मानो, लेकिन हमें उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई उन्हें ऐसी बात के लिए मजबूर करे जिसे वो असहज महसूस करे तो वो साफ शब्दों में ना कह सके और किसी भरोसेमंद बड़े को बता सके। ना कहना सिर्फ व्यक्तित्व की बात नहीं, कई बार ये अपनी सुरक्षा सम्मान की बात भी होती है। इसीलिए बच्चों को सिर्फ अच्छा बच्चा बनो मत सिखाइए, ये भी सिखाइए अपनी बात कहना भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि हाँ बोलो हाँ बोलो, तो कभी कभी एक ऐसा अनजान व्यक्ति भी सामने आ जाता है जिसको नहीं जानता है बच्चा, और फिर भी वो बोलता है कि मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, वो ले लेता है और हमें नहीं पता उसमें क्या मिलावट है क्या नहीं मिलावट है और बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि वो रास्ते में अकेले भी आते हैं। तो ऐसी जगह पर यानी कि बच्चों को ना कहना भी सिखाना चाहिए कि जो अनजान व्यक्ति है जिसको नहीं जानते हैं उनको आप ना बोलो, अगर उनके साथ भी अगर आप बोलते हो तो आजकल आप सभी को पता है कि कितना स्कैम चला हुआ है, है, बच्चे के साथ भी धोखाधड़ी होती है, तो बच्चों को ना कहना सिखाइए और उन्हें ये भी सिखाइए कि जो अब आपके साथ अनजान व्यक्ति आता है तो उनसे कम बात करें। और साथ ही साथ कोई अजनबी व्यक्ति आपके बच्चों को खाने के लिए कुछ दे रहा है और उसे कह रहा है कि बेटा चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, वैन में छोड़ देता हूँ, तुम पैदल चल रहे हो धूप में ना, तो वहाँ पर बच्चों को सिखाइए कि वहाँ पर आपको ना बोलें। और सबसे बड़ी बात, बच्चे बाहर जाते हैं और बच्चे लालच में भी आ जाते हैं, बच्चे होते दिल के सच्चे, वो उनको लालच मिल जाता है कि चलो मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, तो ले लो और खा लो और मेरे साथ चलो, तो बच्चे चल भी देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सावधान करिए, जो घर वाले दे रहे वो खाओ, लेकिन जब आपको बाहर दिया जा रहा है तो मत खाओ। और कोई भी कहता है कि दो कदम पर मेरे साथ चलो तो वो भी आपको ना कहना है, वहाँ पर बच्चों को सिखाइए, ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत जरूरी।
1: क्या बात है रीना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर जा रहा है, कोई अजनबी पर्सन उनको मिल रहा है, तो उनसे कोई चीज ना ले और उनके साथ कहीं भी ना जाए, क्योंकि बच्चों को सुनना बहुत जरूरी होता है, बच्चे बड़े मासूम होते हैं। और बच्चों को ना ये भी बताइए, आप अपना मोबाइल नंबर एंड अपने घर का एड्रेस, पूरा डिटेल्स में पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीजें बच्चों को याद करवाइए, ताकि बच्चा कभी ऐसे सिचुएशन में अगर हो फंस जाए, कभी ऐसी कंडीशन, मैं तो कहूँ कि ना आए, लेकिन कभी ऐसा हो तो बच्चों को अगर सारी चीजें याद रहे तो वो अपनी फैमिली को कॉन्टेक्ट कर सकता है एंड अपने सही अपने डायरेक्शन पर वो पहुँच सकता है।
0: और साथ ही साथ बच्चों को ये भी सिखाइए बैड टच और गुड टच।
1: हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत मोस्ट था, क्योंकि चलो हमने बहुत सारे बच्चों के ऊपर बातें की है और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम थोड़ा सा ना फन भी करने वाले हैं, थोड़ी सी मस्ती भी करने वाले हैं, थोड़ा फन एक्टिविटीज हो जाए ना एवरीवन। तो चलो रीना, मैं तुम्हारे साथ एक मजेदार गेम खेलती हूँ, ठीक है? चलो रीना, हमने एक मजेदार गेम खेलते हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन दूंगी जिसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है,
0: ठीक है?
1: और वो भी प्यार से, ठीक है? तो पहला सवाल मेरा ये है, आप बहुत थकी हुई हो और दोस्त आपसे कहें कि चलो आज पार्टी करते हैं, तो आप हाँ कहेंगी या ना?
0: अगर वो मेरे खास होंगे तो हाँ, अदरवाइज ना।
1: चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पास पहले से ही बहुत काम है और कोई अपना आपको भी अपना काम दे दे, तो आप हाँ कहेंगी या ना?
0: ना।
1: चलो तीसरा सवाल, कोई आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा लेकिन आप सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए चुपचाप हैं, क्या यहाँ हमेशा हाँ सोचेंगी या आपने जवाब ना? ओके, इन्होंने सवाल से पहले ही
0: मैं
1: जवाब दे दिया।
0: तुम क्या कहना चाह रही हो?
1: ठीक है,
0: आगे पूछो।
1: अरे वाह, क्या बात है, रीना तो हर सवाल का राइट आंसर दे दिया है, राइट आंसर दिया है। और ये तो हमारे आज महिला मंच की बन गई हैं क्वीन, तो उनके लिए जोरदार तालियां। बड़ी खुशी होती है ना जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है।
0: हाँ।
1: ना कैसे कहें ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है दोस्तों? अब सबसे जरूरी बात, अगर ना कहना है तो कैसे कहें, क्योंकि ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को अपमानित करें, आप प्यार से कह सकते हैं मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगी, या मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन इस बार मेरे लिए संभव नहीं है।
0: मतलब वही बात है ना, मुस्कुरा कर कहनी है, गुस्से में नहीं कहनी।
1: हाँ सिचुएशंस, और अभी मुझे थोड़ा अपने लिए समय चाहिए बस। तो चलिए एवरीवन, मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में नई बातों के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा हमें जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सभी अपना ख्याल रखिए।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और श्रोताओं, मैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ, हेलो फरमाइश। समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:08। और इस खूबसूरत शो में आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करना होगा और कॉल करने के लिए नंबर आप को मैं बताने वाली हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो जल्दी से कॉल लगाइए, देर किस बात की है। जब तक आप मुझे कॉल लगा दें, तब तक मैं आपको एक प्यारा सा गाना सुनवाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, सोना महापात्रा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत से गाना। सुनिएगा, बस मैं वापस आती हूँ अभी।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने सुना ही प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी फुकरी से सोना महापात्रा की बहुत ही खूबसूरत आवाज। दोस्तों, रेडियो की धुनों में जो अपनापन महसूस होता है ना, वो हमारे प्यारे श्रोताओं की वजह से होता है। दूर होकर भी जो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर बात को सुनकर अपने दिल में जगह देते हैं। आपकी फरमाइश से सजती है हर खूबसूरत सी दोपहर, आपके संदेशों से लिखती है हमारी मुस्कान। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने मैसेज पहुँचाते हैं तो हमारे चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। रेडियो की इस खूबसूरत दुनिया में आपका साथ अनमोल है, क्योंकि श्रोता नहीं, आप तो हमारे रेडियो परिवार का हिस्सा है। एवरीवन, आज लिस्टनर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बस इतना ही कहना है कि हमारी आवाज आप तक पहुंचती रहे और आपका प्यार हमेशा हम तक आता रहे। और आप सुनते रहें यूं ही एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। वंस अगेन हैप्पी लिसनर्स डे टू ऑल लिसनर्स। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: जी हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार। जी बताएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है मैम, आप बढ़िया हैं?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। बताइएगा आप क्या करते हैं सर, अपने बारे में बताइए थोड़ा।
1: मैं सर्विस करता हूँ तरण इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड में, प्रोडक्शन मैनेजर।
0: ओके, वेरी नाइस। और रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
1: रेडियो तो शायद 2 साल हो गए सुनते
0: सुनते। ओके, 2 ईयर्स हो गए। कैसा लगता है आपको ये प्यारा सा देश?
1: बहुत अच्छा, यही सुनते हैं, मनोरंजन कर रहा है, बहुत अच्छा
0: जी। तो बताइएगा आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं सर?
1: मैम वहाँ कर दिशा में हरदम मेरे इश्क का तारा।
0: ओके, तो ये ट्रैक हम आपको सुनवाते हैं, ठीक है?
1: जी।
0: अगर ये नहीं मिल पाया तो हम नेक्स्ट दूसरा सॉन्ग आपके लिए प्ले कर देंगे। आपने बताया था फ्रॉम द मूवी नदिया की पार।
1: जी, कौन दिशा में लेके चला रहे बटुई।
0: हाँ जी हाँ जी, तो सेकंड जो आपने ट्रैक बताया ये हमने सिलेक्ट किया है, तो उसको प्ले करते हैं, आप इंजॉय कीजिएगा सर, ठीक है?
1: ओके,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए व्यूअर्स, सुन लेते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। और आप भी सुनना चाहते हैं कोई गाना अपने पसंद का, या फिर अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने लाइफ पार्टनर को कोई भी ट्रैक डेडिकेट करना चाहते हैं, इवन खुद के लिए अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं ना, तो फटाफट से कॉल लगाइएगा, आलस बिल्कुल नहीं करना है आपको। मोबाइल नंबर हमारा रहेगा 9837896896। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी नदिया के पार से खूबसूरत सा गीत, और बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
6: हेलो फरमाइश
3: जी। सर क्या नाम है आपका?
6: मामा।
3: क्या नाम बताया आपने, दोबारा से बताइएगा। जी आसिफ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
6: रामपुर
3: जी, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी।
6: मैं फरमाइश है वो अदनान सामी की आवाज में भर दो झोली मेरी या मोहम्मद यार।
3: ओके चलिए सुनवा देते हैं आपको ये प्यारा सा गीत, ठीक है?
6: ठीक।
3: तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं प्यारी सी कवाली फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान से अदनान सामी जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। लौट कर आते हैं हम, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त खुशी। समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:34 और अभी आपने सुना ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक अदनान सामी जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान। और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं अभी। हेलो फरमाइश,
1: खुशी जी कैसे हैं आप?
0: आई एम गुड सर, आप बताइएगा आप कैसे हैं?
1: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ।
0: आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर।
1: हाँ जी मैं ठीक हूँ खुशी जी, आप बताइए परिवार में सब कैसे हैं आपके?
0: हाँ जी ऑल गुड, योर गुड नेम?
1: माय नेम इज अमित कुमार वर्मा।
0: अमित कुमार
1: कॉलोनी मुरादाबाद
0: जी। अभी करंटली कहाँ पर हैं आप? जब भी बात होती है तो आप ऑन द वे कार में ही होते हैं।
1: मैम अभी हूँ शहर से काफी दूर आए, मैं हूँ अभी पीलीभीत।
0: ओके, पीलीभीत बरेली के नियर बाय राइट ना?
1: हाँ जी बरेली से 50 किलोमीटर आगे पड़ता है पीलीभीत।
0: ओके या तो बताइएगा सर, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम कुछ ऐसा डिसाइड तो नहीं किया, बट अगर आपको जो पसंद है अपना पसंदीदा गाना प्ले कर दीजिए, उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे और हमारे एफएम मुराद के सभी स्रोत आए भी शामिल हो जाएंगे। और आज स्पेशल श्रोता दिवस है तो सभी मुराद एफएम और रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार और बहुत बहुत बधाई श्रोता दिवस।
0: एंड आपको भी सर लिसनर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सब प्यारे प्यारे श्रोता तो हैं, तभी तो हमारे रेडियो पर चार चांद लगते हैं ना।
1: जी मैम,
0: थैंक यू एंड नाइस टॉकिंग टू यू सर, टेक केयर।
1: ओके मैम, थैंक यू सो मच,
0: मोस्ट वेलकम सर, बाय। तो चलिए एवरीवन, सर ने कहा है कि आप अपनी पसंद से एक ट्रैक प्ले कर दीजिएगा, तो एक गाना है बहुत ही प्यारा सा एंड सुन लेते हैं सब मिलकर, उसके बाद लौट कर आएंगे, फिर करेंगे आपसे भी बातचीत। तो आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपने हर एक पल को, हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो पल हमारे पास होता है ना वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो मैं कहती हूँ कि आपका हर एक पल बहुत कीमती है, इसको यूटिलाइज कीजिए, अपनों के साथ एंजॉय कीजिए एंड जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं वो सब कीजिएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये ब्यूटीफुल ट्रैक एंड उदित नारायण और अलका याग्निक जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा गाना है ना। तो मैं भी यही कहती हूँ कि अपने हर पल को अच्छे से जीना चाहिए। किसी को नहीं पता होता ना नेक्स्ट पल क्या होने वाला लाइफ में। तो जो समय हमारे पास है उसे अच्छे से जियो। एंड वो एक पहली सी बात है ना कि जियो और जीने दो। तो चलो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मोहन सिंह ठाकुर, महाराष्ट्र, हिंगोली जिला।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप मोहन जी?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, अभी तो खेत में है, बैठे थे आराम से।
0: ओके, मौसम कैसा है महाराष्ट्र का?
1: महाराष्ट्र का मौसम ठंडा है मैडम जी, ज्यादा तो बारिश नहीं है, कभी आ रही है कभी जा रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन बारिश नहीं बोले तो भी चलता। लेकिन अभी ये जो सोयाबीन हल्दी है उनको लोग उनको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है पानी, ज्यादा तो नहीं है।
0: ओके, तो बताइएगा मोहन जी, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आज की फिल्म है और उसमें कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल की आवाज है और एक गीत है, जानम जाने जाने बिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम।
0: ओके, तो सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं मोहन जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक। लौट कर आने वाले हैं हम वापस इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, लेकिन आप भी कॉल लगाइए जल्दी से।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

0: दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और देखिए दोस्तों, अभी आपने सुना ये बहुत ही प्यारा सा गाना अनुराधा पौडवाल जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, और साथ में दे रहे थे कुमार सानू जी साथ। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश जी सर, नमस्कार। हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। बताइएगा कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, और आपका प्रोग्राम सुन रहा था
0: जी। धन्यवाद सर।
1: और मैंने कि मैं भी कॉल लगाऊं और कुछ इस तरह से बात करूं।
0: बहुत अच्छा किया आपने सर हमें कॉल किया। बताइएगा कैसे चल रही है आपकी खेती बाड़ी?
1: बहुत बढ़िया चल रही है।
0: तो क्या लगाया हुआ है खेतों में आपने?
1: हमारे यहाँ गन्ने की खेती होती है।
0: अच्छा, गन्ने की खेती होती है। ओके,
1: मुख्य फसल गन्ने की खेती है।
0: ओके, चलिए
1: पशुओं के लिए चारा।
0: ओके, तो गन्ने की फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है सर?
1: अभी ये नवंबर में कटेगी जा करके।
0: अच्छा, नवंबर में, सर्दियों में ना?
1: जी हाँ, और शुगर मिल में सप्लाई होगी।
0: ओके,
1: और शुगर मिल गांव में ही है, दीवान शुगर मिल।
0: अच्छा, तो बताइएगा सर, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: गाने के बोल है, जाने चमन तेरा गोरा बदन, मूवी का नाम है बिखरे मोती। ये गाना सुनना चाहता हूँ और आपको डेडिकेट है, और मेरे साथ साथ मेरी पत्नी माया देवी है और दोनों बेटे हैं ऋतिक और आदित्य का सना।
0: ठीक है सर, आपकी फैमिली के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: शुक्रिया, धन्यवाद
0: जी। तो चलिए दोस्तों, सुन लेते हैं सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक। लौट कर आते हैं हम, आप भी कॉल लगाइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका कॉल भी जल्दी से लग जाएगा।

0: आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी अनमोल मोती, जो 1969 में आई थी। और इस खूबसूरत गीत को गाया था महेंद्र कपूर जी, साथ में आशा भोसले जी ने, मनाडे जी ने, और लिरिक्स थे रवि जी के, लिरिक्स थे रविंद्र जी के, एंड म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि जी। तो चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हेलो, हाय,
1: गुड आफ्टरनून।
0: वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: आप ठीक हैं? आप बताइए, आप कैसी हैं?
0: आई एम ऑल्सो गुड, क्योंकि जब इतने लॉन्ग टाइम में हमारे पुराने लिसनर कनेक्ट होते हैं ना, तो खुशी और खुश हो जाती है।
1: लेकिन हम तो खुशी का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं।
0: ओ, और बताइएगा भावना, कैसे हैं आप?
1: हम तो ठीक हैं मैम, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। बताइएगा, आज काफी समय के बाद आपने कॉल किया है।
1: आज हमें याद आ गई है, उन्हें कहा आपको याद कर लिया जाए।
0: याद तो रोज आती है, बट कॉल आज किया है आपने। ओके, और बताइए भावना, कैसा है नैनीताल का मौसम?
1: नैनीताल का मौसम तो ठीक है, अभी बारिश थी, धूप भी है,
0: कभी बादल भी हो जाते हैं, है ना?
1: आप बताइए वहाँ का मौसम कैसा है?
0: सेम पंच, ऐसी ही सिचुएशन है, कभी हल्की फुल्की बारिश होती है, तो कभी धूप निकल जाती है, तो कभी बादल भी हो जाते हैं।
1: अच्छा जी, और सभी आरजीज ठीक है?
0: हाँ जी, सभी आरजीज बहुत अच्छे हैं। हैप्पी लिसनर डे हमारी प्यारी सी लिसनर को, आज रेडियो श्रोता दिवस है ना, तो इतना शॉकिंग मत होइएगा।
1: पता नहीं था ना, ये थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप जब प्यारे प्यारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं, तभी तो खूबसूरत बनता है ना ये कार्यक्रम।
1: एंड आपको भी मैं एक बार बोल सकते हो?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए आरजी बनने से पहले हम भी लिसनर ही हैं, लिसनर थे, और जब गुड लिसनर बनते हैं तभी आरजी बन जाते हैं,
1: क्योंकि आप भी तो हमें इतने शिद्दत से सुनते हैं।
0: हाँ एग्जैक्टली राइट यार,
1: बताइए आपकी फैमिली में सब ठीक है?
0: हाँ जी, ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा भावना, आज काफी समय के बाद आप हमारे साथ जुड़े हो, तो कैसा लग रहा है?
1: बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिजी रहती हूँ ना, तो फिर कर नहीं पाती कॉल, मैसेज भी नहीं कर पाती हूँ। फ्री थी तो
0: कहाँ बिजी रहते हैं आप, हम जानना चाहते हैं। ओके, चलिए अच्छी बात है, बिजी रहना भी चाहिए जिंदगी में। तो बताइएगा, आज आपने कॉल किया है भावना, क्या सुनना चाहती हो, क्या भावनाएं हैं आपकी?
1: तो भावनाएं तो हमारी बिल्कुल आपकी जैसी है एकदम,
0: प्योर। तो बताइए
1: आपके पसंद का सॉन्ग सुन लेंगे आज।
0: ओके, मेरी पसंद का गाना सुनना है आपको? चलिए ठीक है, तो मैं एक प्यारा सा गाना आपको सुनवाती हूँ भावना, थैंक यू कॉल करने के लिए डियर।
1: यू आर वेलकम,
0: टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग,
1: सेम टू यू।
0: ओके बाय
1: बाय।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, एंड ये गाना बहुत ही प्यारा है और मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो अपने प्यारे दोस्तों को भी सुनवा देते हैं। अब इतने प्यारे प्यारे जो लिसनर हैं वो कह रहे हैं कि खुशी जी आप अपनी पसंद से गाना सुनवाइए, तो मेरी पसंद थोड़ी सी पंजाबी गानों में है, तो एक पंजाबी गाना जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आपका हेलो फरमाइश शो में। देखिए, अभी आपने सुना है ऐसा ट्रैक अंशुला गर्ग की बहुत ही खूबसूरत आवाज़। एंड स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ वक्त हुआ है 4:08 और हमारी नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश। यस, क्या नाम है आपका?
1: तो मैं यही सॉन्ग सुनना चाहती हूँ।
0: नाम तो बताइए अपना।
1: जी, मेरा नाम प्रीति है।
0: प्रीति, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मैं मुरादाबाद से बात कर रही हूँ।
0: ओके, मुरादाबाद में कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मुरादाबाद में सरिता नगर
0: है, वहाँ से। ओके, क्या करते हैं आप प्रीति?
1: जी मैं आप अभी कुछ नहीं कर रही, आपसे बात ही कर रही हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं, हे भगवान, लाइफ में क्या करते हो? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे।
1: जी वो क्या कहते हैं, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ।
0: अच्छा, वो क्या कहते हैं, मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, भूल गए थे आप?
1: हाँ।
0: ओके, चलिए प्रीति, सुनवाते हैं गाना आपको, ठीक है?
1: ठीक है।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्रीति की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी फना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। ये गाना सुनना चाहती हैं तो सुनवा देते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे। तब तक आप भी प्रयास कीजिए, कीप ट्राइंग एवरीवन। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और सुना अभी आपने प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी फनहा, सोनू निगम साथ में सुनिधि चौहान जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, आमिर खान और साथ में काजोल जी भी दे रही थी साथ। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं नाम प्रमोद रामकर
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं बोल रहा हूँ एकता कॉलोनी।
0: एकता कॉलोनी से बात कर रहे हैं जी। बताइएगा सर, क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: मेरा नाम पिक्चर का नाम है नाम।
0: हाँ जी।
1: और बोल रहे हैं किसकी आई है बटन से किसकी आई।
0: ओके ठीक है, प्यारा सा गीत आपको सुनवा देते हैं सर जी। आपको भी नमस्कार सर। तो चलिए श्रोताओं, सुन लेते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक एंड बातचीत करेंगे आपसे भी। बस आप कॉल लगाते रहिएगा और सुनिएगा ये खूबसूरत सा ट्रैक पंकज उदास जी की प्यारी सी आवाज में, प्यारा सा नगमा।

0: दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी का। वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना नाम फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत जो 1986 में आई थी। और इस खूबसूरत गीत को गाया था पंकज उदास जी ने। म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी एंड लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। और बहुत ही खूबसूरत सा गीत था, एक एक लिरिक्स बड़े ही कमाल के थे। तो अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: मैम जी, आपका और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार से। अपना नाम बताइएगा।
1: मैम जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप?
1: बहुत मजे में है बहन जी, आनंद में है। और आज विश्व रेडियो श्रोता दिवस की मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: जी सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोस्ट वेलकम जी। बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगे आज सर?
1: बहन जी, आज गीत है बहुत ही रूमानी का गीत है, रफी साहब जी की आवाज में। फिल्म है घराना। गीत के बोल मैं तरन्नम में बताता हूँ जी।
0: बिल्कुल बताइएगा।
1: हसन वाले तेरा जवाब नहीं, हसन वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हसन वाले तेरा जवाब नहीं।
0: बहुत ही खूब आपने गुनगुनाया है सर। तो सुना देते हैं ये प्यारा सा गाना आपको।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए अभी पर सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में और बातचीत करेंगे। आपको भी मौका मिल रहा है तो आप भी पीछे मत रहिए, जल्दी से कॉल लगाइएगा हमें।
2: हुस्न वाले

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने सुना है बहुत ही खूबसूरत सा गीत मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है आज यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अक्षरा है।
0: अक्षरा, इतनी दूर से क्यों बात कर रहे हो? फोन के थोड़ा करीब आओ। हाँ, आपकी आवाज आ रही है अभी प्रॉपर। बताइएगा अक्षरा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: चौहान वाली मिलक से।
0: ओके, वहाँ तो हम गए एक बार, आई रिमेम्बर।
1: मैम, हमने तो आपको देखा नहीं, आपको मन करता है देखने का।
0: ओके, तो हम आएंगे, ठीक है?
1: ओके, हमारे घर भी जरूर आइएगा।
0: श्योर, आपने इनवाइट किया है तो जरूर आपके घर भी आएंगे। बताइए अक्षरा, क्या फरमाइश है आपकी?
1: सॉन्ग सुनना चाहते हैं, दो दिलों की दास्तान।
0: ओके, और ये खूबसूरत सा ट्रैक हम आपको सुनवा देते हैं, ठीक है?

ओके बाय, मोस्ट वेलकम, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं प्यारा सा गाना अक्षरा की पसंद पर, दो बल्कि दिलों की दास्तां। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है फ्रॉम द मूवी वीर ज़ारा सिंह।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, हम आपको छोड़कर अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं, अभी हम आपके साथ ही रहने वाले हैं 5 बजे तक। और एक प्यारा सा गाना अभी आपने सुना, लता मंगेशकर जी साथ में सोनू निगम जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, फ्रॉम द मूवी फना, वीर जारा। और बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश। जी सर, वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
1: शाकिर बोल रहे हैं, मैं कॉलोनी
0: से। जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: बढ़िया है मैम, आप सुनाइए।
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: मूवी का नाम है देश प्रेमी।
0: हाँ जी,
1: क्या जल्दी वाकया नहीं बाबा।
0: ओके, ठीक है, सुनवा देते हैं गाना आपको। कॉल करने के लिए शुक्रिया सर। जी तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक किशोर कुमार जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में, प्यारा सा गाना।

ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक किशोर कुमार जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी देश प्रेमी से। और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: नाम परी है।
0: परी, कैसे हो आप? हाँ जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। परी बताइएगा क्या सुनेंगे आज आप?
1: ठीक है,

0: अरे
1: वाह, आपने इतना प्यारा गाया है, तो हम एक गाना आपको सुनवाते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा, ठीक है? और आपको ये ट्रैक पसंद आएगा, ठीक है परी? ओके बाय। परी ने तो इतना अच्छा गाना गुनगुना कर सुना दिया है हमें, लेकिन परी के लिए मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक प्ले कर रही हूँ यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि ये ट्रैक परी को भी पसंद आएगा, हमारे और श्रोताओं को भी पसंद आएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक श्रेय घोषाल, साथ में उदित नारायण जी की आवाज और विशाल ददलानी, शिखर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा से गाना फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: हेलो।
0: यस, अपना नाम बताइए सर।
1: मैं ब्रिजेश कुमार यादव जौनपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जौनपुर से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: ठीक है, हमारी किराना दुकान है, चलाते हैं, बस अच्छे लगा दिए, लग गया।
0: अच्छा, कैसे चल रहा है आपका कारोबार सर?
1: बहुत मस्त चल रहा है।
0: चलिए, अच्छा ही चलना चाहिए, भगवान की कृपा तो हमेशा रहती है सभी पर। और बताइए सर, आपके शहर का मौसम कैसा है?
1: बरसात डेली हो रहा है।
0: अच्छा, रेगुलर बारिश हो रही है?
1: हाँ, डेली दिन में एक बार हो
0: जाता है। ओके, तो आज भी बारिश हुई है वहाँ पर?
1: घेरे हैं, कंपेक्शन होगी।
0: ओके, तो बताइएगा आज कौन से गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: लावारिस को सुना दीजिए, सबसे कुछ हुए हैं हम आज कहाँ आके मिले।
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं प्यारा सा गीत आपको। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए विवन, सुन लेते हैं सर की पसंद का ये खूबसूरत सा ट्रैक और बस वापस आते हैं अभी हम।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी आपने सुना प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी लावारिस से किशोर कुमार जी और साथ में आशा भोसले जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। और मुझे दीजिएगा अभी जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और अपना खूब सारा प्यार एफएम मुरादाबाद को देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।
1: टेस्ट लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिक करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
7: राधे राधे ब्रजवासियों, जहाँ कड़कड़ में कान्हा की लीलाएं हैं, जहाँ यमुना की लहरों में भक्ति की मिठास है, जहाँ गलियों में आज भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, वही है हमारी प्यारी मथुरा नगरी।
8: बिल्कुल, मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं, आस्था, संस्कृति और विरासत की ऐसी धरती है जहाँ इतिहास और भविष्य एक साथ कदम बढ़ाते हैं। और आज इसी धरती से हम सुनेंगे विकास की वो कहानी, जो सड़कों, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, महिला बाल कल्याण और जन सुविधाओं के जरिए लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है।
9: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी। नई

0: आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और आज का खास एपिसोड है मथुरा में गूंजता विकास।
1: तो आइए बात करते हैं उस विकास की जो सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि आम लोगों के अनुभवों में दिखाई देता है।
0: मथुरा में विकास का दायरा लगातार व्यापक हो रहा है। सड़क और आधारभूत ढांचे से लेकर पर्यटन जन सुविधाओं तक कई स्तरों पर काम आगे बढ़ रहे हैं।
1: मथुरा और ब्रज क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने, मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से लेकर ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग से जुड़े कार्यों तक विकास की तस्वीर लगातार बदल रही है।
0: और मथुरा वृंदावन जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है स्थानीय लोगों का साथ साथ देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं।
1: यानी सोच सिर्फ आज की जरूरत पूरी करने की नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए मजबूत आधार तैयार करने की है।
0: अब बात उस युवा शक्ति की जो नौकरी खोजने के साथ साथ रोजगार देने वाला बनने का सपना देखती है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
0: यानी सरकार की सोच साफ है, युवा सिर्फ अवसर का इंतजार ना करे बल्कि अवसर पैदा करने की क्षमता भी हासिल करे।
1: और यही तो है दूरदर्शी सोच, युवा के हाथ में हुनर, हुनर से उद्यम और उद्यम से रोजगार। आइए सुनते हैं अब मुकेश की कहानी जो एक लाभार्थी है।
2: मेरा नाम मुकेश, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद मैं अपना एक रोजगार करना चाहता था। इसी बीच मुझे एक योजना के बारे में पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत मुझे 5 लाख तक का 100% ब्याज मुक्त और गारंटी रहित ऋण मिला, जिसकी मदद से मैंने अपना रोजगार शुरू किया और आज मेरा रोजगार बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं और ऐसी योजनाओं से मैं बहुत ही लाभान्वित हुआ।
0: मुकेश की कहानी इस बात की मिसाल है कि विकास की असली पहचान तब होती है जब योजनाओं का लाभ सीधे परिवार तक पहुंचे।
1: और जब किसी योजना की मदद से किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार और समाज तक पहुंचता है।
0: विकास का सबसे बड़ा अर्थ है समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक अवसर और सुविधाएं पहुंचाना।
1: और इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान के माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
0: यानी केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि परिवार को ऐसी सुविधाएं और अवसर से जोड़ना जिससे वह आगे बढ़ सके।
1: यही दूरदर्शिता है, गरीबी को सिर्फ एक आंकड़ा मानकर नहीं बल्कि परिवार की जरूरतों को समझकर समाधान तक पहुंचने की कोशिश। आइए सुनते हैं रोशनी की कहानी जो एक लाभार्थी है।
3: मेरा नाम रोशनी है, मैं मथुरा के कोसी में रहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राज्य सरकार को कि राज्य सरकार ने हमारी आर्थिक सहायता की। मैं और मेरा परिवार बहुत निर्धन परिवार है जिसके अंतर्गत हमें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था, लेकिन राज्य सरकार की जीरो पॉवर्टी योजना के माध्यम से मैं जिला विकास विभाग के संपर्क में आई और आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर हमें आर्थिक सहायता मिली जिससे हम अपना छोटा सा रोजगार शुरू कर पाए। धन्यवाद।
0: रोशनी की कहानी भी बताती है कि योजनाओं की सफलता का असली पैमाना है लाभार्थी के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव।
1: जब सरकारी प्रयास जमीन पर किसी परिवार के लिए नई उम्मीद बनते हैं तभी विकास की तस्वीर और साफ हो जाती है। आइए सुनते हैं अब हम मथुरा के जिला विकास अधिकारी गरिमा खरे को।
4: ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धनतम व्यक्ति हैं उनको एक उस विकास की धारा में लेकर के आने का, तो उसके दृष्टि से जो विकसित भारत विजन 47 है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जीरो पॉवर्टी अभियान चलाया गया है। ये अभियान इस तरह से है कि इस पे प्रत्येक गांव में निर्धनतम जो परिवारों का चयन किया गया और वो चयन भी एक टीम, ऐसी टीम के द्वारा किया गया है जिसमें उन गांवों में जो लोग जैसे आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इस तरह के लोगों को जोड़ा गया था जो वहां पर बराबर गांव में रहती हैं और वो बेहतर तरीके से जानती हैं कि कौन सा परिवार गरीब है, तो उनका चयन किया गया है। और इस तरह से यहाँ पर 9686 परिवारों का यहाँ पर जो है वो चिन्हांकन हुआ है। उसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी स्कीम के जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर उन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और उस हर परिवार में किसी भी पैरामीटर से, कहीं खाद्यान्न से अगर वो आच्छादित नहीं है कहीं बच्चे स्कूली शिक्षा से अभाव में है या कहीं आवास में नहीं है, तो हर गवर्नमेंट विभाग की स्कीम ने अपने पैरामीटर्स के आधार पर उनके चयन करते हुए और फिर उनको लाभान्वित कराए जाने का कार्य चल रहा है। इसमें समाज कल्याण के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के जो पात्र लाभार्थी उन परिवारों से हैं उनको उसमें लिया जा रहा है, विधवा पेंशन के अगर लाभार्थी हैं तो छूटे हुए हैं अगर तो उनको लिया जा रहा है। और एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक सेचुरेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि अब इस तरह की जो बेसिक नीड्स हैं उनमें कोई भी परिवार वंचित न रह जाए। और एक इसमें एक और भी हुआ है कि कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ MOU कराया गया है जो स्वयं अपना योगदान इन सेलेक्टेड गांवों में जा करके उन परिवारों से मिल करके उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनके जागरूकता के लिए काम करेंगे।
0: गरिमा खरे जी की बातों से साफ है कि विकास को जमीन तक पहुंचाने में जिला प्रशासन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
1: योजनाओं का सही क्रियान्वयन, पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना और विकास कार्यों की लगातार निगरानी, यही वो कड़ी है जो सरकार की नीतियों को आम जनता के जीवन से जोड़ती है।
0: आज जब विकास की बात होती है
1: तो सिर्फ एक सड़क या एक भवन की बात नहीं होती।
0: बिल्कुल, आज की सोच है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार, निवेश के साथ उद्यमिता, विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा और विरासत के साथ पर्यटन।
1: यही है फोरसाइट दूर की सोच।
0: आज जो सड़क बन रही है वह कल की कनेक्टिविटी है। आज जो युवा उद्यमी बन रहा है वह कल के रोजगार का सूत्र है। आज जिस बच्चे के पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है वही कल प्रदेश की ताकत बनेगा।
1: और मथुरा जैसी सांस्कृतिक नगरी में तो यह सोच और भी खास हो जाती है, विरासत भी बचे और विकास भी बढ़े।
0: उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, सामाजिक कल्याण और जन सुविधाओं को साथ लेकर चलने की सोच दिखाई देती है।
1: और तारीफ उस सोच की भी जिसमें विकास को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय गांव, गरीब, युवा, महिला और बच्चे, हर वर्ग तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
0: एक तरफ एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और निवेश जैसी बड़ी परियोजनाएं,
1: तो दूसरी तरफ जीरो पॉवर्टी, उद्यमिता, कौशल विकास और आंगनबाड़ी जैसी जमीनी पहल,
0: यानी बड़े विजन और जमीनी जरूरत दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश।
1: और यही उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच की खासियत है, आज की जरूरत के साथ आने वाले वर्षों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना। तो आज मथुरा से हमने सुनी विकास की कई आवाजें, लाभार्थियों की, प्रशासन की और उन युवाओं की जो अपने सपनों को उद्यम में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
0: आज के एपिसोड का नाम था
1: मथुरा में
0: गूंजता विकास।
1: मैं हूं आपका आरजे जय
0: और मैं हूं आपकी आरजे तेजस्वी भारद्वाज।
1: दोनों मिलते हैं अगले एपिसोड में विकास की एक और कहानी के साथ।
0: जय हिंद।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: This one coming straight from out of the dance hall. Ah.
1: गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:15 हो चुके हैं और आज रीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है श्रोताओं लेकर शो यानी कि इवनिंग मस्ती। ढेर सारी बातें करने वाले हैं यानी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और आज की तारीख वैसे भी 20 अगस्त है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा खास है। तो ढेर सारी बातें करने वाले हैं, बस आपसे यही कहेंगे कि रेडियो की सुई बिल्कुल भी नहीं घुमानी है, वर्ड का लगा के जी, बिल्कुल वर्ड का नहीं लगाना है आपने, बस आरजे रीना के साथ वर्ड का लगाना है, ठीक है जी। लेकिन वो नहीं, वो गाने वाला झूमेंगे हम, ठीक है, तब भी मजा आएगा। गाने भी वो तेज, अगर हम गाने सुनेंगे और बातों का अटपटी चटपटी होती है तो वैसे ही वर्ड का लग जाती है हमारी, सच बताओ तो। लेकिन उसके लिए वॉल्यूम आपको बढ़ाना पड़ेगा, चाहे आप घर पर सुन रहे हैं, चाहे आप गाड़ी में हैं, एनीवे आप कहीं से भी सुन रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि आज का डे भी बहुत ही खास है। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा, बस में यूं गया और यूं आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

जी आ गई आरजे ना आप सभी के बीच एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे मेरी जान। इवनिंग मस्ती शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। समय की बात करूं तो 5:24 हो चुके हैं और देखिए दोस्तों, शाम होते ही और सुबह की शुरुआत चाय से होती है, शाम की शुरुआत भी चाय से ही होती है ना। चाय में चीनी कम हो जाए तो चाय फीकी लगती है, लेकिन जब चीनी की कीमत बढ़ जाए तो जेब फीकी लगने लगती है। यूपी में चीनी के दाम तेजी से बढ़ गई हैं, कई जगह पर तो 61 रुपए किलो तक चीनी पहुंच गए हैं। यानी जो चीनी कुछ समय पहले करीब 44 रुपए किलो मिल रही थी, उसमें लगभग यानी कि 70 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। अब सवाल ये है, आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? इसके पीछे चीनी की जो उत्पाद है वो कम होने लगा है, या गन्ने का कुछ हिस्से एथनॉल बनने में इस्तेमाल होने लगा है? तो अब सोचिए, त्योहार नजदीक है, यानी कि जितने भी फेस्टिवल है वो शुरू हो चुके हैं और फेस्टिवल के समय ही चीनी महंगे हो गए हैं भाई। क्या अब कारण जो भी हो, चीनी तो महंगी हो गई है जी फेस्टिवल के सीजन में ही। और अगर दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो व्यापारियों को डर है कि आने वाले दिनों में चीनी 80 रुपए किलो तक न पहुंच जाए। अगर सोचिए 80 रुपए किलो चीनी पहुंच जाए तो हर कोई बोलेगा, भैया चीनी नहीं खाते हम, गुड़ लेकर आते हैं। और गुड़ भी ना हो तो बस बोलेंगे, यार चलिए कोई बात नहीं, फीकी चाय पी लेते हैं, लेकिन चाय पीना नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कतई नहीं छोड़ेंगे। और चाय की एक प्याली मिल जाए तो जुखाम सर्दी ऐसे भाग जाती है, छूम अंतर हो जाती है ना, और आलस ऐसे छूम अंतर हो जाता है श्रोताओं की, बस पूछिए ही मत ना। लेकिन ऐसे टाइम में ना बस चाय की बहुत ज्यादा याद आती है, बहुत ज्यादा याद आती है। तो भाई अब चाय में चीनी डालने से पहले एक बार भाव जरूर पूछ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि चाय के चुस्की तो मीठी हो लेकिन बिल देखकर मुंह कड़वा ना हो जाए। ये चीजें भी जरूर देखना है श्रोताओं। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, तो फिर हर कोई एक ही बात बोलेगा, यार चाय पिला दो कोई, चाय एक कप एक कप एक कप चुस्की वाली। हा अच्छा श्रोताओं, मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि शाम होते होते किनका मन है जो चाय की तलब करता है, यानी कि बिना चाय पिए उनका मन ही नहीं लगता है शाम के वक्त में। नंबर है 9837896896, यानी कि 9837898968 पर आपने मैसेज करके बताया।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कांवड़ लेकर महादेव का नाम।
3: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
3: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
2: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
3: सूचना एवं जनसंपर्क

क्या बात है जी। चीनी छोड़ो, आलू मटर छोलो बस भैया, यही है वो काम। क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा होती जा रही है, यानी कि सर की ताज बन गई है जी। अर्जेंटीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। गुड वाली इवनिंग है मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं। और आज का डे भी बहुत ही खास है, क्योंकि आज है 20 अगस्त। और 20 अगस्त को आप सभी को पता है कि श्रोता दिवस है, यानी कि आपके बिना हम कतई अधूरे जी, सच में बिल्कुल अधूरे हैं। रेडियो को प्यार करने वालों के लिए ये दिन बहुत ही खास है, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है, हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है। क्योंकि रेडियो सिर्फ एक आवाज नहीं, रेडियो वो साथी है जो बिना सामने आए भी दिल के बहुत करीब है। जरा सोचिए, जब घर में टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब घर में खबर भी रेडियो से ही मिलती थी, संगीत भी रेडियो से मिलता था, और कभी-कभी अकेलेपन में भी रेडियो ही साथ देता था हमारा। भारत में रेडियो का प्रसारण यानी कि शुरुआत हुई थी जून 2023 से बॉम्बे से। साथ ही साथ बाद में 23 जुलाई 1927 को इस यानी कि इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के जरिए यानी कि इसकी प्रसारण शुरू हुई थी। साथ ही साथ बात करूं 1936 में यानी कि ऑल इंडिया रेडियो तक पहुंचाइए, और उसके बाद 1956 में आकाशवाणी का नाम दिया गया। हर कोई अलग अलग भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, हर जगह आप जाएंगे तो हर लैंग्वेज अलग होती है रेडियो पर बात करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है असली रेडियो के हीरो कौन होते हैं? आप होते हैं, आप श्रोता होते हैं रेडियो के असली हीरो। आपकी आवाज, आपका फोन, आपकी फरमाइश और आपका एक छोटा सा मैसेज आरजे के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। तो आज सभी श्रोताओं को दिल से सलाम, दिल से धन्यवाद, क्योंकि रेडियो की आवाज तभी तक जिंदा है जब तक उसे सुनने वाला कोई अपना मौजूद हो, महसूस करता हो, रिश्ता कनेक्ट करता हो हमारे बीच में। तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए फिलहाल एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। श्रोताओं कहे तो ये वाला गाना सुनवा दे। नहीं, चलिए कोई और गाना हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। फिलहाल आप सभी से यही कहेंगे कि

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

क्या चीज है पैसा, क्या चीज है पैसा, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या चीज है पैसा, क्या कमाल गाना बनाए भाई साहब। यानी कि पैसा है तो हर चीज है, पैसा नहीं है तो कोई इज्जत भी नहीं करता भाई। आज के समय में हर चीज पैसा, पैसा पैसा पैसा पैसा। लेकिन फिलहाल मैं जो बात करने वाली हूँ, बच्चों के चेहरे पर ना मुस्कान आने वाली है। ओहो क्या बात है, कहेंगे अरे भाई साहब बल्ले बल्ले मजा आ गया मजा। क्योंकि जब मैं सुनती थी ना तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था, मतलब खुशी का जो लेवल है ना वो नेक्स्ट लेवल वाला होता था। आज रीना आप सभी के साथ कनेक्टेड श्रोता, इवनिंग मस्ती शो में समय की बात करूं तो 5:49 हो चुके हैं, यानी कि 5:49 हो चुके हैं। हाँ जी, अब ये कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में, यानी कि आज की तारीख 20 अगस्त और 26 और 28 अगस्त को स्कूल दफ्तर की छुट्टियां रहने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये दो दिन क्या है, यानी कि 26 तारीख को ईद है और साथ ही साथ 28 अगस्त को भाई के कलाई पर राखी बांधने का दिन है जी। यानी कि और दिन लड़ते हैं और रक्षाबंधन वाले दिन कहते हैं आजा भाई राखी बांधते हैं। तो सच बताओ छुट्टी के नाम लेते ही ना बच्चों के चेहरे पर अलग ही रौनक आ जाती है, अलग खुशी आ जाती है उनके चेहरे पर। मैडम डिस्को, लेकिन आपने डिस्को नहीं जाना है, मामा के घर जाना है, वो भी फ्री में। बस में आप सेवाएं है उपलब्ध हो गई हैं, यानी कि कई कई जगह पर, यानी कि 28 से 29 तारीख तक ही सेवाएं जो है, यानी कि बस में आप फ्री यात्रा कर पाएंगे। और कहीं कहीं पर 26 से लेकर 31 तारीख तक है और कहीं कहीं पर 27 से लेकर यानी कि 30 अगस्त तक है, तो आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है जी, खुश एंजॉय। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। यही गाना सुनते हैं, आय हाय। लेकिन एक मैसेज भी है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। विकी सागर जी कनेक्ट हो गए हैं, गुड इवनिंग पहुंचाते, वेरी गुड इवनिंग जी। अब रीना जी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा। अरे बिल्कुल जी सही कहा आपने, खाना तो खाना ही पड़ेगा, पेट भरना है, जीना है तो खाना ही पड़ेगा।

0: लेकिन देखिए डांस के साथ साथ भैया अगर आप ऑन द वे हैं यानी कि ऑफिस से घर के लिए रवाना हो चुके हैं तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल मत भूल जाइए, वरना दिल डांस मारे के साथ साथ कब आपके पॉकेट मनी से पॉकेट खाली हो जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए पॉकेट का भी आपने ख्याल रखना है बाबा, अदरवाइज दिमाग और से एक ही बात याद आएगी, यार अच्छा खासा हेलमेट और सीट बेल्ट लगा लेते अच्छा होता है ना। इसीलिए जब भी आप घर से बाहर निकले, ऑफिस से बाहर निकले, तो हेलमेट और सीट बेल्ट का ध्यान रखना है, चाहे आप आगे वाला बाइक चला रहे हो या फिर पीछे बैठा हो, उनको भी सेफ्टी के चाहिए भैया, वो अभी हेलमेट और लगा के रखिए, और जो सिर्फ जो गाड़ी चला रहे वही हेलमेट यानी कि सीट बेल्ट नहीं पहनना है, साइड में जो बैठे हैं अंजी अंजी आपको बोल रही मैं, उनको भी पहनना है। हाईवे पर गाड़ी थोड़ा ज्यादा स्पीड आपने नहीं चलाना है, हल्का स्पीड कम रखना है, और जहां पर ट्रैफिक जाम है हेलमेट यानी कि हॉर्न आपने बार बार पी पी पी पी नहीं करना है, बाहर वालों का भी ध्यान रखना है, उनके कान के पर्दे का भी ध्यान रखना है, पता चले कि आपके पी पी के चक्कर में उनके कान के पर्दे फट जाए। वैसे डीजे वाले भैया ने तो ऐसा भैया क्या ही कहे, मतलब ऐसा लगता है कि भूकंप आ गया है, भूकंप वाली फीलिंग देती है इनकी डीजे की, एकदम घूम जो वाइब्रेशन होती है ना मत पूछो, इंसान जो बहरान होएगा ना यानी कि जो 10 साल बाद होएगा वो पहले ही हो जाएगा, इतनी तेज वॉल्यूम है इस टाइम डीजे की जो कावड़ लेकर जाते हैं। तो भैया इस टाइम ना थोड़ा संभल के आप कम से कम आप तो बकश दीजिए जो बाहर है उनको, पी पी ना करे, पेशेंस बना के रखे, शाम का वक्त है, इस टाइम आपको जाम मिल ही जाता है, अगर आप ऑन द वे हैं और कहीं ट्रैफिक में हैं तो बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896 8, ताकि वो भी यानी कि ट्रैफिक में उस साइड से जाने वाले उस रूट से जाने वाले हो तो बेचारे बच जाए और आराम से आसानी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए। तो हमें सिर्फ अपना अपना ध्यान नहीं रखना है, अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखना है। और एक बात और भैया, जहां पर पानी काफी ज्यादा भरा हुआ मिल जाए सड़क पर, वहां तो थोड़ा इंसानियत दिखानी पड़ेगी आपको सच में, क्योंकि वहां पर इतनी स्पीड में गाड़ियां चलाई जाती हैं, जो बेचारे आसपास जाते रहते हैं ना उनके कपड़े की धज्जियां उड़ जाती हैं, यानी कि छींटे लग जाती हैं ना, और वो ऊपर से व्हाइट कपड़े पहने हो तो अब तो बुरी हालत हो जाती है, यानी कि हमारा तो कुछ नहीं जाता लेकिन जो कपड़े धोता है उनका बहुत कुछ जाता है, हाथ दुख जाते हैं भैया, इसलिए ध्यान रखो और आराम से गाड़ी चलाओ। चलिए फिलहाल न्यूज का टाइम हो गया है, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।
1: एल आर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी, इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान करता है। 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज देश का 23वां राष्ट्रपति चुन लिया गया। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन एवानागा और की नाकाशिकी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हराया। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को चीन की गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से 16-21, 5-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
4: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
8: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
9: ऐसी जगह।
10: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
11: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
10: अरे

0: अरे अरे आप कितने चले यार, घर चले। ओके ओके, आराम से होले होले गाड़ी चलाइए, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है जी। आर्चरीना के साथ अब कनेक्टेड श्रोताओ, गट वाली इवनिंग है। समय की बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 6:00 यानी कि 11 मिनट हो चुके हैं। और अब वेदर की बात कर लेते हैं। अगर मैं जापान की बात करूं तो राजधानी टोक्यो में भाई साहब इतनी तेज बारिश आई है, यानी कि पूरे रात भर में पूरा शहर को बिल्कुल डगमगा दिया है। मतलब एक दिन में ऐसी बारिश हुई है जितने कि पूरे अगस्त में होना चाहिए था, यानी कि एक दिन के बारिश ने तबाही मचा दिया है, तहलका मचा दिया है जापान में। तो श्रोताओ, अगर मैं अपने मुरादाबाद और कल यानी कि 21 तारीख और ये कहा जा रहा है कि 21 राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, यूपी, बिहार, हरियाणा, बहुत जगह कल बारिश है, तो थोड़ा सा संभल के आप बाहर जाते हैं, क्योंकि जो मानसून का वेदर है इसमें आपने ध्यान रखना होता है कि अगर आप बाहर जा रहे तो अपने साथ छाता, रेन कोट तो जरूर रखिए, ठीक है जी।
1: आपका क्या
0: वरना फिर एक ही बात होगा।

फिलहाल आप रोएंगे कि भैया हम तो ले आते, चाहता तो क्या ही चला जाता, इसीलिए कल आप बाहर जाए। देखिए मतलब मानसून के महीने में आप बाहर जाए तो छाता रेनकोट तो भैया साथ

0: होना ही होना चाहिए। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद आज की यानी कि मैसेज आ गया भैया, पहले तो वो देख लेते हैं। हेलो रीना मैम, गुड वाला इवनिंग है, इवनिंग मस्ते शो में आप कैसे हैं? बिंदास है जी, आप बताइए कैसे हैं? ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं। रेडियो यानी कि हैप्पी रेडियो लिसनर्स डे, सभी सुनने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको भी जी चाय पी लीजिए, मौसम बहुत ही अच्छा है, भिजवा दीजिए, चभी तो पियेंगे हम। अब सोचिए आप बोल रहे हैं कि चाय पी लीजिए, हम कैसे पियेंगे जब तक आप नहीं भिजवाएंगे हमारे पास। अगली मैसेज की बात करूं तो बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, हम आपके प्रोग्राम में शामिल है, प्यार भरी गुड वाली इवनिंग है जी, वेरी गुड इवनिंग जी। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं। रीना मैडम जी, आपको और सभी श्रोताओं को श्रोता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी जी वेरी शुभकामनाएं आपका। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं, लेकिन उससे पहले भैया क्या करें, अब बताओ, कमर्शियल एड ब्रेक का भी टाइम हो ही जाता है।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:00 यानी कि 25 मिनट हो चुके हैं और आज रीना आप सभी के बीच कनेक्ट हैं। और अब हम बात करने वाले हैं यानी कि 20 अगस्त को स्पेशल डेज के बारे में, है ना। आज वैसे यानी कि मच्छर दिवस भी है, तो बस साफ सफाई रखिए, पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। और साथ ही साथ एक और स्पेशल डे है आज, यानी कि इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस डे, ठीक है जी। तो आज बात एक ऐसे दिन की जो हमारी धरती को आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत खास है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। लेकिन अक्षय ऊर्जा आखिर है क्या? मन में सवाल तो आता ही है ना कि आखिरकार ये अक्षय ऊर्जा है क्या? एक ऐसी ऊर्जा जो प्रकृति से बार बार मिलती रहे, खत्म ना हो, जैसे सूरज की रोशनी, हवा और पानी जैसे मिलने वाली ऊर्जा। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बिजली के लिए सिर्फ कोयला और तेल पर निर्भर रहने के बजाय हमारे सौर और पावर ऊर्जा जैसे साफ सुथरे विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे प्रदूषण कम होगा और हमारी धरती भी सुरक्षित रहेगी। यानी कि ऊर्जा बचाइए, प्राकृतिक बचाइए और अपने आने वाले कल को रोशन बनाइए, अपने पीढ़ियों के लिए रोशन बनाइए। इसीलिए यानी कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस आज मनाया जाता है श्रोताओं। चलिए लौट कर आएंगे एक और यानी कि कड़क सवाल के साथ मिलने वाले आप सभी के बीच। बस बने रहिए आरजे रीना के साथ, ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जरा उसको बता, आय हाय। चलिए एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
6: हर घर

भाई क्या बात है जी। हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। आर्जेरीना के साथ अब कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। समय की बात करूं तो 6:37 हो चुके हैं श्रोताओं, और इसी बीच मैं लेकर आ गई हूं आप सभी के लिए कड़क म्यूजिक, जिसको आपने सुनना है और हमें मैसेज करना है, गाने का नाम बताना है, प्लस मूवी का भी आपने नाम बताना है। तो चलिए एक म्यूजिक प्ले करते हैं आप सभी के बीच, उसको सुनिएगा और बताइएगा रे पापा।

जल्दी जल्दी बताइए भैया कि ये जो म्यूजिक प्ले किया है मैंने, गाने का क्या नाम है और किस मूवी से है? नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना है कि जो मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ गाने का क्या नाम है और मूवी का क्या नाम है। चलिए जी सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल के लिए गाना बहुत ही शानदार। आहा, ये आपके लिए सच बताऊं जो इस टाइम समझ जाइए। साथ ही साथ अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उसके बारे में बताऊंगी। बस बने रहिए आरजे रीना के साथ।

0: जी गर्ड वाले इवनिंग श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, अरिजीत सिंह की आवाज़ में, श्रेया घोषाल जी की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत तुम क्या मिले। यानी कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान एंट्री कर जाता है ना, तो बस उसके अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता, दिन रात उसी के ख्यालों में रहते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ठीक है दिन रात ख्यालों में रहना अच्छी बात है, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी बात है भैया, ठीक है। अदरवाइज पता चले पेपर देने गए नैया लुढ़क गई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। एंटरटेनमेंट मतलब अटैचमेंट कम रखिए, इंसान से प्यार करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम, एक दूसरे से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पता चले कल को कुछ और मोड़ आ जाए, इसीलिए अटैचमेंट कम, प्यार ठीक है। आरजेडीना आप सभी के साथ कनेक्ट है श्रोताओं, समय की बात करूँ तो 6:44 हो चुके हैं, आज की तारीख 20 अगस्त। और अब हम बात करने वाले हैं, अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो कहा जा रहा है 1 अक्टूबर से यानी कि जो नियम है वो बदल दिए गए हैं। नियम ये है कि अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 बार आप फ्री में पेटीएम पैसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर 4 बार से आप फालतू निकालते हैं यानी कि 5-6 बार कोशिश करते हैं, यानी कि 4 बार आपको फ्री चांस मिलेगा, कोई रिचार्ज नहीं लगेगा, आराम से आप निकाल पाएंगे पैसे। अदरवाइज आप कोशिश करेंगे कि 4 बार से ज्यादा पैसे निकालने के लिए तो रिचार्ज लगेगा, यानी कि आपके पैसे कटेंगे, उसके बाद ही आप पैसे निकाल पाएंगे। अब ये जो नियम है 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। साथ ही साथ आज मैंने आप सभी के बीच एक म्यूजिक प्ले किया है, मैंने सोचा छोड़ो कड़क सवाल लेकर नहीं आते, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, गाने तो आप सभी सुनते रहते हैं, आसानी से आप बता पाएंगे। तो एक बार और मैं प्ले करती हूँ म्यूजिक, ध्यान से सुनेगा तभी आप बता पाएंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। चलिए सुनिए। क्या है, कहाँ ध्यान है जी आपका, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ ध्यान से सुनिएगा तभी आप बता पाएंगे। और कहाँ बताना है आपको, व्हाट्सएप नंबर यानी कि हमारा है, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर है 9837896896। और ज़रूरी नहीं है कि आप मैसेज ही करें, अपनी प्यारी वॉइस भी भेज सकते हैं। आज वैसे भी श्रोता दिवस है यानी कि लिसनर्स डे है, तो आप अपनी मधुर आवाज़ में मतलब समझ लीजिए कि मैं आरजे हूँ, आप आरजे हैं, उसी फॉर्म में आप बोलिए हमें, हम आपके जो आवाज़ है उसको हम प्ले करेंगे और वो भी आपकी आवाज़ तेज दुनिया में तक सुनी जाएगी। चलिए एक बार और म्यूजिक प्ले करती हूँ। चलिए जी सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120+ रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
6: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
5: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
6: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
5: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हाय हेलो जी हेलो गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आज रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। समय की बात करूँ तो 6:53 हो चुके हैं, यानी कि 6:53 हो चुके हैं श्रोताओ रेडियो की घड़ी में। और चलिए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज का कड़क म्यूजिक बहुत ही आसान सिंपल वाला मैंने आप सभी से पूछा है। पहले आप सभी के बीच म्यूजिक प्ले करूंगी। चलिए जी, अब देखते हैं हमारे पास किनका मैसेज आता है, कौन बनते हैं आज

0: के शो के विनर। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं और इनका कहना है, अनदेखी अनजानी सी लड़की दीवानी सी, यानी कि मुझसे शादी करोगी? नहीं करेंगे जी, गलत आंसर है। यानी कि आपने गलत आंसर दिया है रणवीर जी। चलिए अब देखते हैं कि भैया राइट आंसर के साथ हमारे साथ कौन कनेक्ट हुए हैं। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट हो गए हैं। सैयद सारिक अली इनके दोस्त हैं। रीना जी गुड सर, गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग, कैसी हैं रीना जी? बहुत अच्छी हैं जी। और बिंदास मॉर्निंग नहीं है, ये बिंदास इवनिंग शो है। एक्चुअली कंफ्यूज हो गए सर, आप भी मेरी की तरह हैं, मॉर्निंग को इवनिंग, इवनिंग को मॉर्निंग बोल देते हैं। मतलब जैसे अब मैं मॉर्निंग शो में आने लगी तो सर मतलब मेरे शो का नाम मत चेंज करिए, इवनिंग मस्ती है, इवनिंग मस्ती रहने दीजिए, बिंदास मॉर्निंग बिंदास मॉर्निंग है। और गाने यानी कि शो बहुत अच्छा लग रहा है, गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो। और राइट आंसर है सज्जन रेडियो बजइयो बजइयो, फिल्म है यानी कि ट्यूबलाइट। ओके तो आप बनते हैं इरशाद जी हमारे शो के विनर, आज इवनिंग मस्ती शो के आप विनर बन चुके हैं। तो चलिए और भी मैसेज देखते हैं कौन राइट आंसर के साथ कनेक्ट हुए हैं। हर हर महादेव। रीना जी क्या हाल चाल है आपके? अजी बहुत बढ़िया है, आज क्या बात है, गाने बड़े मस्त प्ले कर रही हो, डांस वाले गाने हैं, तो मतलब आपने डांस किया है सर, है ना? अच्छी बात है, डांस करिए, वेट कम करिए। बबली जी, गीता जी कनेक्ट हुई है, लक्ष्मी कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना है कि रब्बा मेरे गाने के बोल है। अरे नहीं भाई, गलत आंसर है, गलत आंसर है मैम। सॉन्ग समझ नहीं आया, दोबारा प्ले करिए। अच्छा तो इनको दोबारे में दोबारा समझ आया है, यानी कि ट्यूबलाइट मूवी है, सलमान खान है, रेडियो सॉन्ग है। अच्छा जी,
1: जूता पॉलिश करवा के नाचेंगे हम ताता भैया।
0: और विक्की सागर जी का कहना है कि रीना जी मैंने तो सुना ही नहीं था। अरे अरे सर, आप मिस्टेक कर गए, तो आपने नहीं सुना था। तो प्रीति जी कनेक्ट हो गई है मुरादाबाद से और इनका कहना है कि सज्जन रेडियो। चलिए जी, आप भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट हो। खुशबू जी दिल्ली से कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि सज्जन रेडियो, और ये गाना आज आपने सुबह भी प्ले किया था जब आपने बोला था कि आज स्पेशल डे है, तो आप इस गाने को सुनिए और आपको पता चल जाएगा। तो मेरे को एकदम ध्यान आया कि ये वही वाला गाना है, सज्जन रेडियो। और आज यानी कि श्रोता दिवस है, तो सभी को यही कहना चाहेंगे, सभी श्रोताओं को, कि हैप्पी श्रोता दिवस। और आप यूं ही रेडियो को प्यार करते रहें, अपना प्यार देते रहें और अपना मैसेज भेजते रहें, अपने प्यारे प्यारे संदेश भेजते रहें, रीना जी के साथ कनेक्ट रहिए। ओह जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप सभी श्रोताओं के बिना तो हम सच में अधूरे हैं, और आप मिल जाते तो हम पूरे हो जाते हैं। चलिए जी, हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, कल मिलेंगे, अब सुबह मिलेंगे या शाम को मिलेंगे वो नहीं कह सकते, पर मिल जाएंगे आपको। अभी के लिए बाय-बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए और यूं ही मस्त रहिए, झकास रहिए और रेडियो सुनते रहिए, रेडियो को अपना प्यार देते रहिए। बाय।

0: ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एल आर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवक प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीपीएन के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया, जो दक्षिण पंथी बांग्लादेश जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट प्राप्त हुए। एम्स्टरवीन में महिला हॉकी विश्व कप में इस समय भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों ही टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम मैच में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: राधे राधे ब्रजवासियों, जहाँ कड़कड़ में कान्हा की लीलाएं हैं, जहाँ यमुना की लहरों में भक्ति की मिठास है, जहाँ गलियों में आज भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, वही है हमारी प्यारी मथुरा नगरी।
1: बिल्कुल, मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं, आस्था, संस्कृति और विरासत की ऐसी धरती है जहाँ इतिहास और भविष्य एक साथ कदम बढ़ाते हैं। और आज इसी धरती से हम सुनेंगे विकास की वो कहानी जो सड़कों, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, महिला बाल कल्याण और जन सुविधाओं के जरिए लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और आज का खास एपिसोड है
1: मथुरा में गूंजता विकास। तो आइए बात करते हैं उस विकास की जो सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि आम लोगों के अनुभवों में दिखाई देता है।
0: मथुरा में विकास का दायरा लगातार व्यापक हो रहा है। सड़क और आधारभूत ढांचे से लेकर पर्यटन जन सुविधाओं तक कई स्तरों पर काम आगे बढ़ रहे हैं।
1: मथुरा और ब्रज क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने, मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से लेकर ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग से जुड़े कार्यों तक विकास की तस्वीर लगातार बदल रही है
0: और मथुरा वृंदावन जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है स्थानीय लोगों का साथ साथ देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं।
1: यानी सोच सिर्फ आज की जरूरत पूरी करने की नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए मजबूत आधार तैयार करने की है।
0: अब बात उस युवा शक्ति की जो नौकरी खोजने के साथ साथ रोजगार देने वाला बनने का सपना देखती है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
0: यानी सरकार की सोच साफ है, युवा सिर्फ अवसर का इंतजार ना करे बल्कि अवसर पैदा करने की क्षमता भी हासिल करे।
1: और यही तो है दूरदर्शी सोच। युवा के हाथ में हुनर, हुनर से उद्यम और उद्यम से रोजगार। आइए सुनते हैं अब मुकेश की कहानी जो एक लाभार्थी है।
2: मेरा नाम मुकेश, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद मैं अपना एक रोजगार करना चाहता था। इसी बीच मुझे एक योजना के बारे में पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत मुझे 5 लाख तक का 100% ब्याज मुक्त और गारंटी रहित ऋण मिला, जिसकी मदद से मैंने अपना रोजगार शुरू किया और आज मेरा रोजगार बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं और ऐसी योजनाओं से मैं बहुत ही लाभान्वित हुआ।
0: मुकेश की कहानी इस बात की मिसाल है कि विकास की असली पहचान तब होती है जब योजनाओं का लाभ सीधे परिवार तक पहुंचे।
1: और जब किसी योजना की मदद से किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार और समाज तक पहुंचता है।
0: विकास का सबसे बड़ा अर्थ है समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक अवसर और सुविधाएं पहुंचाना।
1: और इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान के माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
0: यानी केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि परिवार को ऐसी सुविधा

0: आए और अवस्था से जोड़ना जिससे वह आगे बढ़ सके।
1: यही दूरदर्शिता है। गरीबी को सिर्फ एक आंकड़ा मानकर नहीं बल्कि परिवार की जरूरतों को समझकर समाधान तक पहुंचने की कोशिश। आइए सुनते हैं रोशनी की कहानी जो एक लाभार्थी है।
2: मेरा नाम रोशनी है, मैं मथुरा के कोसी में रहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राज्य सरकार को कि राज्य सरकार ने हमारी आर्थिक सहायता की। मैं और मेरा परिवार बहुत निर्धन परिवार है जिसके अंतर्गत हमें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था, लेकिन राज्य सरकार की जीरो पॉवर्टी योजना के माध्यम से मैं जिला विकास विभाग के संपर्क में आई और आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर हमें आर्थिक सहायता मिली जिससे हम अपना छोटा सा रोजगार शुरू कर पाए। धन्यवाद।
0: रोशनी की कहानी भी बताती है कि योजनाओं की सफलता का असली पैमाना है लाभार्थी के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव।
1: जब सरकारी प्रयास जमीन पर किसी परिवार के लिए नई उम्मीद बनते हैं तभी विकास की तस्वीर और साफ हो जाती है। आइए सुनते हैं अब हम मथुरा के जिला विकास अधिकारी गरिमा खरे को।
3: ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धनतम व्यक्ति हैं उनको एक उस पर विकास की धारा में लेकर के आने का, तो उसके दृष्टि से जो विकसित भारत विजन 47 है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जीरो पॉवर्टी अभियान चलाया गया है। ये अभियान इस तरह से है कि इस पे प्रत्येक गांव में निर्धनतम जो परिवारों का चयन किया गया, और वो चयन भी एक टीम ऐसी टीम के द्वारा किया गया है जिसमें उन गांवों में जो लोग जैसे आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इस तरह के लोगों को जोड़ा गया था जो वहां पर बराबर गांव में रहती हैं और वो बेहतर तरीके से जानती हैं कि कौन सा परिवार गरीब है, तो उनका चयन किया गया है। और इस तरह से यहाँ पर 9686 परिवारों का यहाँ पर जो है वो चिन्हांकन हुआ है। उसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी स्कीम के जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर उन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और उस हर परिवार में किसी भी पैरामीटर से, कहीं खाद्यान्न से अगर वो आच्छादित नहीं है, कहीं बच्चे स्कूली शिक्षा से अभाव में है या कहीं आवास में नहीं है, तो हर गवर्नमेंट विभाग की स्कीम ने अपने पैरामीटर्स के आधार पर उनके चयन करते हुए और फिर उनको लाभान्वित कराए जाने का कार्य चल रहा है। इसमें समाज कल्याण के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के जो पात्र लाभार्थी उन परिवारों से हैं उनको उसमें लिया जा रहा है, विधवा पेंशन के अगर लाभार्थी हैं तो छूटे हुए हैं अगर तो उनको लिया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक सैचुरेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि अब इस तरह की जो बेसिक नीड्स हैं उनमें कोई भी परिवार वंचित न रह जाए। और एक इसमें एक और भी हुआ है कि कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ MOU कराया गया है जो स्वयं अपना योगदान इन सेलेक्टेड गांवों में जा करके उन परिवारों से मिल करके उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके जागरूकता के लिए काम करेंगे।
0: गरिमा खरे जी की बातों से साफ है कि विकास को जमीन तक पहुंचाने में जिला प्रशासन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
1: योजनाओं का सही क्रियान्वयन, पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना और विकास कार्यों की लगातार निगरानी, यही वो कड़ी है जो सरकार की नीतियों को आम जनता के जीवन से जोड़ती है।
0: आज जब विकास की बात होती है
1: तो सिर्फ एक सड़क या एक भवन की बात नहीं होती।
0: बिल्कुल, आज की सोच है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार, निवेश के साथ उद्यमिता, विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा और विरासत के साथ पर्यटन।
1: यही है फोरसाइट दूर की सोच।
0: आज जो सड़क बन रही है वह कल की कनेक्टिविटी है, और आज जो युवा उद्यमी बन रहा है वह कल के रोजगार का स्रोत है। आज जिस बच्चे के पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है वही कल प्रदेश की ताकत बनेगा।
1: और मथुरा जैसी सांस्कृतिक नगरी में तो यह सोच और भी खास हो जाती है, विरासत भी बचे और विकास भी बढ़े।
0: उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, सामाजिक कल्याण और जन सुविधाओं को साथ लेकर चलने की सोच दिखाई देती है।
1: और तारीफ उस सोच की भी जिसमें विकास को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय गांव, गरीब, युवा, महिला और बच्चे, हर वर्ग तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
0: एक तरफ एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और निवेश जैसी बड़ी परियोजनाएं,
1: तो दूसरी तरफ जीरो पॉवर्टी उद्यमिता, कौशल विकास और आंगनबाड़ी जैसी जमीनी पहल,
0: यानी बड़े विजन और जमीनी जरूरत दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश।
1: और यही उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच की खासियत है, आज की जरूरत के साथ आने वाले वर्षों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना। तो आज मथुरा से हमने सुनी विकास की कई आवाजें, लाभार्थियों की, प्रशासन की और उन युवाओं की जो अपने सपनों को उद्यम में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
0: आज के एपिसोड का नाम था
1: मथुरा में
0: गूंजता विकास।
1: मैं हूं आपका आरजे जय
0: और मैं हूं आपकी आरजे तेजस्वी भारद्वाज।
1: दोनों मिलते हैं अगले एपिसोड में विकास की एक और कहानी के साथ।
0: जय हिंद।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी नई।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार, आप उत्तर प्रदेश बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: और आज हमारी कहानी पहुंची है उस शहर में जिसकी सुबह गंगा की लहरों से होती है, जिसकी गलियों में सदियों की संस्कृति बसती है और जिसकी पहचान सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है।
0: जी हाँ, आज बात होगी काशी की, हमारे बनारस की, हमारे वाराणसी की।
1: एक ऐसा शहर जहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती दिखाई देती है। एक तरफ गंगा के घाट, मंदिरों की घंटियाँ और बनारसी संस्कृति की मिठास,
0: तो दूसरी तरफ सड़क, बिजली, आवास, रोजगार और जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से बदलती हुई तस्वीर।
1: क्योंकि विकास सिर्फ बड़े शहरों की ऊँची इमारतों का नाम नहीं,
0: विकास तब मायने रखता है जब उसकी रोशनी गांव के उस घर तक पहुंचे जहां एक माँ अपने बच्चे को बेहतर भविष्य के लिए दिन रात संघर्ष करती है।
1: और ऐसी ही एक कहानी है वाराणसी के छितौना गांव की।
0: छितौना की रहने वाली जड़ावती देवी, एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली जड़ावती देवी ने जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत देखी, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ।
1: सीमित साधन, घर की जिम्मेदारियां और बच्चों की पढ़ाई का सपना, जड़ावती देवी ने संघर्ष किया, मेहनत की और अपने बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश की।
0: क्योंकि माँ के लिए बच्चों की पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वो उसके सपनों की वो सीढ़ी होती है जिस पर चढ़कर उसके बच्चे उससे बेहतर जिंदगी जी सकें।
1: और आज जब सरकार की योजनाओं का लाभ ऐसी जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है तो उनके संघर्ष में एक नया सहारा जुड़ता है।
0: जड़ावती देवी को आवास की सुविधा मिली, परिवार को राशन कार्ड की सुविधा मिली और मनरेगा का जॉब कार्ड भी मिला।
1: यानी कि सिर पर छत का सहारा, परिवार के लिए खाद्यान्न सुरक्षा का सहारा और रोजगार के अवसर से जुड़ने का एक माध्यम।
0: किसी बड़े शहर में बैठकर ये सुविधाएं शायद सिर्फ योजनाओं के नाम लगे,
1: लेकिन जड़ावती देवी जैसे परिवार के लिए यही सुविधाएं जिंदगी की मुश्किल राह को थोड़ा आसान बनाने वाली उम्मीद बनती है। दोस्तों, गांव की मिट्टी की खुशबू अलग ही होती है, पर फिलहाल आज हम गांव की मिट्टी की बात नहीं करने आए हैं, आज हम बात करने आए हैं विकास की। प्रदेश भर में जो विकास की लहर चल रही है उसकी छवि जो है बनारस में भी देखने को मिल रही है। बनारस और इससे संबंधित जो भी गांव है यहां पर भी विकास की जो छटा है वो बहुत अच्छे से छा रही है। और दोस्तों, विकास से जुड़ी बातें करने के लिए हम आपके साथ विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो जुड़ते ही हैं, और उसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं वाराणसी के एक गांव में एक लाभार्थी से बात करने। इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए।
2: हमारा नाम जड़ावती देवी है।
1: घर में कौन कौन है आपके?
2: हमारा बस माई है ना, एक लड़का बस, और हम हैं, तीन लोग बस हैं।
1: और क्या करती हैं आप?
2: बस खाना बनाते हैं, सरकारी काम मिला है बस वही।
1: और बेटा क्या करता है?
2: अभी कुछ नहीं।
1: तो जड़ावती जी, जो सरकार की विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं में से आपको किन किन परियोजनाओं का लाभ मिला है?
2: बस शौचालय, आवास, हाँ, आयुष्मान कार्ड बस बना है।
1: तो आपको, जैसे कि आपका घर नहीं था पहले, तो अब
2: पहले मड़ई था, इस पर ये जो बना है इस पर मड़ई था, अब उधर भी एक था, बस यही था
1: पहले, कच्चा घर।
2: हाँ, एकदम।
1: तो अब आवास के तहत जो आपको लाभ मिला है उससे अभी क्या क्या चीजें बनी है आपके घर में?
2: पहले बहुत दिक्कत हुआ था, बस छत ढला है, आरियारी ढला है, अभी अब जाके जब आवास मिला है तब तो ठीक थी, सब कुछ आरियारी दीवार हो गया है, छत भी बन गया है और सब बाकी है अभी करने के लिए।
1: पहले आप कच्चे घर में रहती थी।
2: हाँ।
1: तो अब क्या है कि अब आपके पास पक्का मकान हो गया है, टीन शेड लग गया है।
2: हाँ।
1: और जैसे कि आपने बकरी भी पाली है तो बकरी को भी रखने में उसमें आपको आसानी होती है।
2: हाँ।
1: और ये बताइए जड़ावती जी कि जैसे अब शौचालय बन गया है आपके यहाँ, तो शौचालय बनने से क्या फायदा है?
2: बहुत फायदा है, उतरे खुले में जाना पड़ता है, हमारी माँ को ज्यादा दिक्कत होती है,
1: बिल्कुल। और शौचालय बनने से क्या होता है कि शौचालय जो है किसी भी औरत के सम्मान या उनकी मर्यादा से भी संबंधित उसको हम देखते हैं समाज में। लोग जो है खुले में शौच में जाते थे तो उससे क्या है कि कई सारी बीमारियों का भी खतरा रहता था, बीमारियों का भी खतरा रहता था। या वृद्ध जन है आपके घर में, एजेड है आपकी जो माता जी है, तो उनको भी अब सुविधा रहती है और आपको भी सुविधा रहती है।
2: पहले हम मड़ई में रहते थे, आवास मिल गया है, अब मकान बन गया है, शौचालय है, राशन कार्ड भी है। मोदी को और योगी को हमारा धन्यवाद।
0: आपने सुना, ये सिर्फ एक लाभार्थी की आवाज नहीं है,
1: ये उस माँ की आवाज है जिसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष किया और अब सरकारी योजनाओं के जरिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
0: लेकिन किसी योजना का लाभ जब गांव के परिवारों तक पहुंचता है तो उसके पीछे स्थानीय स्तर पर भी कई लोगों की भूमिका होती है।
1: तो आइए जानते हैं चितौना गाँव में विकास और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का क्या कहना है। दोस्तों, असली विकास वो होता है जो सबको लेके चले, यानी कि समावेश करके चले। और वाराणसी में भी जो विकास की लहर है पूरे उत्तर प्रदेश की, वो दिखाई दे रही है। और इसी लहर के चलते आज हम आ पहुंचे हैं वाराणसी के छितौना गांव में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास शख्स से जो कि इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो चलिए अपनी बातचीत को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यहां पर क्या क्या कार्य हुए हैं विकास से संबंधित। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, आप अपना नाम बताइए।
3: आलोक यादव।
1: आलोक जी, इस ग्राम में जो है कई तरीके के विकास परियोजनाओं पे काम हो रहा होगा, तो अभी फिलहाल में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं और किस प्रकार से जो है उसका लाभ लोगों को दिया जा रहा है?
3: कच्चे रोडों को बनवाया जा रहा है, जो पहले से बने हुए रोड है उन पे कंक्रीट डाला जा रहा है, खड़पे लगाए जा रहे हैं और डमरू लगाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ पानी लग रहा है उसका निस्तारण के लिए नालियाँ लगाई जा रही हैं, और जो इनके पास घर नहीं उनके लिए मुख्यमंत्री आवास, विधवा और विकलांगों के लिए ऑलरेडी मिल चुका है 12-13 लोगों को मेरे गांव में, और कुछ लोगों का जो अभी लिस्ट में नाम गया है, जीरो प्रॉपर्टी वालों का भी गया है जिनके पास एकदम ही कुछ नहीं है।
1: यदि कोई आवास के लिए अप्लाई करना चाहता है तो किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं या क्या उसका प्रोसेस होता है?
3: उसमें जैसे कि वो पात्र होना चाहिए, उसके पास 6 फीट से ऊपर पक्की दीवार नहीं होनी चाहिए, प्लस झोपड़ी टाइप रहना चाहिए, ये न कि वो झोपड़ी बनाकर दिखाए, झोपड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि 2-3 बार उसकी जियो टैगिंग होती है, वहाँ से अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, तब उनको लाभार्थी को लाभ दिया जाता है।
1: कोई तरीके की ऐसे आपको समस्या भी देखने को मिलती है कि लोगों को अलॉट करने में या इस प्रोसेस में कोई तरीके की समस्या जो लोगों को आ रही हो या आपको आ रही हो अपने लेवल पर?
3: जैसे क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग दूसरे के घरों में रहते हैं और वो पक्का होता है, और तो उनसे ये मांगा जाता है कि आप जिसके मकान में रह रहे हैं या फिर आप अपने भाई के ही मकान में रह रहे हैं तो उनसे लिखित ले लें एक स्टाम्प पे कि वो मेरा घर है, मैं इनको भाड़े पे या उनके रहने के लिए दिया हूँ, तब मैं अलॉट कर पाता हूँ, इसी वजह से उनको नहीं मिल पाता है।
1: मतलब कि दस्तावेजों से संबंधित जो है कुछ दिक्कतें ऐसी आती हैं। और अभी जो है कई तरीके की परियोजनाओं का लाभ जो है यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, हमने देखा है, जिसमें से कि मुख्य तौर से मुख्यमंत्री आवास योजना और राशन कार्ड की सुविधा और मनरेगा का जो जॉब कार्ड होता है उससे संबंधित भी चीजें हैं। तो लक्ष्य आपका एकदम साफ है कि बाकी जो आगे भी है, जो डेवलपमेंट की चीजें हैं या विकास कार्य आपका निरंतर चलता रहेगा, और ग्राउंड लेवल पर चीजें करने के लिए साथियों बहुत जरूरी होता है नेतृत्व। जब ऊपर बैठे लोगों का नेतृत्व हमें अच्छा मिलता है तभी विकास कार्य की जो छवि है वो ग्राउंड लेवल पर आपको दिख पाती है अच्छे तरीके से। और आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ
3: मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद बोलना चाहते हैं, इसी तरह करते रहें हमारे गांव का विकास, उनको मेरे तरफ से धन्यवाद।
0: ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की बातों से साफ है कि गांव के स्तर पर विकास की तस्वीर सिर्फ सुविधाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं की पहुंच से भी जुड़ी है।
1: लेकिन छितौना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
0: हमारी दूसरी कहानी है आशिमा बेगम की, 2 बच्चों की अम्मा और जीवन की कठिन परिस्थितियों के बीच अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालती हुई एक सशक्त महिला।
1: आशिमा बेगम के पति भी नहीं है, ऐसे में दो बच्चों की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं रहा होगा।
0: लेकिन मुश्किल हालात के सामने खड़े होकर आगे बढ़ना ही तो जिंदगी का दूसरा नाम है।
1: आशिमा बेगम को भी आवास की सुविधा, राशन कार्ड और मनरेगा का जॉब कार्ड मिला।
0: यानी एक महिला, दो बच्चे और चुनौतियों से भरी हुई जिंदगी, लेकिन अब परिवार के पास एक सुरक्षित आवास, खाद्यान्न सुविधा से जुड़ाव और रोजगार के अवसर से जुड़ने का रास्ता है।
1: दोस्तों, विकास की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी है और वही लहर अब हमें देखने को मिल रही है वाराणसी और उसके आसपास के गांव में भी। और ऐसे ही कुछ विकास की बातें लेकर हम आ पहुंचे हैं वाराणसी के एक गांव में, जहां पर हम एक लाभार्थी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको किस तरीके के लाभ सरकार द्वारा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं गरीबों के कल्याण के लिए या इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए अपने लाभार्थी से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है?
4: आशिमा।
1: और क्या आपके गांव का नाम है?
4: चितौना।
1: क्या करती हैं आशिमा जी?
4: यही मजदूरी का काम, बच्चों के खेते हैं, आपने जानते हैं गरीब है।
1: तो जैसे मजदूरी में जो मनरेगा आपका
4: गेहूं धान काटते हैं,
1: तो मनरेगा के तहत आप अपना मजदूरी करती हैं। और परिवार में कौन कौन है?
4: यही दोनों बच्चे हैं।
1: अच्छा, तो स्कूल जाते हैं?
4: हाँ, स्कूल जाते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं दोनों।
1: कितने बड़े बच्चे?
4: एक दिन पाँच में पढ़ते हैं और एक दिन दो में पढ़ते हैं और एक दिन पाँच साल का है। और
1: तो आशिमा जी, आप मुझे बताइए कि जैसे कि आपको जो है, हमें पता चला है कि आवास योजना के तहत लाभ मिला है, तो पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, पहले कैसे रहती थी जब मकान नहीं बना था? तो
4: जैसे कि मैं पहले तो कच्चे में रहती थी, तो कच्चे के बाद तम्मी जो मजदूरी को बच्चों लोग बना के खिलाते हैं और जो अपने राशन बना के खिलाए हैं। अभी जो है
1: 18-19 साल से आप कच्चे घर में रहती थी। हाँ। फिर उसके बाद जो है, जब आपको आवास मिला है, तो उसके बाद जो पक्के मकान में आप रहने लगी?
4: दो साल हुआ था वो बना है।
1: आपका जो घर है, दो साल से आप उसमें रह रहे हैं। आशिमा की कहानी हमें एक बात सिखाती है
0: कि जब किसी जरूरतमंद परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है, तो उसका असर सिर्फ कागज पर दर्ज नहीं होता है,
1: उसका असर घर की चौखट पर दिखाई देता है,
0: बच्चों के भविष्य में दिखाई देता है
1: और उस माँ के चेहरे पर दिखाई देता है जो कल की चिंता के बीच आज थोड़ा सुकून महसूस कर पाती है। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है,
0: ये आस्था है, संस्कृति है और विरासत है।
1: और अब तो ये विकास की नई कहानी भी लिख रहा है।
0: वाराणसी में विकास की तस्वीर आज कई स्तरों पर दिखाई देती है, बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लेकर कनेक्टिविटी, पर्यटन, रोजगार और जन कल्याण तक।
1: और इस विकास यात्रा में गांव और गरीब परिवार पीछे न छूटे, यही किसी भी जन कल्याणकारी व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकास के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरूरतमंद परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दे रही है।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के रूप में वाराणसी में भी विकास की कई परियोजनाओं और योजनाओं ने शहर की तस्वीर को नई दिशा देने का काम किया है।
0: लेकिन बनारस की असली खूबसूरती सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट में नहीं है,
1: बल्कि उस छोटे से गांव में भी है जहां जड़ावती देवी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखती है,
0: जहां आशिमा बेगम अपने दो बच्चों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं,
1: और जहां सरकारी योजनाएं उनके संघर्ष में सहारा बनने का काम कर रही हैं।
0: यही है विकास का असली मतलब,
1: जब विकास शहर से गांव तक पहुंचे,
0: जब परियोजनाएं कागज से निकलकर जरूरतमंद परिवारों के घर तक पहुंचे,
1: जब एक माँ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ा और निश्चिंत हो सके,
0: और जब हर परिवार को लगे कि बदलते उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में उसकी भी हिस्सेदारी है।
1: गंगा की लहरों की तरह निरंतर आगे बढ़ती काशी,
0: अपनी विरासत को संजोते हुए विकास की नई राह पर बढ़ता वाराणसी,
1: और छितौना जैसे गांव में उम्मीद जगाती जन कल्याण की कहानियाँ,
0: यही है नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
6: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
7: रोड को प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भी शहरी विकास की योजना की गई है। दिल्ली की चाहे सभी रेजिडेंशियल कॉलोनियों की मैं बात करूं, मार्केट एरिया की बात करूं, लो डेंसिटी एरिया की बात हो, एजुकेशनल इंफ्रा की जब हम बात करते हैं उसको इतना आसान किया गया है, बहुत सारी कंडीशंस को हटाया गया है ताकि दिल्ली में फैसिलिटीज जो है वो बढ़े।
8: विकसित भारत 2047 के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी के लोगों के लिए विश्व स्तरीय समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर में बदलना है। बढ़ती आबादी, परिवहन और प्रदूषण की चुनौतियों के बीच यह दिल्ली मास्टर प्लान 2047 राजधानी को सुव्यवस्थित, सुविधाजनक और भविष्य के लिए तैयार करने का संकल्प है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
9: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। ये एक आधुनिक स्वास्थ्य जांच केंद्र है जहां लोगों को अपने क्षेत्र में ही सुलभ और समय पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। जांच के परिणाम डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे और आवश्यकता पड़ने पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एआई और डिजिटल तकनीकें रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रही हैं।
10: आप सबको यहाँ ट्रेंड करना, आपको सिखाना इस जन कौशल केंद्र में किया जाएगा, क्योंकि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से अपनी बात रखी थी तो उन्होंने लक्ष्य लिया था कि हम युवाओं को एआई की शिक्षा देंगे, एआई के कौशल से जोड़ेंगे ताकि आज का युवा स्किल होल्डर बने जो कि आज के जमाने की हर विधा को जानता हो।
9: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अनुव्रत भवन में रेजिंग और एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना के अंतर्गत आयोजित मेगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में सहभागिता की। आयोजन में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम 4P रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
10: ये जो ट्रेनिंग और होल्डिंग आप लोगों की है ये भी सच में 4P रिफॉर्म की ओर हमें लेके जाएगी, जहां पॉलिसी, प्रोसेस, परफॉर्मेंस और पार्टनरशिप हर चीज अपनी जगह काम करेगी और हम मिलकर के इस पार्टनरशिप के माध्यम से दिल्ली को आगे लेकर के जाएंगे।
9: दिल्ली के उद्योग मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में दिल्ली का औद्योगिक क्षेत्र व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
11: आपको कैसे आगे बढ़ाना है इसके बहुत सारे आइडिया हमने आके माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंट किए। सोचिए दिल्ली का पिछले हमारी सरकार आने से पहले कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर में 3000 करोड़ रुपए लगा था और हमने 4806 करोड़ रुपया अपनी गारंटी दिल्ली सरकार ने देकर 4806 करोड़ रुपया लगभग 10,500 लोगों को लोन देकर काम उतराने का काम किया। ये काम करने की सोच है।
9: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज गुरुग्राम क्षेत्र के पास अरावली के संरक्षण और विकास पर चर्चा के लिए आयोजित एक बैठक में शामिल हुए। श्री यादव ने कहा कि सरकार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा दे रही है। इस साल के वन महोत्सव के दौरान मानेसर के पास 2,00,000 पेड़ लगाए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
12: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम

0: पीछे और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
1: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए तैयार है। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज नरेला, बवाना, सिंघोला और भलसवा में बन रहे नए कूड़े के निस्तारण संयंत्रों का निरीक्षण किया तथा उनके निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इनमें नरेला बवाना क्षेत्र में बन रहे 1200 टन और बवाना में ही स्थित निर्माणाधीन 3000 टन प्रतिदिन क्षमता वाले वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र शामिल है। साथ ही निगम आयुक्त ने सिंघोला में बन रहे नए कूड़े के निस्तारण संयंत्र का निरीक्षण किया। इसके अलावा श्री खिरवार ने भलसवा लैंडफिल साइट पर बायो माइनिंग कार्यों का जायजा लिया। नगर निगम ने लाल किला परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन के उपरांत लाल किला और इसके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नगर निगम की टीम द्वारा विशेष रूप से सफाई कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज राजधानी के आगामी पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरान प्लानिंग से लेकर काम पूरा होने तक हर प्रोजेक्ट पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अंतर्राज्यीय अपराध शाखा ने नकली और गैर कानूनी तरीके से डायवर्ट की गई एंटी कैंसर दवाओं के अवैध कारोबार में शामिल एक अंतर्राज्यीय समूह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर गैर कानूनी तरीके से कई दवाइयों की हेराफेरी करते हुए पाया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एंटी कैंसर इंजेक्शन की 588 भरी हुई शीशियां, 6 खाली शीशियां, 7 खाली डब्बे और अन्य दवाओं की लगभग 3000 इकाइयां बरामद की हैं, जिनकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 लाख नकद बरामद भी किया है। मामले की जांच जारी है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू की जा रही विशेष सामुदायिक पुलिस पहल, जन कल्याण प्लेटफॉर्म और सुरक्षा के विशेष उपायों का विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कमजोर वर्गों, खासकर बुजुर्गों और महिला यात्रियों के लिए संस्थागत सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के सीनियर सिटीजन मोबाइल एप्लीकेशन के कामकाज, उसके इस्तेमाल और असर की भी समीक्षा की। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा और हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन इवानागा और की नाकानिशी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हरा दिया। वहीं पुरुष और महिला सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। आयुष शेट्टी को प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के अलवी फरहान ने 19-21, 11-21 से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित अतिरिक्त बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को विश्व स्तरीय समावेशी और आर्थिक रूप से सशक्त शहर बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। नकली एंटी कैंसर दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि गांव की गलियों, खेतों, घरों और लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, और आज की कहानी है कानपुर देहात की। एक ऐसा जिला जिसकी पहचान गाँव की मिट्टी, खेती किसानी, मेहनत कश लोगों और बदलते ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। यहाँ की तस्वीर में परंपरा भी है और विकास की नई उम्मीद भी।
0: और यही बदलाव आज हमारी कहानी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का जोर इस बात पर है कि विकास की रफ्तार गांव तक पहुंचे और हर क्षेत्र को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: सड़क, रोजगार, स्वरोजगार, बुनियादी सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं, यानी विकास की ऐसी तस्वीर जिसमें उत्तर प्रदेश के गांव भी नए उत्तर प्रदेश की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े।
0: यानी आज बात होगी विकास की कहानी आम लोगों की जुबानी।
1: तो चलिए चलते हैं कानपुर देहात के उस ग्रामीण परिवेश की ओर जहां बदलाव को महसूस किया जा सकता है, और सुनते हैं वहां के लोगों की अपनी कहानी।
0: उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि विकास की योजनाएं कागजों तक सीमित ना रहें, बल्कि उनका लाभ गांव, घर, परिवार तक पहुंचे। सड़क हो या रोजगार हो या स्वरोजगार, हर क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ने का अवसर भी मिले।
1: और यही सबसे अच्छी बात है कि जब किसी योजना का लाभ सीधे किसी परिवार तक पहुंचता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उससे पूरा परिवार मजबूत होता है और आत्मनिर्भरता की राह आसान होती है।
0: तो अब सुनते हैं उस व्यक्ति की आवाज जिसने खुद इस बदलाव को महसूस किया है।
2: श्याम सुंदर कमल, ग्राम बखरिया, ढाकन सिवली से रहने वाला हूँ। मैं कानपुर में मिस्त्री टाइल पत्थर का काम करता था। अटेंडम एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया। बुखार में बच्चे अच्छे सब घबरा गए मेरे, तो उन्होंने मुझे लाद के डॉक्टर के यहाँ ले गए। तो डॉक्टर ने ये बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हम हृदय रोग संस्थान में एडमिट हो गए। वहाँ करीब जहाँ पे डॉक्टर ने जांच की तो उसमें उन्होंने बताया कि अटैक इनकी बीमारी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कम से कम खुद नहीं तो कम से कम 3-4 लाख रुपया लगेगा। हम दो तीन में पड़े रहे वहाँ पे, कुछ इलाज चलता रहा, जो घर का था सब खत्म हो गया, लाज गल्ला जो भेजा वो भी से बेच दिया। इसके बाद में मेरे पिताजी एक दिन देखने गए तो उन्होंने मुझे कागज दिखाया। तो वो कागज मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये तो आयुष्मान कार्ड वाला है, इससे आपका इलाज हो सकता है। तो उसी से मेरा फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, फेसमेकर मशीन पड़ी, तब से आज तक मेरा वहीं से इलाज भी चल रहा है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो उन्होंने मेरी वक्त पे बुरे वक्त पे उन्होंने साथ दिया गया, मैं उनका दिल से आभारी हूँ।
1: सुना आपने, यही तो विकास की असली तस्वीर है जब सरकारी प्रयास लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं तो योजनाओं का उद्देश्य भी सार्थक होता है।
0: और उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। गांव हो या शहर, किसान हो या छोटा कारोबारी, हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
0: लेकिन हरी, ये बताइए, किसी योजना की सफलता को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: वो तो लाभार्थियों से पूछिए।
0: बिल्कुल सही। तो चलिए एक और लाभार्थी से जानते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया और सरकारी मदद ने उनके लिए किस तरह की नई संभावनाएं खोली।
3: मेरा नाम वंदना पाल है, मैं ग्राम तातमो खबरा की निवासी हूँ। मेरी एजुकेशन एमए है। मेरी शादी 2016 में हुई थी। 16 में शादी होने के बाद हम घर में ही रहते थे, जैसे घर का काम करते थे और हमें बाहर आना जाना नहीं होता था। 2022 में हमारे यहाँ ब्लॉक से कुछ दीदियाँ आईं जिन्होंने हमें समूह के बारे में जानकारी दी। हमने भी अपना समूह में जुड़ने का निर्णय ले लिया, जिसमें हम अध्यक्ष पद पे थे। मेरे समूह का नाम सागर महिला स्वयं सहायता समूह है। और क्या कहते हैं, 2 महीने बाद जब हमें समूह में जुड़ने के बाद 2 महीने बाद पता चला कि ब्लॉक में कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं, जैसे समूह सखी और बैंक सखी ये सब निकली थी, जिसमें हमने बैंक सखी के पद पे फॉर्म डाला था, जिसमें हमारा 60 दिन की ट्रेनिंग आर शेट्टी अकबरपुर में हुई थी। उसके बाद हमको बैंक में 2022 अगस्त में हमको ज्वाइनिंग मिल गई थी। उसके बाद हम बैंक में आना जाना शुरू किया, वहाँ पे हम बैंक में रह के समूह की दीदियाँ, जैसे नए पंचायतों में खाते खुलते थे बनते थे, उसमें हम उनके खाते खुलवाते थे, जब 6 महीने पूरे हो जाते थे उनका लोन पास करवाते हैं। ऐसे चलते चलते हम ब्लॉक में एक दिन गए तो हमें वहाँ पे पता चला मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना के बारे में पता चला, जिसमें हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारा वो लोन भी पास हो गया और हमें 5 लाख का लोन मिला, जिसमें हमने किराने की दुकान की। ये पैसा हमको मतलब हाथ में नहीं मिला, इसके लिए जो हम सामान लाए उसके लिए मिला था। हम मतलब समूह में जुड़ के हमने काफ़ी कुछ किया। उसके पहले तो हम गरीब में रहते थे, अब हम भी अपना कुछ अपना खर्च निकाल सकते हैं अपने पैरों पे खड़े होके। हम तो सबसे यही कहते हैं सभी दीदियों से कि समूह में जुड़िए और समूह से लाभ उठाइए। मुख्यमंत्री युवा उद्यम के बारे में अगर हम भी नहीं जान पाते तो हम भी घर पे होते और बस वही थोड़ा समूह का काम करते होते। जब हमको इसके बारे में जानकारी मिली तो हमने ये अपना लोन करवाया और हम इसमें आगे बढ़े। हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी योजना ये शुरू की है, जिससे हम लोगों को, हम गृहिणियों को भी इसमें आगे बढ़ने के लिए लाभ मिल सकता है। जब ये हमारे यहाँ मेरे पास ये किराने की दुकान नहीं थी तो मेरे घर का खर्च मेरे पति ही चलाते थे, अब हम उनका हाथ बटा सकते हैं और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और हमारा जीवन कुशल पूर्वक है और शांति से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
1: वाह, इनकी बातों में सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि आगे बढ़ने का भरोसा भी सुनाई देता है।
0: और यही भरोसा उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा की ताकत है। सरकार की योजनाएं तभी प्रभावी बनती हैं जब उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और वो लाभ उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए।
1: अब इस पूरे विकास कार्य से जुड़े अधिकारी से जानते हैं कि सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ रही है।
4: मैं विधान जायसवाल और मैं इस जनपद कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ पिछले लगभग 6 महीने से।
1: सबसे पहले सर श्रोताओं की ओर से जानना चाहेंगे कि जनपद कानपुर देहात में वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी प्रभावी योजनाएं संचालित हो रही है।
4: देखिए, शासन की विभिन्न योजनाएं हमारे जनपद कानपुर देहात में भी संचालित हैं और मुझे खुशी है कि विभिन्न जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं में लोगों को लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से हम देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगजन पेंशन, गरीब बच्चियों के जिनकी शादी नहीं हो जाती उनके लिए हमारे समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, शादी अनुदान योजना जिसमें उनको कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिसमें किसी अनटाइमली डेथ पे जो है कुछ सरकार जो है मदद करती है, इसी तरह पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है पूर्व दशमोत्तर, किसानों के लिए उनके सम्मान राशि के रूप में भारत सरकार के योजना के अंतर्गत किसान सम्मान निधि देते हैं, फसलों के लिए अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दैवीय आपदा राहत योजना, इसी तरह DBT के माध्यम से अगर पशुओं को भी आप रख रहे हैं तो उसमें भी तमाम योजनाएँ हैं जिसके अंतर्गत जो है लाभ पहुँचा रहे हैं। हर घर में नल हो, जल हो, उसके लिए हमारी ग्रामीण जो हमारी पाइपलाइन सप्लाई है उसके अंतर्गत, इसके अलावा भी हमारी एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो पहले आप लोग जिसको नरेगा के नाम से जानते होंगे, वो भी जो है BBG राम जी के नाम से और भी बेहतर ढंग से जनपद में संचालित कराई जा रही है।
1: जो भी योजनाएं आपने बताई इनका जो हमारे खासकर ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको प्रत्यक्ष कैसे लाभ मिल पा रहा है?
4: हमारी योजनाएं जो जमीनी स्तर पे जब लागू होती हैं उसका सीधा सीधा इसमें जो प्रभाव है और उसका लाभ है उस गरीब व्यक्तियों को मिलता है, जिसका असर जो है ग्रामीण जीवन पे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बहुत ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। आप देखेंगे हमारे जो भी गांव हैं, गांव में गरीब लोग रहते हैं, उनके पास यदि उनकी खुद की ज़मीन है तो उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी भी उनकी पात्रता हो उनके अंतर्गत उनको पक्का मकान हम बना रहे हैं। लाखों पक्के मकान हम लोगों ने बना लिया है अभी तक, और आगे भी जैसे जैसे इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते जाते हैं वैसे वैसे इनको हम नए पक्के मकान बनाते हैं। इसी तरीके से बीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 125 दिन का, जो पहले नरेगा के अंतर्गत 100 दिन था, उसको सरकार ने 125 दिन कर दिया। जो मजदूरी है वो भी बढ़ा के 300 रुपये के करीब कर दी है। तो उस सारी चीज़ें जो है, रूरल जो हमारी इकॉनमी है, रूरल जो हमारी लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, उनको उनकी आय और उनके जीवन को बेहतर ढंग से और आगे बढ़ाने के लिए ही लागू की जा रही हैं।
1: सर, इसी के साथ क्या कोई ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार की किसी योजना का लाभ लिया हो और वो आज आगे सकारात्मक बढ़ रहा हो?
4: ऐसे तो आप देखेंगे तो कानपुर देहात में अनगिनत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे
1: जी।
4: सरकार हमारी जो है और जो हमारे विभाग हैं जिले स्तर पर, उनमें आप देखेंगे हम निराश्रित, जैसे अगर कोई वृद्ध हो गया गांव में तो उसके लिए भी हम पेंशन की व्यवस्था करते हैं, विधवा है उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करते हैं। एक बहुत ही अच्छी हमारी जो योजना है भारत सरकार के, उसके योजना के क्रम में राज्य सरकार ने उसको लॉन्च कर रखा है, पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, वह है हमारी स्व सहायता समूह के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी महिलाएँ हैं उनको सशक्त किया जाना। तो तमाम हमारे समूह बनते हैं और उस समूह की महिलाएं जो सरकार भी स्टार्टअप फंड और फिर अन्य भी बैंक के माध्यम से फंड के थ्रू जो है उनको मदद करती है, और उसमें बहुत सारी हमारी समूह की महिलाएं दीदियां जो है उसमें जुड़ के समूह बना के आत्मनिर्भर हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में जैसे अगर आपने जैसा पूछा कि अभी किसी का, तो मुझे अभी याद आ रहा है कि अभी हम लोगों ने एक यहाँ पर कार्यशाला भी कराई थी, हमारी एक रंजना जय माँ दुर्गेश्वर सहायता समूह, उसमें उन्होंने जो है एक ग्रेडी से, पहले वो कुछ नहीं करती थी जैसे सामान्य दिनचर्या होती है एक महिला की ग्रामीण क्षेत्र में घर के काम, और उन्होंने एक समूह का गठन कराया, समूह में महिलाओं को जोड़ा और वो समूह आज एक ग्रेडी से हट के एक उद्यमशील, एक एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंतर्गत जो खुद लोगों को रोजगार देने वाली वो बन चुकी हैं। उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो विभिन्न हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं, ऑफिसर्स, अन्य जगहों पे जो स्टेशनरी इत्यादि की है, वो जेम पोर्टल जो भारत सरकार ने बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार के क्रम में, जिससे सामग्री खरीदने की बाध्यता है उसके बिना हम सीधे किसी से खरीद नहीं सकते, वो वहाँ पे भी पंजीकृत हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है आज उनकी मासिक आमदनी जो पहले कुछ नहीं थी वो जो है 20,000 से लेके 25,000 तक वो प्रतिमा जो है अपना अर्न कर रही है।
1: इसी के साथ सर ये जानना चाहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति पात्र है किसी भी योजना का और वो लाभ नहीं ले पा रहा है तो उसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए?
4: देखिए, हमारे सरकार और शासन के विभिन्न माध्यम हैं, सूचना विभाग है, हमारे अखबार हैं, आपका रेडियो है, इनके माध्यम से हम लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जागरूकता के माध्यम से चलाने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जून माह में एक वृहद जो है एक जन जागरूकता शिविर लगभग 15 दिन का चलाया था, ब्लॉकों में और मुख्यालय स्तर पे जगह जगह कई कई दिन तक कैंप लगाए थे। इसके अलावा भी हमारे जो पंचायत भवन हैं जो हर गांव में हैं वहां पे भी विभिन्न हमारे शासकीय जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके योजनाओं के पात्रता, उनके लाभ के बारे में वहाँ पे हम लोगों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित करा रखा है। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे कार्मिक हैं, सचिव हैं या अन्य विभागों के जो फील्ड स्तरीय कार्मिक हैं, वो भी जगह जगह जाके लोगों को इसके बारे में जागरूकता करके लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: सर, इसी के साथ जानना चाहते हैं कि जो हमारी विकास की योजनाएं हैं इनका प्रभावी क्रियान्वयन और उसमें जो पारदर्शिता होती है वो सुनिश्चित करने के लिए जो हमारा जिला प्रशासन है वो क्या कदम उठाता है?
4: देखिए, अगर कोई योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं होती है तो निश्चित तौर से ये उस योजना को कहीं ना कहीं वो एक कमजोर करती है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जनपद में बहुत ही स्पष्ट निर्देश और क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए योजनाओं का हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो भी लाभार्थी होंगे उनका पहले जो उनकी पात्रता होगी उसके आधार पे उनकी जांच हो कि वास्तव में उसके लिए पात्र हैं। ऐसा तो नहीं कोई किसी वास्तविक कोई लाभार्थी का हक छीन के किसी अपात्र व्यक्ति को मिल रहा है जो इसके पास ऑलरेडी मकान है उसको हम मकान दे रहे हैं। तो इसलिए फील्ड में सरकार ने भी इसके लिए जो ऐप बना रखा है, ऑलरेडी एक ऐप बना रखा है, उसमें फील्ड पे जाके जियो टैगिंग होती है, फिर उसको देखी फ़ोटो खींची जाती है कि हाँ वो कहाँ पे है, आवास है नहीं है, फिर उसके बाद उसको आगे हम ले जाके उसको शामिल करते हैं। इसी तरीके से अन्य भी जो योजनाएं हैं DBT के माध्यम से, सीधे उसके कहीं बीच में बिचौलियों की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे खाते में पैसा उनके जाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो शिकायत भी मिलती है तो शिकायतों को भी हम लोग निराकरण कराते हैं। अगर कोई लापरवाही बरती जाती है किसी के स्तर पर तो उनको दंडित करने का भी काम करते हैं।
1: सर, इसी के साथ अंत में जनपद कानपुर देहात के जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो साथी हैं आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: इनके लिए मेरा यही एक संदेश है कि आप सरकार की योजनाओं से जुड़ के इसका लाभ लीजिए। आप अगर अच्छा आपको खेती करने का मन हो तो हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और इसके अलावा भी विभिन्न सरकारी अनुदान हैं, उनके माध्यम से आप अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। आप अगर उद्यमी बनना चाहते हैं तो हमारे यहाँ CM युवा जैसी तमाम स्कीम्स हैं जिसमें आप हम फैसिलिटेट करेंगे और आप अपना कोई भी उद्यम उसमें अपना सकते हैं। इसी तरह समाज कल्याण की विभिन्न योजनाएं हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया आप आगे आइए, जो भी हमारा फील्ड ऑफिस है या कहीं भी आप जिला अधिकारी के कार्यालय में आ सकते हैं, हमारे मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में आ सकते हैं, किसी भी योजना के बारे में आपको जानकारी शत प्रतिशत मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ, प्रशासन से जुड़ें, सरकार से अधिक अधिक जो योजनाएँ हैं उनका लाभ आप तक पहुँचे। किसी भी तरीके से किसी मिडिल मैन, बिचौलिए या कोई इस तरह से कहे कि हम आपका काम करा देंगे, उसके प्रभाव में मत आए। सरकारी जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे कंट्रोल रूम नंबर हमारे यहाँ चलता है, जिलाधिकारी प्रतिदिन जनता दर्शन में बैठ के लोगों को सुनते हैं, मेरे स्तर पर भी सुनवाई होती है। तो ब्लॉकों में, तहसीलों में कहीं भी आप जा सकते हैं किसी अपनी समस्या का निराकरण कराने के लिए। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं और जनपद कानपुर देहात में हम आपके साथ मिलकर ही इसके विकास को आगे बढ़ाएंगे, मेरी यही आप सभी के लिए संदेश रहे।
1: सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला हमारे श्रोताओं के लिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो जानकारी है हमारे श्रोताओं तक पहुँचेगी और सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका वो लाभ भी लेंगे।
4: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके श्रोताओं के साथ रूबरू हूँ उसको, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बातों से साफ है कि विकास सिर्फ निर्माण कार्यों का नाम नहीं है, विकास का मतलब है लोगों के जीवन में सुविधा, अवसर और आत्मविश्वास बढ़ना।
1: और यही दूरदर्शी सोच आज उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति दे रही है, जहां आज की योजनाओं की नींव पर कल के आत्मनिर्भर और सशक्त प्रदेश की तस्वीर तैयार की जा रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का जोर है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे।
1: गांव में सुविधाओं का विस्तार हो, लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले, जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का सहारा मिले, ये प्रयास उत्तर प्रदेश को नई दिशा दे रहे हैं।
0: यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान केवल आबादी या क्षेत्रफल से नहीं बल्कि तेजी से बदलती विकास की तस्वीर से भी हो रही है।
1: तो दोस्तों, आज की कहानी हमें यही बताती है कि विकास तब तक सार्थक होता है जब तक उसका असर जमीन पर दिखाई दे
0: और जब उस बदलाव की गवाही खुद आम आदमी की आवाज दे।
1: उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्य प्रदेश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं
0: और इसी विश्वास के साथ प्रदेश आगे बढ़ रहा है विकास के रास्ते पर, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर और नए उत्तर प्रदेश के रास्ते पर।
1: तो श्रोताओं, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत।
0: सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज़ 91.2 FM पर, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और आज की कहानी है इस शहर की जहां आस्था की गहराई भी है और विकास की नई रफ्तार भी। जी हां, बात हो रही है गोरखपुर की।
1: बिल्कुल, गोरखपुर जहां की मिट्टी में परंपरा की खुशबू है, तो वहीं आज के बदलते दौर में मेहनत, हुनर और उद्यमिता की नई पहचान भी दिखाई दे रही है। शहर की गलियों से लेकर छोटे छोटे कारोबार तक बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर यहां साफ नजर आती है।
0: और इस बदलाव के पीछे है विकास की ऐसी सोच जिसमें रोजगार के अवसर बढ़े हैं, स्थानीय प्रतिभा को मंच मिले और अपने पैरों पर खड़ी होने का सपना सच हो।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और दूरदर्शी सोच में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।
0: गोरखपुर में भी इस प्रयासों का असर उन चेहरों पर दिखता है जिन्होंने अवसर को अपनी मेहनत से सफलता में बदलना है।
1: तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं एक ऐसी महिला उद्यमी की कहानी जिनके लिए कारोबार सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का रास्ता है।
2: नमस्कार, मेरी यात्रा 2014 में एक साइकिल से शुरू हुई थी और आज मैं जिस जगह पर बैठी हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आज मैं उद्यमी के रूप में आप लोगों के बीच आऊंगी। तो ये सब संभव हुआ हमारे प्रयास और सरकार की योजनाओं से।
3: आप अभी इस समय सिद्धिविनायक पैकेजर्स नामक जो आपका संस्थान है, इसके माध्यम से थोड़ा सा और विस्तार में हमको बताएं कि इसको यहाँ तक पहुँचाने के क्रम में आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला, आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको आपने किन किन योजनाओं का लाभ दिया, और जिससे आपके साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनका जीवन स्तर जो सुधरा हुआ है, तो जो विकास की यात्रा है वो आप अपने मुंह से खुद बताना है कि आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको आप किन किन योजनाओं से लाभान्वित कराया है।
2: पहले तो जब मैं अकेले इस मुहिम में निकली थी तो मैं अकेली थी और साइकिल से मैंने यात्रा को तय किया, और उन दिनों कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे एक डूडा का जो लोन होता है वो भी नहीं मिल पाया। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, मुझे PNGP से 50 लाख का लोन मिला मुझे आगे काम बढ़ाने में, और मैंने

0: जितनी बहनें मेरे पास आती हैं उनको सरकार की योजनाओं से मैंने स्वयं लाभान्वित किया, युवाओं को, महिलाओं को। तो सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिससे हमारी बहनें जुड़ी हैं, सीएम युवा से जुड़ी हैं बहनें, ODOP के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से महिलाएं सम्मानित हो रही हैं और उन्होंने अपना स्वयं का व्यापार शुरू किया। तो मशीन सरकार से मिलती है और सिलाई का काम उन्हें मैं दे देती हूँ। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनसे हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनी हैं और इससे हमारी बहनें भी चाहती हैं, हम भी ये चाहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट जब से उत्तर प्रदेश में आई है तब से महिलाओं का और युवाओं का बड़ा विकास हुआ है। जो कहीं नौकरी के लिए जाते थे आज युवा और महिला स्वयं 10-20 लोगों को रख के समूह के ही माध्यम से अपना व्यापार चला रहे हैं और आत्मनिर्भर बने हैं। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ जिस तरह से मैंने अपने व्यापार को बढ़ाया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें 1.8 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारी संस्था को मिला जो ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाला है जिसमें करीबन 300 महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के मुख पर ये मुस्कान कि हम कहाँ जाते रोजगार के लिए शहर में। आज हमारे सरकार की ये देन है, ये उपलब्धि है कि ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने ऐसे अवसर दिए।
1: दिव्यवाली दीदी, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मेरे सुनने में आया है कि आपसे जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हम लोगों का ये लगता हुआ ब्लॉक चरगावा है, तो चरगावा ब्लॉक के अंतर्गत, उस विकास खंड के अंतर्गत जो वहाँ के BDO साहब हैं, उनसे लाइजनिंग करके, उनसे बातचीत करके तमाम बहनों को आपने जो सरकार द्वारा अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आपका जो है आयुष्मान कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस प्रकार की जो अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनसे भी आपसे जुड़ी जो महिलाएं हैं, अन्य महिलाएं हैं, उनको भी आप BDO साहब से बातचीत करके जोड़ने का प्रयास करती हैं, तो थोड़ा सा उसको भी आप बताना।
0: बिल्कुल, BDO साहब से हमने प्रयास, क्योंकि महिलाएं कोई भी काम होता है तो मेरे पास आती हैं, तो वृद्धा पेंशन और आयुष्मान कार्ड जिन महिलाओं के नहीं बन पाते हैं, हम लोग जाती है, हमारी टीम, हम भी जाते हैं। तो आज महिलाएं आयुष्मान कार्ड के साथ साथ वृद्धा पेंशन, आवास योजना और आवास के लिए तो ऐसी ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं जो बिल्कुल रीढ़ी थी, उसकी जरूरत थी, वैसी वैसी महिलाओं को आवास मिला है इस सरकार में। तो वो सारी महिलाएं हमारे साथ इसीलिए जुड़ी हैं कि मैं सरकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ पाती हूँ और उसका लाभ उनको सीधे अधिकारियों के संपर्क के द्वारा उनको हम लोग देते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, चूंकि मैं सभी अधिकारियों से मिलती जुलती हूँ, जाती हूँ, आज हमारे सरकार की बहुत योजनाएं हैं, योजनाओं की बाढ़ है और इससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा एक ये भी कहना है कि जितना हो रहा है उससे भी अधिक हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारे अधिकारी गण हैं, वो युवा और महिलाओं को कहीं भी देखें तो उनको अपने बुलाएं और उनसे बात करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें।
1: बिल्कुल संगीता जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी महिलाओं को आपने जो है सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा है और साथ ही साथ उद्योग जगत से भी उन लोगों को जोड़ा है, उनका रोजगार का सीजन हुआ है, उनका जीवन सुखमय हुआ है, तो क्यों न हम एक साथ बोले कि विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार, धन्यवाद पूज्य महाराज जी।
0: धन्यवाद तो उत्तर प्रदेश सरकार को है ही, और ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये तमाम महिलाएं जो अपने घर के चार दीवारी में कैद थी, उसको समूह के ही माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाहर निकाला और उनको ये अवसर दिया कि वह स्वरोजगार से जुड़ी, आत्मनिर्भर बनी। तो इसके लिए धन्यवाद उत्तर प्रदेश और धन्यवाद हमारे माननीय महाराज जी को, हम सभी महिलाओं की तरफ से और हम सभी युवाओं की तरफ से।
1: बहुत बहुत आभार संगीता पांडे जी, आपने जो है अपना कीमती समय दिया और सरकार की योजनाओं का लाभ किस प्रकार से लोग ले रहे हैं, किस प्रकार से आपने इसका लाभ उठाया है, तो विकास का प्रदेश
0: उत्तर प्रदेश।
2: सुना आपने, जब सरकारी सहयोग अपने हुनर और मेहनत का साथ मिलता है तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़ी मिसाल बन सकता है।
3: और यही कहानी गोरखपुर के एक और लाभार्थी की है, जहां विकास का मतलब सिर्फ रोजगार या कारोबार तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए जीवन में बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा का विस्तार भी।

0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश अभियान के अंतर्गत हम आ पहुंचे हैं यहां से लगे हुए गांव घोसीपुरवा में, जहां पर तेजू प्रसाद जी का घर है। उनसे हम जानेंगे कि सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। तो विकास की कहानी लाभार्थी की जुबानी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
1: हमारा नाम तेजू प्रसाद है।
0: तेजू जी, सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हुआ है?
1: उनको घर का पैसा मिला, घर बन गया है, आयुष्मान कार्ड का हो गया, राशन कार्ड भी चलता है, माँ का रह गई वृद्धा पेंशन में, और बाकी जो सरकार की तरफ से वो ठीक ही चल रहा है।
0: आपका घर ठीक नहीं था, सरकार की तरफ से आपको आवास मिल गया है?
1: मिल गया, आवास मिल गया, घर बन गया।
0: आपकी माता जी को वृद्धा पेंशन भी मिल रही है, तो फिर भी आप संतुष्ट हैं सरकार की योजनाओं का लाभ पाकर?
1: हाँ, एकदम संतुष्ट हूँ।
0: अभी जिन योजनाओं से आप लाभान्वित हो रहे हैं, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे?
1: उनका धन्यवाद, हमारे लिए इतना कुछ किए, अब उससे अधिक कुछ करें तो और अच्छा भी लगेगा।
0: तो ये थे हमारे साथ तेजू प्रसाद जी, जो यहाँ से लगे हुए गांव घोसीपुरवा के निवासी हैं। हम देख रहे हैं, इनसे भी बात करके हमने जाना, और आप भी सुन रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है, संतुष्ट है। कुछ कमियां हैं, वो भी पूरी होंगी, जैसे सरकार ने अभी तक विकास की इस कहानी को विस्तृत किया है। हम आशा करते हैं कि बाकी जनता भी, जो लाभान्वित होने से अभी वंचित है, उसको भी इन सभी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा, और तेजू प्रसाद जी की तरह बाकी जनता भी हमारी सरकार से ऐसी संतुष्ट होगी और उनके द्वारा संचालित योजनाओं का इसी तरह से लाभ प्राप्त करती रहेगी।
2: यानी एक और मेहनत से आगे बढ़ने का अवसर, तो दूसरी ओर परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा का सहारा, यही योजनाओं का असली असर है।
3: मुख्यमंत्री आवास योजना से परिवार को अपने घर का सहारा मिला, आयुष्मान कार्ड से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उम्मीद मजबूत की, राशन कार्ड ने परिवार की रोजमर्रा की जरूरत में मदद की, वृद्ध पेंशन ने बुजुर्ग सदस्य के जीवन में आर्थिक संबल जोड़ा।
2: मतलब सरकारी योजनाएं जब जरूरतमंदों पर सीधे पहुंचती हैं, तो उनका असर सिर्फ कागजों पर नहीं रहता, वो घर की चौखट से लेकर फिर खुशियों तक दिखाई देता है।
3: और यही तो विकास की वह तस्वीर है, जहां एक परिवार अपने आज को संभालते हुए बेहतर कल की ओर कदम बढ़ाता है।
2: वाकई इन अनुभवों में सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, बल्कि बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी दिखाई देती है।
3: और इस बदलाव को जमीन पर किस तरह गति मिल रही है, योजना का लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, इसे लेकर अब सुनते हैं संबंधित अधिकारी की बात।
4: मेरा नाम उज्जवल सिंह है और वर्तमान में मैं जनपद गोरखपुर में डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री के रूप में कार्यरत हूँ।
0: सबसे पहले जानना चाहूंगी, गोरखपुर जनपद में सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं?
4: वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा कई सारी जो है योजनाएं एमएसएमई विभाग के द्वारा जो है संचालित है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुसीन स्कीम अभी लॉन्च की है, जिसके अतिरिक्त जो है ODOP मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, CM युवा जिसे हम लोग मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कहते हैं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP टूल किट योजना, इसके अतिरिक्त जो है MSME 2022 और टेक्निकल अपग्रेडेशन, ऐसी तमाम योजनाएं जो है संचालित हैं, जिनका जो है लाभ समाज के विभिन्न तबके के लोग जो है उठा रहे हैं।
0: जो संबंधित व्यक्ति हैं इस योजनाओं के, वो किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं?
4: जो विभाग के द्वारा योजनाएं संचालित हैं, उसमें उनको जो है ट्रेनिंग देने से लेके, यानी कि उनको कौशल उन्नयन से लेके, और उनको कैसे जो है स्वरोजगार तक ले जाने के जितने भी चरण होते हैं, हर एक चरण पे जो है हमारी जो विभागीय योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो संचालित हैं, उसका लाभ लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे यदि कोई व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है किसी विधा में, तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जो है दर्जी, लोहार, नाई, टोकरी बुनकर, ऐसे तमाम जो है जो विधाएं हैं, उसमें उनको जो है प्रशिक्षण उनको प्राप्त होता है। ODOP के अंतर्गत जो है टेरा कोटा और रेडीमेड गारमेंट से संबंधित जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे लोग जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, और साथ ही अन्य लोग जो इस काम में इच्छुक हैं, कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ऋण स्कीम है, लोन स्कीम है, उदाहरण के लिए ODOP मार्जिन मनी स्कीम है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, CM युवा जिसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कहते हैं, इसके अतिरिक्त एक जनपद एक व्यंजन स्कीम जो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लॉन्च की गई है, इनके माध्यम से वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो एमएसएमई की इकाइयां हैं उनके लिए एमएसएमई पॉलिसी 2022 है, उसके तहत उनको लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सी इकाइयां जो अपने यहाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्कीम है। कुछ लोग जो समूहों में काम करना चाहते हैं, क्लस्टर बेस काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। वो ओडीओपी सीएफसी की योजनाएं हैं, साथ ही गवर्नमेंट द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा एमएससी सीटीपी योजना भी राज्य सरकार द्वारा जो है वो भी लागू है। तो काफी बड़े कैनवास पे जो है कई स्कीमों के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति जो है सरकार की विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके।
0: हमारी आधी आबादी महिलाएं, युवाओं के लिए और जो जन समूह में जो लोन करते हैं, इन लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह से ये लाभान्वित हो रहे हैं उसमें?
4: सभी स्कीमों में जो है विशेषकर महिलाओं के लिए विशेष जो है प्राविधान किया गया है। चाहे हमारी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, चाहे सीएम युवा हो, चाहे ओडीओपी हो, और चाहे एमएसएमई पॉलिसी 2022 हो, हर स्कीम में महिलाओं के लिए विशेष प्राविधान किए गए हैं। और जहां तक युवाओं की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सीएम युवा स्कीम जो लॉन्च की गई है वो विशेषकर युवाओं को ही फोकस करते हुए लॉन्च की गई है, और जिसमें युवाओं के द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया जा रहा है। इसमें 21 से 40 उम्र के जो भी युवा हैं वो अगर अपना कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो विभागीय योजना के माध्यम से वो लाभान्वित हो सकते हैं। और युवाओं को ही दृष्टिगत रखते हुए भी एक जनपद एक व्यंजन जो स्कीम है, क्योंकि ये खान पान से संबंधित है और मुझे लगता है कि युवाओं के द्वारा जो है बढ़ चढ़ के इस तरह से जो व्यंजनों से संबंधित उसमें काफी उनकी रुचि भी होती है, तो उस क्षेत्र में भी वो कार्य कर सकते हैं।
0: कोई व्यक्ति जो इन योजनाओं का लाभ लेना चाह रहा है, किन्हीं कारणों से नहीं ले पा रहा है, क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए उसे?
4: सबसे पहले तो लाभ अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो सबसे पहले हमारे जो ऑफिस है, हमारे ऑफिस में किसी भी कार्य दिवस में वो आ सकता है। यहाँ पे उनको जो है जो भी स्कीम का वो लाभ लेना चाहते हैं उससे संबंधित उनको स्कीम के बारे में बताया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं हैं हमारी वो सारी पोर्टल पे ऑन बोर्ड की गई है, तो पोर्टल के माध्यम से भी जाके वो स्कीम के बारे में समझ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, अगर चाहे वो ऑनलाइन मोड में या फिर अगर वो अगर इतने डिजिटली अवेयर नहीं है, लगता है कि शायद चीजें हम पोर्टल के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे, तो किसी भी कार्य दिवस में ऑफिस में आके स्कीम्स के बारे में जान सकते हैं।
0: योजनाएं सिर्फ टेबल तक ना रह जाए, कागजों तक ना रह जाए, आम जनमानस तक जाए, प्रभावी रूप से संचालित भी हो, इस पे क्या पैनी नजर है?
4: जितने भी स्कीम्स हैं सभी स्कीम्स का यही मकसद होता है कि अंतिम पायदान के व्यक्ति तक वो स्कीम पहुंचे। और हमारी जितनी भी स्कीम है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी संचालित स्कीम है विभाग के द्वारा जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बढ़ चढ़ के लोगों के द्वारा उसमें हिस्सा लिया जा रहा है, चाहे वो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हो, चाहे ओडीओपी स्कीम हो, चाहे सीएम युवा हो, तो सभी में ही बहुत ही मतलब ग्रास रूट लेवल पे भी जो लोग हैं वहां तक वो स्कीम पहुंच रही
0: है। अंत में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे?
4: मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा और मेरा यही कहना है कि विभाग और सरकार के द्वारा बहुत सी अच्छी स्कीम्स आपके लिए लॉन्च की गई हैं और ये स्कीम आपकी ही है, और बढ़ चढ़ के जो है इन स्कीम्स का फायदा लेते हुए और उत्तर प्रदेश की आर्थिक तरक्की में आप लोग जो है सहभागी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री उज्ज्वल सिंह जी। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार के द्वारा आयोजित ये इन योजनाओं का संबंधित व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: यानी गोरखपुर की ये कहानी बताती है कि विकास सिर्फ बड़ी इमारतों और बड़ी परियोजनाओं का नाम नहीं,
3: बल्कि विकास वो है जब किसी के हुनर को अवसर मिले, किसी के कारोबार को सहारा मिले और किसी परिवार को आवास, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं का संबल मिले।
2: यही है नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, जहां परंपरा के साथ प्रगति है और अवसर के साथ आत्मनिर्भरता।
3: और गोरखपुर इस बदलती तस्वीर का एक जीवंत अध्याय है।
2: इसी के साथ विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के आज के एपिसोड गोरखपुर की गाथा में हमें दीजिए इजाजत।
3: जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में ऐसी कई कहानियां अभी बाकी हैं।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
4: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
3: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
4: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
3: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहे ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
6: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
7: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। दो याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि तीसरी याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
5: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
8: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद यह निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
9: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
10: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
5: श्री कोइज़ुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर

0: आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
1: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड जिस चीज के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग। This

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप ही की पसंद का ये कार्यक्रम है जिसमें आप ही के लोकल फॉर वोकल के लोग यहाँ मौजूद होते हैं और वो बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पसंद होती है, हमें पसंद होती है और हमारे इस पूरे शहर वालों को पसंद आती है। इनफैक्ट जहां जहां आप ये प्रोग्राम सुनते हैं आप सभी को पसंद आती है। और ये जो शेरो शायरी का माहौल है ना, यहाँ पर शेरो शायरी एक अलग अंदाज में होती है तो प्रोग्राम का जो रुतवा है वो पूरा चेंज हो जाता है। और इस प्रोग्राम को धासु बनाने के लिए अखिल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी ऐसी शायरियां मारेंगी जिसे सुनकर मैं बाहर भागना तो चाहूंगा लेकिन भाग नहीं पाऊंगा क्योंकि स्टूडियो बंद कर दिया। हेलो जी, हाउ आर यू?
2: कैसे
0: आपका ये मैंने तारुफ कराया है, ये आपकी आइडेंटिटी है।
2: धन्यवाद, आपने इतना अच्छा हमारा
0: धासु वाली वेलकम किया, मैंने वार्म वेलकम जिसे कहते हैं।
2: आपके धासु वेलकम पे मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता है कि बस
0: कोई शायरी मारूं,
2: आज की जो कुंडी है ये गेट वाली खुलेगी नहीं पहले।
0: अरे अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, हम आपसे निवेदन करेंगे। खैर ये तो जोक सपाट की बात है। अखिल जी बहुत बहुत स्वागत है और आप बिल्कुल धाकड़ आरजे बनते जा रहे हैं डेली, दिन प्रतिदिन आप जो है उन्नति प्रगति दोनों ही कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
2: आशीर्वाद है हमारे पास, बाबा आनंद जी का हम पे आशीर्वाद है।
0: अच्छा ये कोई नए देवता है कि मुझे उनकी फोटो जरूर शेयर करिएगा,
2: मैं भी आपको बस अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर।
0: ठीक है, सो दोस्तों ये तो जोक सपाट चलता रहेगा, तो अखिल भैया आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल हो गया है ना,
2: बहुत
0: क्योंकि आज आपने बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी को बुलाया है।
2: और जिन्हें हमने बुलाया है वो इसलिए नहीं बुलाया कि हमने बुलाया है उसे,
0: लिसनर्स की डिमांड पे दोबारा बुलाया गया है,
2: लिसनर्स की डिमांड पे उन्हें दोबारा बुलाया गया है। उन्होंने ऐसा कमल खिलाया है कि उसे हर कोई अब देखना चाहता है।
0: क्या बात है, और सुनना भी चाहता है। तो हम एक काम करते हैं, इसी बात के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो सर आपका हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार,
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप लोग कैसे हैं?
0: हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं सर, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे।
3: बहुत अच्छा हूँ सर, बाकी आप लोगों की कृपा है, दोस्तों का साथ है
0: जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में एक बार बता दीजिए, थोड़ा अपना तारुफ करा दीजिए हमारे मुरादाबादीज को।
3: सर तारुफ हुई पिछला वाला है, कुछ चेंज नहीं हुआ अभी,
0: लेकिन अभी तो आप आए हो तो ये तो आप चेंज हो, टी शर्ट चेंज है आपका, लुक चेंज है, स्टाइल चेंज है, तो हो सकता है आप भी थोड़ा चेंज करके बोले। क्यों अखिल जी?
3: बस सर कपड़े ही चेंज हुए, बाकी पुराना वाला चल रहा है
0: जो नए लोग सुन रहे हैं।
3: देखिये
0: पिछली बार जब कमल सर आप आए थे तो वो लिसनर तो थे ही, अब कुछ नए भी जुड़े होंगे तो वो तो जानना चाहेंगे ना आपके बारे में, क्योंकि रेडियो पे तो हर दिन नए लोग सुनते हैं, जो अभी आपको सुन रहे हैं उनको तो अपने बारे में थोड़ा बताइए ना।
3: चलिए सर, मेरा नाम शर्मा है जी, मुरादाबाद का निवासी हूँ, आप छोटे से मोहल्ले चंद्रनगर का
0: जी जी,
3: और पिछले कई सालों से सर्जिकल सेल्स के जुड़ा हुआ हूँ जॉनसन जॉनसन के साथ, और थोड़ा सा शौक है लिखने लिखाने का, तो इस वजह से कुछ भाई लोग याद कर लेते हैं, कभी कभी बुला लेते हैं मुझे, और कुछ लोग पसंद भी कर लेते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
2: आज जो है एक मन में एक सवाल उठा है कमल जी से पूछने के लिए, और ये मेरा ही सवाल नहीं है, ये आनंद जी का भी सवाल है और जितने भी हमारे लिसनर
0: सभी का सवाल
2: है कि कमल जी एक बात बताइए कि आपके लिए जो शायरी है वो सिर्फ एक शब्द है या एक एहसास है?
3: सही कहूँ तो मेरे लिए एक एक एक, एक शांति है, एक सुकून है, क्योंकि जब भी कुछ नया लिखता हूँ कुछ ऐसी दिमाग में कोई ऐसी चीज क्लिक करती है और उसको आगे बनाता हूँ तो मन में बहुत असेटिस्फेक्शन सा लगता है कि हाँ कुछ किया है अलग हटके कुछ
2: तो
3: किया।
2: ये शांति सुकून आपको शादी के बाद से कब कब महसूस हुई? मतलब
3: आप फिर उसी विषय पर पहुंच रहे हो।
0: देखिए ये इनकी शादी हो गई इसलिए आपको स्टार्टिंग में वहीं ले जाना है। खैर ये बात तो हम जरूर आपसे पूछेंगे,
2: ये वर्ड आजकल सुनने में अच्छे लगते हैं।
0: कोई बात नहीं, बिल्कुल हम सुनेंगे
3: अखिल जी, क्योंकि कुछ शादी शुदा था वो जानते
0: हैं, इसीलिए कमल सर आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों आप समझिए होंगे बहुत ही स्पेशल होगा, और कुछ लाइनें अगर आपकी हो जाए हम जो है कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कुछ आगाज अगर आप कर दें अपनी चंद पंक्तियों से तो प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे। क्यों अखिल जी?
2: बिल्कुल सही बात,
0: मैं निवेदन करूंगा अखिल जी आप अपनी पंक्तियों को जरा दबा के रखें, थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकालेंगे
2: जो मेरे अंदर से निकल रही है।
0: तो थोड़ा कंट्रोल वो नाना पाटेकर करते हैं ना, कंट्रोल। जी जी सर, मुरादाबाद के लिए आप कुछ अभी जिक्र कर रहे थे हमसे।
3: सबसे पहले जिक्र करते हैं जिससे आजकल सब लोग मतलब एक दो चार हो रहे हैं, गर्मी।
0: हाँ, गर्मी बिल्कुल। आज तो खैर मौसम काफी ठंडा है,
3: मौसम काफी ठंडा
2: दो चार भी हो रहा है, रात में दो दो बजे चार चार बजे भी एक साथ हो रहे हैं।
3: बिल्कुल, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। बत्ती नहीं आ रही है। धन्यवाद योगी जी का कि एक दिन भरपूर बत्ती मिली है हमें। तो चार पंक्तियां देखे गर्मी पर कि तुम जून सुलगती गर्मी के,
0: वाह।
3: तुम जून सुलगती गर्मी के मैं ठंडक की सिफारिश हूँ,
0: वाह जी वाह।
3: तुम जून सुलगती गर्मी के मैं ठंडक की सिफारिश हूँ, तुम पहरेदार हो सूरज के, मैं मानसून की बारिश हूँ।
0: क्या बात, मानसून की बारिश, मैं मानसून की बारिश हूँ। अच्छा, मानसून की बात हुई है तो अखिल भाई क्यों ना एक वो ऐसा ही गाना हो जाए थोड़ा सा, है ना, बारिश वाला, तो प्रोग्राम जो है और भी खूबसूरत हो जाएगा। फिर हम अखिल भाई की शायरी सुनेंगे इसी बात पे। तो कमल सर, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे इस प्रोग्राम में, और बाकी जितने भी लिसनर्स हैं वो भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए इस प्रोग्राम को। अभी थोड़ी देर में लौटेंगे एक अमेजिंग ट्रैक के बाद। आप कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। खूबसूरत गाना, उसके बाद लौट कर आ रहे हैं।

0: खूबसूरत गाने के बाद वेलकम बैक एक बार फिर से आनंद और अखिल के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। साथ में हमारे स्पेशल मेहमान कमल जी मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत सी वाइब को और भी फुल ऑन हैपनिंग बनाने के लिए। तो अखिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे इस दिल से दिल तक के सेशन पे बहुत ही मतलब कहते हैं चार चांद लग गए हैं जिसमें आनंद जी और साथ के साथ कमल जी भी जुड़ गए हैं।
0: तो क्या बात है,
1: कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा सा मांगो आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आपको आज... तो मिलता ही बहुत ज्यादा है, आप तो शुरू से ज्यादा वाले रहे हैं, कोई इतनी शोक्ति नहीं है।
1: आज मैंने बस थोड़ा सा मांगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए
0: जी जी,
1: मगर
0: दिल से दिल तक
1: एकदम...
0: वाला चाहिए था।
1: हाँ दिल से दिल तक में मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई तो ज्वाइन हो।
0: हाँ
1: मैंने एक को मांगा और दो लोग ज्वाइन हो गए।
0: भाई आज आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आपके ऊपर जो है एक साथ दो फूलों की बारिश हो गई है ना, तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बस ये कहूंगा ऐसी फूल जो है
0: पंक्ति आप छोड़ना चाहते हैं या फिर हम सीधा कमल जी के पास चले?
1: मैं
0: अगर
1: बस...
0: कोई दिल से निकल रही है तो सुना दीजिए सर,
1: मेरे
0: मेरा नाम इस्तेमाल ना करें कृपया करके आप, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे लिसनर्स को पता है मैं बहुत ही वाहियात शायरी करता हूँ, फिर भी अच्छी कर लेते हैं।
1: मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, शायरी नहीं है मगर ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। अल्फाज अगर दिल से निकले
0: जी
1: तो किताब नहीं
0: वाह
1: किसी की जिंदगी बन जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो जो दिल से निकले हुए अल्फाज हैं या दिल से निकली हुई बातें हैं कभी कभी वो आपकी जिंदगी को भी रिलेट करती हैं।
0: करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी जो जिंदगी में रिलेट बातें हो रही हैं वो आजकल आप ऑफ ईयर बताते हैं मुझे, खैर उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर आप कुछ यू नो आजकल मतलब जो है आजकल तो अखिल भाई आपको ही पता है ना शेरो शायरी का कितना ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई शायर दिख जाता है, हर कोई आजकल शायर हो गया है ठीक है, और कुछ होते हैं ओरिजिनल वाले।
1: हर कोई शायर नहीं बन गया मगर हर कोई जो है शायरी को अब आनंद के साथ लेने
0: नहीं मैं आपको बताता हूँ, हर कोई शायर का मेरा मतलब ये है अखिल भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लिखते हैं सिर्फ बोलते नहीं है, बट जो बोलने वाले हैं वो उसको उठा के फिर अपने फ्लो में अपने अंदाज में बोलते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर उनको लगता है कि हम भी शायर हो गए हैं, लेकिन एक जो ओरिजिनल शायर होता है उसकी बात अलग ही होती है क्योंकि वो कलम से जो निकली बात होती है वो एक सच्ची वाली होती है, क्योंकि दिल से दिल वाली बात होती है। अब जैसे कमल सर आए तो वो एकदम जेन्युइन कंटेंट लेकर आए क्योंकि वो उनका ओरिजिनल है।
1: कमल सर ये सोच रहे हैं ये दोनों चुप हो तो मैं कुछ बोलूं?
0: नहीं नहीं उनको पता है, कमल सर को ये पता है कि अगर ये दोनों चुप हो गए तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप बोलते रहो बच्चों। खैर एनीवे सर हाँ आपका स्वागत है
2: सर।
0: जी सर, तो आज आप जो है हमारी इस महफिल को कैसे शानदार करेंगे, आपने वो मानसून वाली चार लाइनें सुना दी, तो देखिए बाहर का मौसम भी अच्छा हो गया है, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए क्या सुनाना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद को, क्या नया लिखा है आपने इन बीते दिनों में?
2: आपने अभी बात करी नए शायरों की
0: जी,
2: जो कुछ जेन्युइन लिखते हैं और कुछ ऐसे ही शौकिया
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मतलब किस तरह से बस पिक्चर आ जाए। तो दो लाइन उनके लिए देखिएगा कि औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए,
0: वाह
1: क्या बात है,
2: औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है, क्या बात है,
2: उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर ने बात बोली है ना वो बात आई डोंट नो पूरी हुई या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला ना बिल्कुल रियलिटी है, एकदम जेन्युइन बोला है आपने।
2: नहीं आप इसको अखिल जी पर मत लेना ना।
0: नहीं मैं अखिल जी पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अखिल जी खुद कहीं और जाने वाले हैं अभी इसीलिए मैं अखिल जी को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूंगा,
1: थोड़ा सा चाहता हूँ कि अपना स्ट्रेस वो करूं थोड़ा सा दूर करूं, इसलिए कमल जी जैसी दिख गए तो मेरा तो आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो गया।
0: क्या बात है बिल्कुल,
1: मैं तो बस ये कहूंगा जो हंसते हंसते सब कुछ सह जाए वही इंसान सबसे मजबूत होता है, और जो प्यार में भी मजाक कर जाए वही सबसे प्यारा होता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही अखिल भैया आपने, आजकल आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए दिल से दिल तक करते करते।
1: थैंक यू,
0: बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया। जी सर आप कुछ फरमाए?
2: बिल्कुल फरमाता हूँ सर, चैलेंज देखिएगा कि लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो सद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ।
0: क्या बात,
2: लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो स्वाद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, तू हिंदी में सुना अपनी मैं उर्दू बोल सकता हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये तो आपने बहुत एकदम मेल मिलाप कर दिया हिंदी और उर्दू का, और कहाँ से आप कहाँ से एकदम कि कौन से वक्त में सोचते हैं, सुबह के 3 बजे या सुबह के 4 बजे?
2: सर इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये ज्यादातर जो नए नए आइडिया आते हैं सुबह सुबह जब दिमाग आपका एकदम फ्रेश होता है आप उठते हैं, या कभी कभी रात में जैसे अचानक आप उठे टॉयलेट के लिए तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती है, और वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चोट करती रहती है।
1: तो आपके कहने का मतलब यह है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: नहीं, दिल टूटने का सभी मतलब नहीं है। आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं।
1: नहीं,
2: मैं आपको उस ट्रैक से हटाता हूं, आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं।
1: मैं इसलिए उस ट्रैक पे आता हूं ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं और हमारे आनंद जी जो आजकल अपना दिल एक अकेलौता दिल लिए घूम रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह भी रहे थे मुझसे कि अगर कमल भैया आए तो उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: दोनों ही चीजें हैं।
0: मुझे तो लगता है हो सकता है सर।
2: मैंने कहा ना दोनों चीजें हैं।
0: हाँ, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। हाँ, आपके पिटारे में दोनों ऑप्शन है।
2: डिपेंड करता है कि बंदा किस नेचर का है।
0: हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है।
1: मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर बैटरी डाउन,
2: मोबाइल की बैटरी के साथ मजबूरी है, उसको चार्ज होना ही होना है। लेकिन दूसरे वाले केस में डिपेंड करता है कि आदमी कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए।
0: ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर मुझे लगता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा लव होता है, वो एक ही बार होता है, मेरा ऐसा मानना है।
2: मतलब
0: क्यों, जेनरली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जो दिल से प्यार निकलता है वो एक बार ही होता है। और जो आपका मुझे लगता है लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम दोनों चलता है।
2: बिल्कुल
0: है ना, आपका भी अखिल भाई, मैं खैर बाद में जिक्र करूंगा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं इसी बात पे, इस कॉन्वर्सेशन
1: पसंद नहीं है कि मैं खाना टाइम पे खाऊं।
0: नहीं, मैं सोच रहा हूं एक गाना सुन लेते हैं। प्रोग्राम्स में जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी, प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं हम, एक प्यार वाला गाना हो जाए, उसके बाद वापस आएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: अभी बजाते हैं अखिल भाई एक गाना, टेंशन मत।

0: सुनप्रत गाने के बाद वेलकम बैक एक बार फिर से आनंद और अखिल के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। साथ में हमारे स्पेशल मेहमान कमल जी मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत सी वाइब को और भी फुल ऑन हैपनिंग बनाने के लिए। तो अखिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे इस दिल से दिल तक के सेशन पे बहुत ही मतलब कहते हैं चार चांद लग गए हैं जिसमें आनंद जी और साथ के साथ कमल जी भी जुड़ गए हैं।
0: तो क्या बात है,
1: कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा सा मांगो आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आज तो मिलता ही बहुत ज्यादा है, आप तो शुरू से ज्यादा वाले रहे हैं, कोई इतनी शोक नहीं है।
1: आज मैंने बस थोड़ा सा मांगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए
0: जी जी,
1: मगर
0: दिल से दिल तक वाला चाहिए था।
1: हाँ दिल से दिल तक मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई तो ज्वाइन हो, मैंने एक को मांगा और दो लोग ज्वाइन हो गए।
0: भाई आज आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आपके ऊपर जो है एक साथ दो फूलों की बारिश हो गई है ना, तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बस ये कहूंगा ऐसी फूल जो है
0: पंक्तियां आप छोड़ना चाहते हैं या फिर हम सीधा कमल जी के पास चलें?
1: मैं
0: अगर बस कोई दिल से निकल रही है तो सुना दीजिए सर, मेरा नाम इस्तेमाल ना करें कृपया करके आप, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे लिसनर्स को पता है मैं बहुत ही वाहियात शायरी करता हूँ, आप फिर भी अच्छी कर लेते हैं।
1: मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, शायरी नहीं है मगर ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। अल्फाज अगर दिल से निकले
0: जी
1: तो किताब नहीं
0: वाह
1: किसी की जिंदगी बन जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो जो दिल से निकले हुए अल्फाज हैं या दिल से निकली हुई बातें हैं कभी कभी वो आपकी जिंदगी को भी रिलेट करती हैं।
0: करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी जो जिंदगी में रिलेट बातें हो रही हैं वो आजकल आप ऑफियर बताते हैं मुझे, खैर उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर आप कुछ यू नो आजकल मतलब जो है आजकल तो अखिल भाई आपको ही पता है ना शेरो शायरी का कितना ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई शायर दिख जाता है, हर कोई आजकल शायर हो गया है ठीक है, और कुछ होते हैं ओरिजिनल वाले।
1: हर कोई शायर नहीं बन गया मगर हर कोई जो है शायरी को अब आनंद के साथ लेने
0: नहीं मैं आपको बताता हूँ, हर कोई शायर का मेरा मतलब ये है अखिल भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लिखते हैं सिर्फ बोलते नहीं है, बट जो बोलने वाले हैं वो उसको उठा के फिर अपने फ्लो में अपने अंदाज में बोलते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर उनको लगता है कि हम भी शायर हो गए हैं, लेकिन एक जो ओरिजिनल शायर होता है उसकी बात अलग ही होती है क्योंकि वो कलम से जो निकली बात होती है वो एक सच्ची वाली होती है।

0: ऐसे ही शौकिया
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मतलब किस तरह से बस पिक्चर आ जाए। तो दो लाइन उनके लिए देखिएगा कि औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए,
1: वाह क्या बात है,
0: औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए, उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
1: वाह वाह वाह क्या बात है क्या बात है,
0: उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी।
1: मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर ने बात बोली है ना, वो बात आई डोंट नो पूरी हुई या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला है ना बिल्कुल रियलिटी है, एकदम जेन्युइन बोला है आपने।
0: नहीं आप इसको अखिल जी पर मत लेना ना।
1: नहीं मैं अखिल जी पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अखिल जी खुद कहीं और जाने वाले हैं अभी, इसीलिए मैं अखिल जी को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूंगा,
2: क्योंकि थोड़ा सा चाहता हूँ कि अपना स्ट्रेस वो करूं, थोड़ा सा दूर करूं, इसलिए कमल जी जैसी दिख गए तो मेरे तो आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो गया।
1: क्या बात है बिल्कुल,
2: मैं तो बस ये कहूंगा जो हंसते हंसते सब कुछ सह जाए वही इंसान सबसे मजबूत होता है, और जो प्यार में भी मजाक कर जाए वही सबसे प्यारा होता है।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही अखिल भैया आपने आजकल, आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए दिल से दिल तक करते करते।
2: थैंक यू
1: बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया जी। सर आप कुछ फरमाएं।
0: बिल्कुल फरमाता हूँ सर, चैलेंज देखिएगा कि लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो सद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ।
1: क्या बात,
0: लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो स्वाद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, तू हिंदी में सुना अपनी मैं उर्दू बोल सकता हूँ।
2: क्या बात है क्या बात है, ये तो आपने बहुत एकदम मेल मिलाप कर दिया हिंदी और उर्दू का, और कहाँ से आप कहाँ से एकदम कि कौन से वक्त में सोचते हैं, सुबह के 3 बजे या सुबह के 4 बजे?
0: सर इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये ज्यादातर जो नए नए आइडिया आते हैं सुबह सुबह जब दिमाग आपका एकदम फ्रेश होता है आप उठते हैं, या कभी कभी रात में जैसे अचानक आप उठे टॉयलेट के लिए तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके दिमाग में कहना कि क्लिक कर जाती है, और वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चोट करती रहती है।
2: तो आपके कहने का मतलब यह है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
0: नहीं, दिल टूटने का सुबह मतलब नहीं है। आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं।
2: नहीं
0: मैं आपको उस ट्रैक से हटाता हूं, आप फिर उस ट्रैक पर चले जाएं।
2: मैं इसलिए उस ट्रैक पे आता हूं ना क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं और हमारे आनंद जी जो आजकल अपना दिल एक अकलौता दिल लिए घूम रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह भी रहे थे मुझसे कि अगर कमल भैया आए तो उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है।
0: दोनों ही चीजें हैं,
1: मुझे तो लगता है हो सकता है सर,
0: मैंने कहा ना दोनों चीजें।
1: हाँ हाँ, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, आपके पिटारे में दोनों ऑप्शन है,
0: डिपेंड करता है कि बंदा किस नेचर का है।
1: हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है,
2: मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर बैटरी डाउन,
0: मोबाइल की बैटरी के साथ मजबूरी है, उसको चार्ज होना ही होना है। लेकिन दूसरे वाले केस में डिपेंड करता है कि आदमी कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए।
1: ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर मुझे लगता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा लव होता है, वो एक ही बार होता है, मेरा ऐसा मानना है।
0: मतलब
1: क्यों, जेनरली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जो दिल से प्यार निकलता है वो एक बार ही होता है, और जो आपका मुझे लगता है लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम दोनों चलता है।
0: बिल्कुल
1: है ना, आपका भी अखिल भाई, मैं खैर बाद में जिक्र करूंगा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं इसी बात पे, इस कॉन्वर्सेशन
2: पसंद नहीं है कि मैं खाना टाइम पे खाऊं।
1: नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं एक गाना सुन लेते हैं, प्रोग्राम्स में जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी, प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं हम, एक प्यार वाला गाना हो जाए उसके बाद वापस आएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
2: बजाते रहो गुनगुनाते रहो।
1: अभी बजाते हैं अखिल भाई एक गाना, टेंशन मत।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
0: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
0: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: आप सुन रहे हैं FM।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना ही अपना एफएम मुरादाबाद।
1: बिल्कुल आपने कहा अखिल भैया, आपका अपना ही अपना और सब कुछ अपना ही तो है यहाँ पे। हम भी आपके अपने हैं, हमारे कमल जी भी हमारे अपने हैं और जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी हमारे अपने हैं। तभी तो ये कनेक्शन बनता है दिल से दिल तक का। और इसीलिए आपने अपने शो का नाम भी रखा है, बहुत चालू हो रहे हो, दिल से दिल तक शो रख लिया है।
0: आज सारे लिसनर्स आप सभी लोगों से
1: आज मैं अखिल भैया की थोड़ी फिरकी ले रहा हूँ, पहली बार मैं इनके साथ शो में, मतलब ऐसे दिल से दिल तक में तो पहली बार ही हम मिल रहे हैं।
0: आज कॉल बहुत आ रही है मेरे पास कि मैं अगर मैं उनकी कॉल उठा नहीं पा रहा हूँ।
1: मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत पॉपुलर आ रहे हैं अखिल भैया, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है यार। ऑफ कोर्स इतनी कॉल तो मुझे भी नहीं आते, मैं खुद देख रहा हूँ, अभी भी फोन ब्लिंक हो रहा है आपका। देखो
0: ये, देखो ये आनंद जो है हर चीज का जो है ना वो तिल का ताड़ बना देता है।
1: मैं जो सच बात है ना दोस्तों वही करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि हमारे गेस्ट है कमल जी, इससे पहले वो नाराज होकर भाग जाए हमें छोड़ के, हम वापस उनके पास चलते हैं इज्जत के साथ।
0: तभी मैं आप लोगों की कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ कमल जी हैं, और कमल जी बहुत ही अच्छी शायरी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इनको बुलाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो अखिल जी का है। वैसे इस टाइम पे मुझे स्टूडियो में होना नहीं चाहिए, लेकिन इनकी मेहरबानी जो मैं अभी तक बैठा हूँ यहाँ पे।
0: धन्यवाद धन्यवाद आनंद जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे भी लगातार कुछ ना कुछ निकलता जा रहा है। अखिल भैया हमारे बहुत प्रिपेयर करते हैं, वो जब तक वो कहते हैं जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं,
0: बिल्कुल
1: ये उनकी खासियत है। तो खैर एनीवेज जी कमल सर, आप प्लीज, बहुत सारा चिट्ठा आप, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में है, प्रॉपर लिख के लेकर आए हैं कमल सर हमारे, बहुत ही जेन्युइन कंटेंट आज डिलीवर कर रहे हैं वो। पहले ही बताइए सर, आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है?
2: बिल्कुल आ रहा है।
1: एसी चला दें क्या? अगर आप कहें तो
2: चलाते रहिए, बंद करते रहिए। मौसम का आनंद तो लेना ही है, गर्मी का भी सर्दी का भी,
1: बहुत ही बढ़िया।
0: चलिए हम आ चुके हैं, ये
1: हम चला ही देते हैं यार, टेम्परेचर थोड़ा गर्म।
0: इस बार इन्होंने टॉवल जो है गीला रख दिया ना बेड पे, तो भाभी जी छोड़ेंगे नहीं।
1: भाई वो आपको पता होगा कि अभी हम तो शादीशुदा है नहीं, तो हमें इस विषय में आइडिया है नहीं।
2: तभी तो टॉवल और ये सब उनकी फिरकी ले रहे हैं आप जो
1: सर। ऐसा तो देखिए, अब आप भी उनकी टीम में शामिल हो रहे हैं, मैंने सोचा था एटलीस्ट आप तो मेरा साइड देंगे।
0: देखिए साहब, ये एक ऐसा लड्डू है कि जो है ना आपको खाना तो पड़ेगा कभी ना कभी। हाँ, तो अभी आप जब तक बचे हैं, जब तक आप मंदिरों में चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर चक्कर उस लड्डू से बच रहे हैं, मगर एक ना एक दिन वो लड्डू तो आपको खाना है।
2: सही, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सही जगह अप्रोच करें।
1: हाँ, देखिए अखिल भैया, लड्डू खाने से पहले मैं आप जैसे लोगों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ लड्डू को हजम कैसे करना है, ये भी तो बहुत जरूरी है।
0: सारी ट्रेनिंग धड़ी की धड़ी रह जाती है,
1: समझ सकते
0: हैं। आइए कमल जी, आप बताइए कुछ कुछ तो अपने उसमें हमें साझा कीजिए अपनी शायरी में।
1: देखिए मैं इस शायरी से पहले इतना कहना चाहूंगा, ये जो लड्डू और ये जो बातें थी ना, ये मैं जब भाभी कभी स्टूडियो आएंगी तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा वो कौन सा लड्डू था जो आपने इनको खिलाया था, वो मुझे भी बताइए आप। खैर कमल जी आप बताइए, अपनी शेर व शायरी के माध्यम से कोई लड्डू का जिक्र नहीं होगा मुझे पता है, अब आप सीधे पॉइंट की बात करेंगे।
2: ठीक सर, तो अपने प्यारे से शहर मुरादाबाद के लिए कुछ पंखे हैं।
1: हाँ जी,
2: उम्मीद करता हूँ पसंद करेंगे।
1: बिल्कुल सर,
2: सुनिएगा कि ना कोई पहले मेरे ना किसी के बाद हूं मैं।
1: वाह,
2: ना कोई पहले मेरे ना किसी के बाद हूं मैं, आती जाती हर घड़ी में शाद हूं आबाद हूं मैं, आती जाती हर घड़ी में शाद हूं आबाद हूं मैं, नाम पीतल है मगर सोना हूं मैं।
0: क्या बात है,
2: नाम पीतल है मगर सोना हूं मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूं मैं।
0: क्या बात, क्या बात कही,
2: देख लो मुझको मुरादाबाद हूं मैं, राम गंगा से लगा एक शहर हूं मैं।
0: बहुत खूब,
2: राम गंगा से लगा एक शहर हूं मैं, उर्दू से हिंदी जोड़ती एक बहर हूं मैं, राम गंगा से लगा एक शहर हूं मैं, उर्दू से हिंदी जोड़ती एक बहर हूं मैं, हूं जिगर पर जाने क्यों नाशाद हूं मैं।
0: क्या बात,
2: हूं जिगर पर जाने क्यों नाशाद हूं मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूं मैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, आज आपने मुरादाबाद से एकदम गुफ्तगू और ऐसी रूबरू करवाया अपने मुरादाबाद की बात।
1: नहीं, ये दिल से दिल वाला कनेक्शन था अखिल भाई, और ये मुरादाबाद के बारे में तो जितनी बातें कही जाए खैर वो कम ही है, लेकिन आपने जो एक शहर के बारे में चार पंक्तियां रखी, ये कहीं हमें मिल नहीं सकती, ना चैट जीपीटी पे ना जेमिनी पे, ये सिर्फ कमल जी के पास मिल सकती है।
2: ये पूरा कर लूं पहले?
0: हमें खो गए,
1: हमें लगा था एंड हो गया है। जी सर कहिए।
2: पीत के निर्यात में तो खास हूँ मैं, पीत मतलब पीतल।
0: हाँ जी,
1: अच्छा ठीक है जी।
2: पीत के निर्यात में तो खास हूँ मैं, यूं समेटे खुद में एक इतिहास हूं मैं।
1: वाह,
2: यूं समेटे खुद में एक इतिहास हूं मैं, यूं ही कितनी सदियों से नाबाद हूं मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूं मैं।
0: क्या बात, क्या बात है, क्या बात है।
2: आप देखिएगा
1: जी
2: कि भोर में खिलती हुई एक धूप हूं मैं, भोर में खिलती हुई एक धूप हूं मैं, ओढ़ कर एक नई छवि नव रूप हूं मैं, स्मार्ट हूं, स्मार्ट हूं फिर भी कहीं अपवाद हूं मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ।
0: क्या बात,
1: देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं। क्या बात है।
2: और अंतिम चालन देखिएगा कि मंचे जिगर बसता हुआ एक राग हूँ मैं।
0: बहुत बढ़िया,
2: मंचे जिगर बसता हुआ एक राग हूँ मैं, देता हूँ सबको कंपनी, देता हूँ सबको कंपनी वो बाग हूँ मैं।
1: क्या बात,
2: देता हूँ सबको कंपनी वो बाग हूँ मैं, शामो शहर रोशन शरर आबाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये कंपनी बाग से तो जुड़ी हुई कई कहानियां हैं हमारे साथ, कंपनी बाग के आसपास घूमना, और इस समय तो कंपनी बाग के नजारे ही बदल गए।
1: आपने कभी देखा उसके अंदर मुरादाबाद की नजारे बदल गए? आप कंपनी बाग पे अटके पड़े हो यार अखिल जी, देखो ना जिस भी चौराहे पे जाओगे वही लाइटे लाइटे और मतलब चकाचौंध से भरा हुआ है पूरा मुरादाबाद। और इस समय में जब मैं और आप और कमल जी बात कर रहे हैं, हमारा पूरा शहर लाइटों से नहाया हुआ है।
0: ऐसा क्यों होता है कि जब मैं कभी लाइट देखता हूँ मुरादाबाद में चमकती हुई
1: तभी भाग जाती है? ऐसा तो नहीं होता,
0: एक हफ्ते बाद मुझे लाइट वहां पे मिलती क्यों नहीं है?
1: क्योंकि वो मुझे पता है आप जब उसको ध्यान से देखते हो उसे नजर लग जाती है कि उतार के ले जाता होगा। अखिल ने मुझे देख के नजर लगा दी, अब मैं रोड पे दिखूंगी नहीं तेरे को जा भाई,
2: क्योंकि आपकी रोशनी के आगे उसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है।
1: ये तो
0: कमल जी बचा रहे हैं,
1: तारीफ करिए,
0: लाइट लेके गए कमल जी ने बचा दिया उन्हें आज।
1: सही बात है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ अखिल भाई, वो तो खैर दूसरी दूसरी बात है, लेकिन सच में मुरादाबाद की जो भैया ने तारीफ करी है अभी कमल भैया ने, वो उसकी बात ही अलग है। मतलब अपने शब्दों में आपने रूबरू करा दिया है, तो एक काम करते हैं इसी रूबरू रोशनी में एक बढ़िया से गाना सुनते हैं। ये बातचीत तो हमारी लगातार जारी रहेगी और मुझे लगता है कार्यक्रम में गीत संगीत भी बहुत मैटर करता है।
0: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कही। और मैं इसी बात पे कहना चाहूंगा इस गाने से पहले, रिश्ते अगर हंसी से निभाओ तो दूरियां भी पास लगती है।
1: वाह वाह वाह,
0: रिश्ते अगर हंसी से निभाओ तो दूरियां भी पास लगती है, और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो खामोशी भी बात कर।
1: क्या बात है अखिल जी, मैं आपकी लाइनें सुन के बस चुप हो गया था।
0: हाँ, उसके बाद जो खामोशी आई थी समझ में आ गया था कि आपको बात समझ
1: नहीं, मैंने एक मिनट पॉज इसलिए लिया कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ ये बड़ा मैटर करता है। एक मेरी स्क्रीन पे भी शायरी आ रही है लेकिन मैं बाद में सुनाऊंगा। चलिए एक काम करते हैं, गीत संगीत का आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। बहुत ही खूबसूरत गाना, और इस गाने के बाद वेलकम बैक है आप सभी का। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आज की जो ये बेहतरीन वाइव है इसको फुल ऑन सैटिसफैक्टरी और अमेजिंग बना रहे हैं अखिल जी, मैं और साथ में कमल सर जो हमारी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और हमारे साथ ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। तो कमल जी आपको आनंद आ रहा है यानी हमारे स्टूडियो में?
2: बिल्कुल सर, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, अखिल ही अखिल है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी।
0: मैं बस सभी अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा जो गाड़ी में हमें सुन रहे हैं या जो आसपास कहीं बाइक चलाते हुए सुन रहे हैं, तो हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम करें, मतलब हॉर्न फ्री रखें। इतना शोर शराबा हो जाता है कभी कभी हॉर्न से कि साउंड पोल्यूशन भी अपनी जगह बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप कमल जी इस बारे में?
2: सर ये थोड़ा सा मैटर सब्जेक्ट से अलग हो
1: जाएगा। सही कह रहे हैं आप, ये अखिल जी हैं जो दिल से दिल तक बात बनाते हैं।
0: इसके ऊपर कोई शायरी है?
1: हाँ,
2: इस विषय पर भी विचार करना पड़ेगा अगली बार इस टॉपिक पर भी विचार करना पड़ेगा।
1: मैं बताता हूँ कमल जी, यहाँ रेडियो वाले ना कुछ भी पूछ सकते हैं, इनका ट्रैक कभी भी हट जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हर डायरेक्शन में प्रिपेयर होना चाहिए। क्यों जी,
2: मैं तभी तो उनको सही ट्रैक पर ला दूं, ये फिर दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं।
1: एक मेरे को शायरी दिख रही है कि बहुत अच्छी सी है, मुझे लगता नहीं वैसे अच्छी होगी क्योंकि मैं करता नहीं हूँ शेर शायरी।
0: नहीं, ये व्हाट्सएप पे दिख रही है आपको?
1: हाँ, नहीं मेरे को व्हाट्सएप पे नहीं दिख रही है, मेरे को किसी ने लिख के भेजी है, मेरे को वो दिख रही है, तो मैं भी इसको पढ़ता हूँ कि तुम्हें जो भी बहाना चाहिए था हमें तो कुछ बताना चाहिए था, कि तुम्हें जो भी बहाना चाहिए था हमें भी तो कुछ बताना चाहिए था, मुझे तो जुदाई का सदमा लगा, मुझे तो जुदाई का सदमा लगा, तुम्हें तो घर बसाना चाहिए था।
0: क्या बात कही,
1: अच्छी बात है ना,
0: वो तो घर बसा लेगी आप आनंद जी, ऐसी लिखते रहो मेरे लिए, वाला घर बसा जाएगा।
1: ये मैं अपने लिए नहीं बता रहा था यार, देखो कोई बंदा खुद पे थोड़ी ना चिपकाएगा यार, कैसी बात कर रहे हो, ये तो किसी ने मेरे को भेजी तो मैंने पढ़ के सुना दी। एनीवेज हमारी शायरियों में वो कहां दम है जो कमल जी की बातों में है, क्यों अखिल जी?
0: बिल्कुल सही,
1: बैक टू कमल जी के पास चलते हैं और कुछ बढ़िया से सुनते हैं।
0: भारत कमल जी कितने साल हो गए आपकी शादी को?
2: 13 साल।
0: तो 13 साल का तो एक्सपीरियंस कमल जी के साथ है ही।
1: क्या बात है, बट हम उस एक्सपीरियंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम
2: आज लिखने लिखाने का 13 साल का नहीं है।
1: हाँ, आज मुझसे
2: पिछले 4-5 साल का।
1: अच्छा, जो अभी लिखते लिखाते हैं आप ये वाला, बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे कुछ फरमा दीजिए जनाब आप। अच्छा, अभी जो है मौसम चेंज होने वाला है, जैसे अभी गर्मियों के से हम सीधा मानसून की तरफ जाने वाले, मतलब बारिश हरियाली चारों तरफ और रोमांस का महीना, रोमांटिक महीना कहते हैं
0: सावन, बच्चे स्कूल जाने वाले।
1: तो इसमें कुछ सुनाओ यार आप सर, तो बच्चे स्कूल जाने वाले
0: कल से,
1: बच्चों के लिए कोई शायरी नहीं है फिलहाल।
2: तो उसके तो मानसून की चाली ने पहले चिपका दी ना।
1: हाँ हाँ, अगर कुछ और हो तो वो भी चिपका सकते हैं आप। नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने चार पंक्तियां उन्होंने अच्छी से लगा दी थी, हमने
0: ये फेविकॉल का एड था जो कमल जी कर रहे थे।
2: चार पंक्तियों में जीवन की सच्चाई देखेगा कि जिंदगी क्या है।
1: अच्छा चलिए, बिल्कुल सर,
2: कि अंक गणित के अंक से उलझी जीवन की इतनी सच्चाई।
1: वाह वाह,
2: अंक गणित के अंक से उलझी जीवन की इतनी सच्चाई, नींद दहाई ख्वाब सैकड़े और खुशियां हैं एक इकाई।
0: क्या बात है, क्या बात है। हमारे पास नेहा जी का मैसेज आया है कि कमल जी की शायरी सुनकर तो मुझे कॉलेज के दिन ही वापस याद आ गए। तो नेहा जी आपको, मतलब कमल जी हमारे इतने भी पुराने नहीं है, मगर हाँ शायरी उनकी बहुत ही अंदर तक जाती है, तो पुराने दिन तो हमेशा सभी को याद आ जाते हैं।
1: True, got it, एकदम, I agree with you. बहुत ही अच्छा। और मुझे लगता है कि देखो यार अखिल भैया, पता है जो शेर व शायरी का माहौल होता है ना, इसका डबल मजा हो जाता है अगर एक शायर आपके सामने जबरदस्त बैठा हो, है ना, जैसे कि आप बैठे हैं मेरे सामने, आप भी कुछ ना कुछ अतरंगी सतरंगी सुनाते रहते हैं, मजा आ जाता है। मुझे लग रहा है कि कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ, तो हमें चुप हो चाहिए यार, इज्जत का मामला है।
0: कमल जी कहेंगे चार लाइनें सुन के मेरी वाहवाह कर देते, उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं, ये अपनी बात बोल देते
2: यार। मुझे कहना पड़ता है कि पूरी तो सुन लो, पूरी सुन लो,
1: अभी तो मैं कह रहा हूं, तो दोस्तों
0: हां पूरी कीजिए आप पहले पूरी। हाँ, आपके वो चार लाइनों में दिल एकदम अंदर तक भरा आता है ना।
2: नहीं, जो मुझे भी पता चल जाता है कि चाइना में कुछ दम था या नहीं था।
0: देखा चुपर उस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, हम थोड़े से अनजान हैं इस फील्ड में, तो आप जरा हमें बख्श दीजिएगा और आप अपनी आगे की लाइनों को पूरा करिएगा।
2: चलिए जिंदगी पर ही कुछ चार पंक्तियां और देखिएगा।
1: बिल्कुल सर।
2: कि जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है।
1: वाह,
0: बहुत खूब।
2: जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है, किसी के मन में छिपा है क्या ये, ऐसे पता कहाँ चलता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: किसी के मन में छिपा है क्या ये, ऐसे पता कहाँ चलता है।
1: जी जी।
2: वैसे तो जितने भी मुंह हैं, वैसे तो जितने भी मुंह हैं उतनी तरह की बातें हैं, वैसे तो जितने भी मुंह हैं उतनी तरह की बातें हैं, कोई खुलकर खुलकर मिलता है तो कोई मिलकर खुलता है।
0: क्या बात है।
2: जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है।
0: बहुत सही बात कही, आप दिल खोल के बातें करें जिससे कि आपका दिल ना खोलना पड़े कभी। इतनी अच्छी बात कही। मोहब्बत में लोग चांद तक पहुंचने की बात करते हैं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि सामने वाला सीन करके भी जवाब दे दे।
1: क्या बात है, बिल्कुल, आपको जवाब मिलता भी है, वो बात की कि आप जवाब नहीं देते हैं। बहुत अच्छी आपने करी है, थैंक यू सो मच। और ये जो बातों का सिलसिला है ये और भी मजेदार हो जाता है जब इसमें चार लोग बैठे होते हैं। फिलहाल तीन लोग बैठे हैं, मजे की बात ये है,
0: तीन का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये आनंद बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है।
1: बिल्कुल, ये बचपन से हमारे, हमने कहावत सुनी थी, तीन लोग की जो जोड़ी होती है वो खतरनाक ही होती है।
0: ऐसी तीन दोस्त होते हैं जो गाड़ी में बैठ के एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं इस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बात अलग है, आपने स्टेशन में बैठ के अपनी कहानी कभी नहीं सुनाई। खैर, कभी फुर्सत से सुनेंगे हम जरूर। जब तक कमल सर कुछ नया निकाल रहे हैं, हम एक काम करेंगे, गाने की तरफ बढ़ेंगे, छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक होगा और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे, फिर सर से इजाजत लेंगे और कुछ उनसे सुनेंगे भी।
0: बिल्कुल सही है, बिल्कुल।
1: गाना सुना है अपने किशोर कुमार का, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: हाँ, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो अगले एपिसोड में, अगले लिंक में क्या हो जाएगा, अभी किसने कुछ नहीं जाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आगे की लाइन बताओ या भूल गए हो। गाइस अभी काम करते हैं, गाना सुनते हैं, मुझे खुद को भी याद नहीं आ रही है, कमल सर भी सोच रहे हैं आगे कुछ तो कहा था किशोर कुमार ने। अखिल भाई तो पूरा ही डूब चुके हैं। खैर, एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं, आपका ही मजा।

0: कम्युनिटी रेडियो स्टेशन धड़कना सीख जाते हैं।
1: हाँ,
0: टूटे हुए दिल भी फिर धड़कना सीख जाते हैं जब कोई सच्चा इंसान जिंदगी में आ जाता है।
1: क्या बात है, और इनकी जिंदगी में भी FM आ गया है, तो इसलिए ये अपना दिल बहुत धड़का रहे। सही बात है, गलत है?
0: दिल से दिल तक चल रहा है
1: नई बात,
0: दिल से दिल तक चल रहा है। आज हमारे पास कई लिसनर्स के कॉल आ रहे हैं, हम उठा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए माफी। मगर आज आप सभी सुन रहे होंगे हम सबके दिलों की बात, क्योंकि जो हमारे साथ बैठे हैं ना सख कमल जी, वो ऐसे हैं कि अगर कोई बात भी निकल रही है, अगर हंसी मजाक में भी निकल रही है ना, तो आज उनके डायरेक्ट दिल से निकल रही है। और आनंद को तो आप जानते हो,
1: तो
0: ये
1: मतलब
0: तो हिला ही देता।
1: कहना क्या चाहते हैं, उनकी बात घर पे दिल से नहीं निकलती है?
0: अब घर पे तो
1: भाभी जी के लिए
0: भाभी के आगे क्या क्या बातें इनकी निकल रही नहीं निकल रही हमें तो नहीं पता।
1: वो आपको तो खैर पता है, अभी तो शादी हो गया है। मैं ये बोल के सबको बता देना चाहता हूँ कि अखिल इट्स नॉट सिंगल। आप लोग इस नजर से नहीं देखेंगे हमारे अखिल भाई को, नहीं तो भाभी जी हमें बहुत मारेंगी। सपाट अखिल भाई, मैंने कहा था ना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हमने कहा था हम कमल जी से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अखिल जी ने सुना दिया, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है कभी भी। खैर सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से। आप जरा अब जो है ये हमारी अंतिम कॉन्वर्सेशन चल रही है, ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे अब इजाजत लेंगे आपसे, और आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बट जाते जाते कुछ अच्छा सा अगर आप सुनाना चाहें, ताकि अगली बार लिसनर और डिमांड करें, हम दोबारा आपको बुलाना चाहें, है ना अखिल भाई?
0: बिल्कुल सही कहा।
2: देखिएगा कुछ पंक्तियां और हैं कि नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं।
1: क्या बात है,
2: नामवरों की महफिल में, मतलब जैसा आप लोगों की महफिल है।
1: जी जी, नहीं हमारा नाम है सर, मेरा आनंद है, उनका अखिल है।
2: नहीं मतलब जाना माना नाम, उसको नामवर कहते हैं।
1: अच्छा नाम,
2: जो जाना माना नाम होता
1: है।
0: ये स्वयंवर की बात कर रहे हैं, बाद में स्वयंवर।
1: अच्छा ओके, सॉरी सॉरी।
2: नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं,
1: वाह,
2: अपनी भी कुछ पहचान बने।
1: जी
2: आओ कुछ ऐसा लिखते हैं।
1: वाह क्या बात है,
2: अपनी भी कुछ पहचान बने और कुछ ऐसा लिखते हैं। अब तक तो गैर की महफिल में,
1: जी जी,
2: अब तक तो गैर की महफिल में बस वाह वाह ही करते आए।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: अब तक तो गैर की महफिल में बस वाह वाह ही करते आए, एक खरीदार की चाहत है बाजार में हम भी बिकते हैं।
0: क्या बात कह रही
2: है, की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं।
1: दिखते हैं, क्या बात है क्या बात है।
0: ये तो आज इन्होंने उल्टा ही कह डाला, मतलब हमारा तो मतलब कहते हैं अंदर तक पहुंच गई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये अंदर से बाहर भी निकल जाएगी, आप चिंता ना करें दोस्तों। जी जी सर, और देखिए वही वाली बात है ना कि जब मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कलाकार की खूबसूरत बात यही होती है कि जो वो दिल से लिखते हैं ना, और जो वो दिल से सुनाते हैं, तो वो कनेक्ट भी दिल से दिल तक होती है। कमल सर, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं है वो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे लिखें, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत सारे ऐसे आजकल हमारे इस शो को सुन के बहुत लोगों के मन में, मुझे तो बहुत मैसेज आते हैं, ख्याल आ रहा है कि हम भी आए, हम भी यू नो इस तरह की शायरी करें, बट उनको पता ही नहीं है कि उनको स्टार्ट कैसे करना है। तो आप जैसे आपका 3-4 सालों का भी सर ने एक्सपीरियंस बताया, तो आप इस पे कुछ कहना चाहें उन बच्चों को?
2: किसी भी लिखने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज है सब्जेक्ट।
1: हाँ बिल्कुल,
2: और अगर आप बिल्कुल सटीक दिमाग से बिल्कुल एक मतलब एक एम लिए देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे आसपास में सब्जेक्ट दिखेंगे। वो सब्जेक्ट किसी भी विषय पे हो सकते हैं, देश पे भी हो सकते हैं, आपकी आम जिंदगी जो है रोज की उससे भी जुड़े हो सकते हैं।
1: 100%.
2: बस आपको वो सब्जेक्ट देखना है और कुछ सोचना है उसके बारे में।
0: आप खुद
2: अपने आप ही आप जुड़ते जाएंगे सब्जेक्ट से, और पंक्ति अपने आप ही अंदर आपके बनती रहेगी। बस आपको उनको
1: उतारने की
2: सेट करना है,
0: उन शब्दों को अपने जहन में लाके आपको
2: उसमें आपकी जो भी घटनाएं घट रही है उन पर थोड़ा नजर रखिए।
1: मतलब आपको अब्जॉर्ब करना है और दिल से,
2: मुझे तो जो इंस्पिरेशन मिलती है वो अखबार से मिलती है।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया,
0: अमर उजाला से या दैनिक जागरण से?
2: अमर उजाला और हिंदुस्तान।
1: क्या बात है, बढ़िया, वेरी नाइस, आपने इन दोनों को प्रमोट किया है, हमें दोनों पैसे भी देते हैं, तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
0: अगर आपको आसपास कोई सब्जेक्ट नहीं मिले तो आप खुद को भी अपना एक सब्जेक्ट बना सकते हैं।
2: नहीं खुद पे लिखना बहुत बड़ा काम है, हर कोई नहीं कर सकता।
1: बहुत अच्छा आपने कहा है सर,
2: खुद पर लिखना और खुद पर हंसना,
1: जी
2: बहुत बड़ी बात,
1: बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हम मजे की बात है कि हम दोनों खुद पे हंसते रहते हैं क्योंकि हम लोग रेडियो में काम करते हैं। एनीवेज
0: बहुत दूसरों को देख के हंसते रहते हैं।
1: बहुत नहीं, दूसरे लोग हमें देख के हंसते हैं।
0: मैं कहना चाहूंगा ये बिल्कुल आनंद जी दिल से निकल रही है आवाज।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरा दिल का तार आप प्लीज तोड़ दीजिए, इससे पहले कोई और जूते चप्पल बरसाए, आप प्लीज पूरा करिए अपनी बात।
0: महफिलों की रौनक लग तुमने ना एकदम वो कर देता, महफिलों की रौनक लोग नहीं,
1: वाह,
0: महफिलों की रौनक लोग नहीं, उनके अल्फाज होते हैं।
1: क्या बात है,
0: जो दिल से निकले वही हमेशा याद रहते हैं।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया, जैसे कि आप याद रहते हैं हमारे लिसनर्स को, और कमल जी तो हमेशा याद रहेंगे, इतनी अच्छी बातें करते हैं सर। चलते चलते कुछ सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाते जाते?
2: बिल्कुल सर, आपने कहा तो जरूर सुनाना पड़ेगा।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक दोस्ती वाला अगर कुछ हो जाए तो मेरे को बड़ा मजा आता है दोस्ती में, यू नो हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं सब हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, तो अगर इस पे आपको
0: और सब अपने दोस्तों को भी याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अखिल जी भी याद कर रहे हैं।
2: पर भी चार लाइनें सुनाते हैं, पहले जो निकली हुई है पहले।
0: क्यों नहीं क्यों नहीं।
2: तो देखिएगा कि जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई है।
1: वाह।
2: जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई है, उसकी लिखी नज्मों की महफिल दीवानी हो गई।
1: वाह जी वाह।
2: उसकी लिखी नज्मों की महफिल दीवानी हो गई है, उसकी गुमनामी भी एक दिन नाम की मोहताज थी।
0: बहुत खूब।
2: उसकी गुमनामी भी एक दिन नाम की मोहताज थी, शोर है अब हर तरफ उसकी कहानी हो गई है, जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई।
1: क्या बात है सर, क्या बात है, कमाल कर दिया, कमाल
0: जो
1: कर
0: लोग
1: दिया।
0: आलम बिरयानी के आसपास कहीं बैठे हुए हैं गाड़ी में तो वो अपनी बिरयानी आराम से खाते रहे।
1: एब्सोल्युटली सही।
0: और ये शायरी का असली आनंद तो उन्होंने लिया।
2: तो ये मतलब उसकी प्रमोशन हो गई क्या? आलम बिरयानी की प्रमोशन भी हो गई।
1: सर यहाँ कुछ भी हो सकता है,
0: कुछ भी हो सकता है।
1: जैसे कि मैंने कहा था आपसे, कुछ अगर आप हमारे दोस्तों के लिए कुछ दोस्ती बगैर दो लाइन कहना चाहें जाते जाते।
2: चलिए साहब जैसा हुक्म है।
1: बिल्कुल हाँ हाँ, आप बहुत सुपर फास्ट भागते दौड़ते पहुंचे हमारे ऑफिस, हमें पता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो
2: देखिएगा कि कुछ मतलब दोस्ती मिलना मिलाना महफिल इस बारे में कुछ आप उससे कोरिलेट कर लेंगे।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: कि महफिलों के दौर ये आते रहे जाते रहे।
1: वाह वाह।
2: महफिलों के दौर ये आते रहे जाते रहे, आप सब बस ऐसे ही हंसते रहे गाते रहे।
1: क्या बात है।
2: आप सब बस ऐसे ही हंसते रहे गाते रहे, सोच नाना ये कि मैं तुम सबसे कितना दूर हूँ। सोच नाना ये कि मैं तुम सबसे कितना दूर हूँ, ये ना कह देना कि मैं नाकाबिले दस्तूर हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: ये ना कह देना कि मैं नाकाबिले दस्तूर हूँ, घर की जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ चूर हूँ।
1: अरे वाह।
2: घर की जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ चूर हूँ, पर तुम्हारी महफिलों का एक चमकता नूर हूँ।
1: क्या बहुत बढ़िया, खूबसूरत।
2: पर तुम्हारी महफिलों का एक चमकता नूर हूँ, बंद गए हैं दिल तो ये बंधन न तोड़ा जाएगा। बंद गए हैं दिल तो ये बंधन न तोड़ा जाएगा, जुड़ गया है साथ तो अब टूटने न पाएगा।
1: क्या बात है, क्या बात।
2: जुड़ गया है साथ तो अब टूटने न पाएगा, बस कर्म इतना करो महफिल यूं ही सस्ती रहे।
1: क्या बात है।
2: बस कर्म इतना करो महफिल यूं ही सस्ती रहे, जाम भी चलते रहे और क्षमा जलती रहे।
0: क्या बात कही, क्या बात कही। जिनके हाथ में जाम है वो तो
2: उनका भी परमिशन हो गया,
0: वो तो इस समय खुशी से कह रहे हैं क्या बात है, आज तो सही टाइम पे हमने एफएम लगा लिया और दिल से दिल तक बात जो है हमारे बीच पहुंच गई है। और मैं सभी लिसनर से कहूंगा कि आप भी अपनी शायरी हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे, हम भी आपकी दिल की बात सभी के पास पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा अखिल भाई आपने, और हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने टैलेंट को छुपाएं नहीं बाहर निकालें, है ना। तो कमल जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम साझा किया और अपने दिल से लिखी बातों को हमारे लिसनर तक पहुंचाया, और हम चाहेंगे कि बीच बीच में हम आपको ऐसे ही परेशान करते
0: रहे,
1: है ना, और आप ऐसे ही हमारे दोस्तों को एंटरटेन करते रहे। बिल्कुल। तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इतना स्पेशल इस प्रोग्राम को बनाया। अखिल जी चलें अपना पोटला उठा के बातों का पिटारा लेके।
0: कल आप लोगों से मिलेंगे हम ठीक फिर से रात में 9 बजे से 10 बजे तक, और करेंगे दिल से दिल की बातें।
1: क्या बात है। तब तक के लिए मैं यानी आरजी आनंद और हमारे साथ अखिल भैया थे और कमल जी थे, हम लेते हैं आपसे जाने की इजाजत, जल्दी करेंगे आपसे मुलाकात। फिलहाल छोड़ के जा रहे हैं कुछ अच्छे गाने, आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
0: बजाते रहो गुनगुनाते रहो।
1: बाय बाय।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।